0: bin.
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.
0: हमेशा तो कहते हैं ना, अगर आप हैं तभी तो हम हैं, आप नहीं तो हम कहाँ. So आपको छोड़कर जहाँ कहाँ जा सकते हैं. 5:04, wishing you all a lovely morning, Monday morning. नीतू का प्यार भरा प्रणाम स्वीकार करें. Really hope आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है. As usual आपकी Monday morning को, आपकी हर सुबह को good good best of the best बनाने की हम पूरी कोशिश करते हैं इन गानों के जरिए. So wherever you might be, stay well tuned. सुबह के 7 बजे तक चंद ऐसे गाने जो आपके दिल को, आपके मूड को सेट कर जाए. So early rises, wherever you might be. संकात नफ नफ दोस नफकात 5499 1294 पर आपके मैसेजेस का इंतजार.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: Old is gold. ऐसे ही नहीं कहते हैं. That was Pocket Mar film का सदाबहार गाना. लता जी और तलत महमूद की आवाजों में बस ये गाने आपके दिल को छू रहे हैं. Thank you so much. बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की ओर. On Sankat Nuf Nuf Dous Nuf Kat. ओम नमः शिवाय. आप है कौन? शीला जी लेस्पेरेंस ट्रिब्यूशे से. शुभ सोमवार आपको सभी परिवार के नाम. हर हर महादेव आपको भी भाई सूरज शर्मा सजादा एंड परिवार फ्रॉम थ्रियोले. मे योर डे ओवरफ्लो विद हैप्पीनेस एंड सक्सेस. थैंक यू सो मच. अंजनी जी आपके नाम भी. गुड मॉर्निंग हरक परिवार. मौदाल बैसे खास तौर से आपके लिए धीरज आयुष विधिशा अश्विन एंड ज्योति. एंड गुड मॉर्निंग आपको भी अब्दुल सायरा बानू. हैव अ नाइस डे अहेड. साथ में जॉगिंग करते करते हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुमार एंड दे बिचन फैमिली. थैंक यू सो मच. 5499 1294 पर थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए. यहाँ पर है ज्योति फ्रॉम शातु बिनागस गानाज विजुअल माधव परिवार. खास आशनी रेखा एंड सुरेखा के लिए. एंड नमस्कार नीतू. नमस्कार जी. एंड इन गानों के सर के जरिए इन मेलोडियस सॉन्ग्स के जरिए बस यादें उभर कर आ गई हैं. थैंक यू सो मच मिस्टर गुलाम आत्मानंद. साथ में माला जी है पूरे परिवार काहोलिन से. अगला गाना आपके नाम. नमस्कार अम्मा पादू फैमिली. साथ देने के लिए थैंक यू.

0: जब जब फूल खिलते हैं ना तब तब ऐसा ही होता है कि नाना करते करते प्यार हो ही जाता है. थैंक यू सो मच. 5:20 हुए हैं. इट्स योर राइज एंड शाइन. बॉन कोराज टू ऑल दोस गोइंग टू वर्क. मिले जुले गानों का सिलसिला अप टिल द 7 AM नीतू के साथ. आपके मैसेजेस सैकात नफ नफ दोस नफ काट पर जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओम नमः शिवाय आपको साथ ना मुकेश लाल माची से एंड वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी मिस्टर जयशन एंड आपके पूरे परिवार. हर हर महादेव गाना आपके लिए मिला रामदी कलिन फैमिली मोता ब्लॉन्च से. और आज रीना का बर्थडे है. गोशनो से अमर और फ्लैक आपको ढेर सारा प्यार भेज रही है एंड सभी ऑजिस के नाम थैंक यू कमलदीप. बस थोड़ा सा प्यार आपको चाहिए, थोड़ी सी मुस्कान आपके चेहरे पर और देखिए दिन कैसा अच्छा बीतता है.
1: जरूरत है, जरूरत है, सख्त जरूरत है,

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Masti.
2: 529, bon courage to all those going to work. आज के गाने बहुत ही मस्त होते हैं, लेकिन पहले के गाने जो सदाबहार एवरग्रीन सॉन्ग्स मेलोडीज हुआ करती थी, जो बोल हुआ करते थे, उनमें कुछ अलग ही था ना, जो मज़ा आता था. आज भी सुनकर बस यादें उभर जाती हैं. थैंक यू सो मच एंड गेटिंग रेडी फॉर वर्क. अब ब्रेकफास्ट लेना भूलना मत. हाँ, ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मूड को एकदम सेट कीजिएगा. और यहाँ पर ये सुदासा और हेमलता की आवाज़ बस आपके जीवन में थोड़ी खुशियां भरने आ गई हैं.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:38 बस थोड़ी देर में आपका हॉरोस्कोप एंड सच्ची बात है वंस दिल जुड़ जाता है ना तो उससे छुटकारा पाना नॉट पॉसिबल क्योंकि दिल का रिश्ता बहुत ही पुराना तो नहीं लेकिन हाँ एकदम मजबूत होता है साथ निभाते रहिएगा वेरी गुड मॉर्निंग आपको रेडियो मस्ती टीम आप है कौन यहाँ पर साथ निभा रही हैं धनेश रजी बाबू से सुनीता रेखा संजीव निशा मीना ऋषि तहान हंसवी दविदस परिवार सनीचर परिवार एंड हैव अ नाइस डे अहेड टू खुबलाल परिवार की भी अच्छा पौ से नमस्कार आपको एंड आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग नमस्कार हेमलता भजन पोएतोपिमो से कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक आप कैसे हो शुभ दिन एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स ऑन 5499 1294

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए नूरी तो आ ही जाएगी लेकिन अभी नीतू आपके साथ है और शुरुआत
2: एरीज मेष राशि.
1: वल आज भावनाएं आपके मन के दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं. किसी दूर बैठे अपने की याद अचानक दिल को छू सकती है और मन थोड़ा संवेदनशील भी बना रहेगा. ऐसे में अपनी निजी बातें हर किसी से साझा करने के बजाय खुद को समझने और शांत रखने की कोशिश करें. आर्थिक दृष्टि से दिन उत्साहजनक संकेत दे रहा है.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: वेल, आज का दिन आपको ये याद दिला रहा है कि छोटी छोटी बचतें ही आपके बड़े सपनों की नींव बन सकती है. खर्चों पर नियंत्रण रखना भविष्य के लिए आपके लिए मानी कि लाभदायक साबित होगा क्योंकि जल्द ही कोई महत्वपूर्ण योजना आपके सामने आ सकती है. घर के किसी खास मेहमान के आने से माहौल उत्सव जैसा महसूस होगा. हालांकि वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरते क्योंकि छोटी सी लापरवाही परेशानी का कारण भी बन सकती है.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज कार्यक्षेत्र में आपकी सजगता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों की बातों को गंभीरता से लें क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी. काम की व्यवस्था बनी रहेगी लेकिन इस बीच किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आ सकती है. वैसे आपके लिए कहा जाता है यदि परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनते हैं तो घबराने के बजाय धैर्य से सहारा लें.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: आज का दिन किसी सुखद समाचार के साथ आपका स्वागत करेगा.

0: विशेष रूप से संतान पक्ष से जुड़ी कोई खुशखबरी आपके मन को प्रसन्न कर सकती है। आपकी मेहनत और लगन का फल मिलने के संकेत हैं और यदि कोई सरकारी कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा था तो उसमें प्रगति दिखाई दे सकती है।
1: लियो सिंह राशि।
0: रिश्तों में मिठास खुलने का दिन है आज। वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझदारी पहले से अधिक मजबूत हो सकती है। परिवार में यदि किसी बात को लेकर तनाव था तो अब वह धीरे धीरे समाप्त भी होने लगेगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी समाचार मिल सकता है और आपकी कोई पुरानी इच्छा भी पूरी दिखाई दे रही है।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: आज का दिन आपको धैर्य और विवेक का महत्व समझाएगा। किसी सरकारी मामले को लेकर चिंता बढ़ सकती है लेकिन जल्द ही परिस्थिति स्पष्ट होती दिखाई देगी। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है और आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि अंतिम समय में कोई काम अटक भी सकता है।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: आज का दिन सामान्य रहेगा लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करना उचित नहीं होगा। किसी दूर के रिश्तेदार से मिली खबर मन को थोड़ा उदास भी कर सकती है। नौकरी में बदलाव का विचार आपके मन में जोर पकड़ सकता है और आप नए अवसरों की तलाश भी शुरू कर सकते हैं। वैसे अविवाहित लोगों के जीवन में कोई दिलचस्प मुलाकात नए एहसास जगा सकती है।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: स्वास्थ्य आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। शरीर की छोटी सी परेशानी को भी नजरअंदाज ना करें। बड़ों या बड़े जो हैं यदि कोई जिम्मेदारी सौंपे तो उसे पूरी निष्ठा से निभाएं। घर में धार्मिक आयोजन या पूजा पाठ का माहौल बन सकता है जिससे पूरे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहेगा। पारिवारिक व्यवसाय में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं लेकिन भाइयों और परिवार के सहयोग से उनका समाधान निकल ही आएगा।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: आज का दिन विशेष रूप से नेतृत्व और जिम्मेदारी से जुड़े लोगों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। संतान के साथ बिताया गया समय आपके मन को प्रसन्न करेगा। वैसे स्वास्थ्य में सुधार रहेगा लेकिन आपकी तालमटोल की आदत कुछ कामों को अधूरा छोड़ सकती है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: आज आपके मन में संपत्ति यानी निवेश को लेकर गंभीर विचार आ सकते हैं। व्यापार में लाभ के अच्छे संकेत हैं और लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। फ्यूचर को सुरक्षित बनाने के लिए किया गया निवेश लाभकारी सिद्ध हो सकता है।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज मेहनत आपकी सफलता की चाबी बनेगी। कार्यक्षेत्र में अपेक्षा से अधिक जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचारों का मतभेद भी संभव है। फिर भी उनकी सलाह को महत्व देना आपके हित में रहेगा। परिवार के किसी सदस्य के विवाह को लेकर चर्चा या चिंता बनी रह सकती है तो बस मूड को सेट कराते रहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। फाइनली आज का दिन खुशियों मित्रों और आनंददायक पलों से भरा रहने वाला है। दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और स्वादिष्ट भोजन दिन की ओर और यादगार बना सकता है। लंबे समय से रुका हुआ कोई सरकारी कार्य आगे बढ़ सकता है। साथ ही साथ परिवार में किसी नए सदस्य या मेहमान के आगमन से घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। हालांकि किसी महत्वपूर्ण डील को अंतिम रूप देने में थोड़ी देरी हो सकती है इसलिए बी पेशेंट। विशिंग यू ऑल अ लवली डे अहेड एंड बेस्ट ऑफ लक।

ज्यादा दूर तो नहीं ले जाएंगे, बस बॉलीवुड की दुनिया में, जन्नत की दुनिया में आपको ले चले हैं. एंड 5:53 माने के बस थोड़ी देर में 6 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार. ये अगला गाना आपके नाम चलाते हैं, प्यारी सी कविता. एंड रेडियो मास्टर टीम कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक. एंड नूरी वाला गाना आपको यादों की दुनिया में ले गया. थैंक यू सो मच सरोज राजन कैथोबोन से पूरे परिवार, एंड प्यारी सी दूधिका एंड रघु जाना परिवार, नमस्कार आपको.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Shiva ji hai. Sundhya Sankshipt Samachar aap se Yashna. Namaskar.
6: नमस्कार नितुषा, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। सेशेल्स अपनी स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने का भव्य उत्सव मना रहा है। कई दिनों की तैयारियों के बाद आज जश्न का दिन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे देश में विभिन्न सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी अपनी पत्नी श्रीमती विना राम गुलाम के साथ वहां इस समारोह में भाग लेने गए हुए हैं। 1976 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से सेशेल्स ने राजनीतिक स्थिरता पर

पर्यटन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 50वीं वर्षगांठ के समारोह में राष्ट्रीय एकता और देश की उपलब्धियों को विशेष रूप से उजागर किया जा रहा है। करण एतवा की मौत की जांच अब हत्या की ओर रुख कर रही है। कल किए गए पोस्टमार्टम में ये निष्कर्ष निकाला गया कि करण एतवा की मृत्यु स्कल फ्रैक्चर के कारण हुई है। पुलिस के फोरेंसिक डॉक्टर ने अपराध की संभावना को प्राथमिकता दी है। डॉक्टर के अनुसार मृतक के सिर पर पाए गए घाव किसी तेज धार वाले हथियार से किए गए हमले के कारण हो सकते हैं। बाचीमाहे रहने वाले 31 साल के करण एतवा शनिवार 27 जून की शाम को सुहिनाम में सड़क किनारे मृत पाए गए। इस मामले की जांच अब सुया की सीआईडी कर रही है। बताया गया है कि घटनास्थल पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। मडागास्कर में मॉरिशस के दूतावास ने मनागानो में हुई एक दुखद घटना के बाद शोक में डूबे परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जून को एक मलगासी महिला का शव बरामद किया गया। उसकी चाकू से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका है। परिवार के अनुसार संदिग्ध उसका साथी है जो घटना के बाद फरार हो गया। कुछ घंटों के बाद उससे मलगासी पुलिस ने खोज निकाला। संदिग्ध की पहचान मॉरिशस के नागरिक राजीव जिबोद के रूप में हुई है। कथित गिरफ्तारी के दौरान वो पुलिस की गोलीबारी में घायल हुआ और बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई। फिलहाल मॉरिशस में कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों ने इस मामले पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है। विदेश की खबरों में फ्रांस में ये दुखद घटना। फ्रांस के पूर्वी हिस्से में एक नागरिक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 11 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार विमान में सवार सभी लोग पायलट और 10 यात्री इस हादसे में मारे गए। मृतकों में 5 इंस्ट्रक्टर और 5 ऐसे लोग शामिल थे जो पहली बार स्काई डाइविंग करने गए हुए थे। ये विमान जो एक पैराशूटिंग स्कूल द्वारा संचालित है उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है। बताया गया कि कुछ पीड़ितों के परिजन भी दुर्घटना के समय या फील्ड पर मौजूद थे क्योंकि वे पहली बार किए जाने वाले टैंडम जंप्स को देखने आए हुए थे। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल दिन के दौरान स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह धूप खिली रहेगी, दोपहर बाद दक्षिणी और पूर्वी इलाकों तथा ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी, कहीं कहीं पर कोहरा भी छाया रहेगा। रात तक को भी बादल घिर रहेंगे। पूर्वी दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लाटो पर कुछ बारिश भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 15 से 17, अधिकतम 20 से 23, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। सुबह सूर्योदय 7:45, शाम को सूर्यास्त 5:41 पर होगा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन। Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

लवली गाने ऑफ द 90s 6:11 वेलकम बैक एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग प्यार भरा नमस्कार प्रणाम रियली होप आपकी मॉर्निंग की शुरुआत गुड ही गुड तरीके से हो चुकी है एंड बस आगे बढ़ते हुए और भी मस्त गाने हैं आपके नाम ऑल दोस हिटिंग द रोड जितने भी लोग रास्ते पर हैं प्लीज ड्राइव केयरफुली तेज हवाएं बह रही हैं सर्द का मौसम है और बस इन हवाओं को अपने गानों पर अपने दिल को छू लेने दीजिएगा क्या पता कुछ कुछ हो जाए हाँ वेरी गुड मॉर्निंग आपको प्यारी सी रेखा पोबोंजे से है बेटा अंश आपके पूरे परिवार के नाम हैप्पी बर्थडे तुम्हारी प्यारी मामा नलिनी मंगरू सानवी पूजा अक्षय संजय मंगरू फ्रॉम काहोलीन माँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा खुश रहे स्वस्थ रहे ये हुई ना बात हाउ स्वीट बस आज ही नहीं अपनी मामा से आप रोज़ कहे और देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी आबाद हो जाए ललित एंड जीतन फैमिली गुड मॉर्निंग माय डियर अगला गाना गुजार टू संजीता फ्रॉम कथकुकू डेडिकेटिंग द नेक्स्ट सॉन्ग टू माय टू बेबीज प्रत्यूष एंड दुर्वांश साथ में है श्रीना माँ रेणुका पापा मनोज हरदयाल परिवार के लिए वाई नॉट 16th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं प्रिंस सेगवीर राम राम जो अवगोद्रिक विशाल जीना रवीश प्रिशा लवशा डियर वंस की तरफ से ढेर सारा प्यार

0: to Radio Musty.
1: Problem liquide, li paget lily. Li capav moi, li capav toi, li capav nous tous. Protège tu liquide zodi. Pour qui dîme, tu pas à risque un ban problème liquide. Allô, enjoy to life avec Enke Life. Parce qu'il sa bon dili Enke Life là, et na stérol végétaux qui activement combat mauvais cholestérol. En plus de te ban activité physique et que mange équilibré, sans oublier te bon dili Enke Life, mais là, te pébron soin tu liquide. Enke Life, your heart, act now. Veuillez consulter votre professionnel de santé si besoin.
0: RM2 Radio Musty.
2: शिवश का 23 मिनट माने कि बस थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन. अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको हेमा पूरे परिवार के नाम आज विशल पारुषि परिधि पृथ्वी प्रिया निशिका नितिन विशाल यानेश एंड टू रेडियो मास्टर टीम. थैंक यू पापा लव्स एंड मामा रीता रति ओजस्वी आपके नाम. ओके आप पापा और मामा से बहुत प्यार करते हैं, ऐसे अपने प्यार को बरकरार रखिएगा. हाँ 7 बजे के बाद वेदिता आपके साथ रहेंगी बस मॉर्निंग बीट के साथ.

सभी को नमस्कार। सुबह के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सेशेल्स अपनी स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने का भव्य उत्सव मना रहा है। कई दिनों की तैयारियों के बाद आज जश्न का दिन है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी अपनी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम के साथ वहाँ इस समारोह में भाग लेंगे। सुयाक में हुई ये घटना कर अनितवा की मौत की जांच अब हत्या की ओर रुख कर रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में स्कल फ्रैक्चर का कारण तेज धार वाले हथियार से किए गए हमले बताया गया। मडागास्कर में मॉरिशस के दूतावास ने मना

0: जवानों में हुई एक दुखद घटना के बाद शोक में डूबे परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई। वहां मलगासी मूल की एक महिला का शव बरामद और मॉरिशस के नागरिक राजीव जिबोद को दोषी पाया गया। गिरफ्तारी के दौरान उसे गोली लगी। विदेश की खबरों में फ्रांस में एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 11 लोगों की मौत। ये सभी वहां पर अपने इंस्ट्रक्टर के साथ स्काई डाइविंग करने गए हुए थे। फीफा वर्ल्ड कप के लिए राउंड ऑफ 32 का दौर शुरू हो चुका है। कल पहला मैच खेला गया इस राउंड के लिए। कनाडा के साथ दक्षिण अफ्रीका की टीम टकराई। स्कोर रहा कनाडा 1 और बाफना 0। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पेश समाचार विस्तार से। सेशेल्स अपनी स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने का भव्य उत्सव मना रहा है। कई दिनों की तैयारियों के बाद आज जश्न का दिन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे देश में विभिन्न सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम अपनी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम के साथ वहाँ इस समारोह में भाग लेने गए हुए हैं। 1976 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से सेशेल्स ने राजनीतिक स्थिरता, पर्यटन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 50वीं वर्षगांठ के समारोह में राष्ट्रीय एकता और देश की उपलब्धियों को विशेष रूप से उजागर किया जा रहा है। करण इतवा की मौत की जांच अब हत्या की ओर रुख कर रहा है। कल किए गए पोस्टमार्टम में ये निष्कर्ष निकला कि करण इतवा की मृत्यु स्कल फ्रैक्चर के कारण हुई है। पुलिस के फोरेंसिक डॉक्टर ने अपराध की संभावना को प्राथमिकता दी। डॉक्टर के अनुसार मृतक के सिर पर पाए गए घाव किसी तेज धार वाले हथियार से किए गए हमले के कारण हो सकते हैं। बाचीमागे रहने वाले 31 साल के करण इतवा शनिवार 27 जून की शाम सुहिनाम में सड़क किनारे मृत अवस्था में मिले। इस मामले की जांच अब सुयाग की सीआईडी कर रही है। बताया गया है कि घटनास्थल पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। मडागास्कर में मॉरिशस के दूतावास ने मनागानो में हुई एक दुखद घटना के बाद शोक में डूबे परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जून को एक मलगासी महिला का शव बरामद हुआ। उसकी चाकू से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका है। परिवार के अनुसार संदिग्ध उसका साथी है जो घटना के बाद फरार हुआ। कुछ घंटों बाद उसे मलगासी पुलिस ने खोज निकाला। संदिग्ध की पहचान मॉरिशस के नागरिक राजीव जिबोद के रूप में हुई है। कथित गिरफ्तारी के दौरान वो पुलिस की गोलीबारी में घायल हुआ। बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई। फिलहाल मॉरिशस में कानूनी व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों ने इस मामले पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: गए 27 जून को मडागास्कर के उत्तर उत्तर पूर्व में स्थित मनानारा में ये घटनाएं पेश आईं। सूत्रों के मुताबिक वहां की पुलिस को मलगासी वक्त के हिसाब से सुबह 4:30 बजे एक फोन कॉल मिला। स्थल पर पहुंचते ही पुलिस ने मलगासी मूल की एक महिला की लाश देखी। पहला संकेत और पहला शक हथियार से उसका कत्ल किया गया होगा। उस औरत के रिश्तेदारों ने कहा कि संदिग्ध उसका साथी था जो ये जुर्म करने के बाद फरार हुआ। 10 बजे के आसपास पुलिस को खबर मिली कि संदिग्ध कातिल कहाँ है। अपने हस्तक्षेप के दौरान गोलियां चलाई गईं। प्रथम सूत्रों के मुताबिक आदमी अपने आप को पुलिस के हवाले करने से इनकार कर रहा था, तभी पुलिस को गोली चलानी पड़ी। गोलियों से संदिग्ध मुजरिम जख्मी हुआ और उसे सबसे करीब अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी मौत हुई। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के बाद मलगासी अधिकारियों ने जाना कि राजीव जिबोद नामक व्यक्ति मुर्शन था और गैर कानूनी तरीके से मडागास्कर में रह रहा था। एक पैगाम में मडागास्कर में मुर्शन दूतावास ने इस ट्रेजेडी के चलते शोकग्रस्त परिवार के प्रति हमदर्दी जताई। मुर्शस की पुलिस की तरफ से अभी तक कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है।
0: प्रधानमंत्री को संबोधित एक खुला पत्र आजाम किया जाएगा। इस पत्र का मुख्य विषय पेंशन है, जो बजट पेश किए जाने के बाद से श्रमिक संघ की चिंताएं बढ़ा रहा है। अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कई ट्रेड यूनियन के सदस्य आज दिन के 12 बजे राज्यसभा के बाहर प्रदर्शन करने वाले हैं। उनका कहना है कि पब्लिक गैदरिंग्स एक्ट में प्रस्ताव

0: विध सुधार से उनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के अधिकार पर असर पड़ सकता है। श्रमिक संघ के प्रतिनिधि आत्मा शांतो को सुनते हैं, विवरण सुमेहराग परली का है।
1: हम एक खत को आम करेंगे। हम ये पत्र प्रधानमंत्री के सुपुर्द कर चुके हैं। हमारा मानना है कि पेंशन यूनिवर्सल है, सबका हक होना चाहिए। सलाह मशवरों में संतुलन नहीं था। समाज सुरक्षा मंत्री ने भी कहा कि जिम्मेदार मंत्री होने की हैसियत से उनसे भी कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया।
2: Représentant dans ici à une committee qui finit à induire le premier ministre en erreur et quand le premier ministre lui-même il a des femmes van faire une committee dans l'Assemblée nationale mais il y a une fois à compter monsieur sécurité sociale.
0: दूसरी ओर जूनियर मंत्री राजन नरसिंहन का कहना है कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, बशर्ते कानून का पालन हो। उनके अनुसार इस मामले में संतुलन जरूरी है। पब्लिक गैदरिंग्स एक्ट के तहत जुर्माने और कैद की सजा बढ़ाने का प्रस्ताव शांतिपूर्ण प्रदर्शन की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करेगा जब तक कि कानूनी कदमों और नियमों का पालन किया जाए। उनको सुनते हैं।
3: Pour la liberté de, d'expression.
1: हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पक्ष में हैं। लोगों का जमा होना, प्रदर्शन करना, इनके भी हक में हूँ। संविधान में ये दो अधिकार हैं। धारा नंबर 12 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ गैदरिंग का भी प्रावधान है। इसके लिए पब्लिक गैदरिंग एक्ट भी है जिसके तहत लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। श्रमिक संघों ने अपनी बात कही है। हर बार जब कदम उठाया जाता है तो एक बुनियादी आदर्श का पालन करना जरूरी है। कानून का पालन होना चाहिए। ये मेरी खुद की राय है जो मैंने अटॉर्नी जनरल को बताई है।
3: Le principe de la proportionnalité dans la loi. Donc, moi, maintenant, mon opinion personnelle, mon DSA à l'attorney général, mon DSA à qui de droit, mon syndicaliste, c'est une phase de représentation, mais c'est nous pas capable aussi d'un extrême à l'autre, nous visons à garder ça l'équilibre, respecter ça principe de la proportionnalité.
0: बैंकिंग एक्ट में प्रस्तावित संशोधन को लेकर कानूनी जगत में कई सवाल उठ रहे हैं। प्रस्तावित संशोधन के तहत फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन सहित कुछ अधिकारियों को वित्तीय अपराधों की जांच के दौरान बैंक संबंधी जानकारी अधिक आसानी से प्राप्त करने का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है और इस पर ज़्यादा विस्तार असद पीहू दे रहे हैं।
4: Elle dit amendement là, elle dit qu'il besoin livre la confidentialité bancaire.
1: सुधारों में से एक ये है कि बैंकिंग कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होनी चाहिए ताकि फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एक्ट के तहत जांच की जा सके। बैंकों के कर्मचारियों को एफसीसी को बैंक के ग्राहकों की निजी जानकारियां देनी चाहिए ताकि जांचकर्ता पूछताछ कर सके। कर्मचारियों को एफसीसी में नहीं जाना होगा। ये मजाकिया और हैरत अंगेज है क्योंकि फेयर ट्रायल नहीं है। हर एक को सुनवाई का पूरा संवैधानिक अधिकार है।
4: Parce qu'il défie le whole purpose of a fair trial. Donc, il y a un droit constitutionnel de chacun d'avoir accès à un fair hearing et un fair trial. C'est garanti par la Constitution. Je demande une autre question. Est-ce que ça la loi là pour bypass the judge's order? Est-ce que ça va proposer un amendement là? Quel est le but derrière? Donc, je invite la population à poser question. Réfléchis.
0: बैंकिंग एक्ट में प्रस्तावित सुधार पर एक और प्रतिक्रिया सामने आई है। हालांकि इन संशोधनों का उद्देश्य वित्तीय अपराधों की जांच को आसान बनाना है, लेकिन कुछ कानूनी पेशेवरों का मानना है कि कानून में अधिक स्पष्ट सुरक्षा प्रावधान होने चाहिए। अधिवक्ता देवी चरण के अनुसार कानून में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी उजागर करने की शक्तियां केवल उन्हीं वित्तीय अपराधों तक सीमित रहनी चाहिए जिनका स्पष्ट रूप से कानून में उल्लेख किया गया है। उनको सुनते हैं।
5: Donner la FCC un blanket comme ça pour fouiller dans toutes les comptes des consommateurs bancaires, je pense que ça cela bafoue.
1: FCC को इस तरह का अधिकार देना कि वो हर किसी के बैंकिंग अकाउंट में तफ्तीश कर सके, ये बैंक और अकाउंट होल्डर के दरमियान मौजूद भरोसे और ग्राहक की खुफिया जानकारियों के लिए उचित नहीं है। इसे लागू करके निवेशकों के साथ मसला होगा। कौन निवेशक मुशर्रफ में पैसे निवेश करेगा ये जानकर कि उसके बैंक

0: बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर एफसीसी का एक्सेस है। बैंकिंग एक्ट में सुधार लाना चाहिए, हाँ, लेकिन ये सुधार सिर्फ फिस्कल जुर्मों के लिए होना चाहिए।
1: Est aussi limité jusqu'aux offenses fiscaux qui sont dans la loi.
2: कल मंगलवार को बजट 2026-2027 को पारित करने की अंतिम प्रक्रिया पूरी होगी और अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 को राष्ट्रीय सभा के कार्य सूची में तीसरे पढ़त पर पढ़ा जाएगा। ये विधेयक 26 जून को सीमित चरण यानी कमेटी स्तर से बिना किसी संशोधन के पारित हो चुका है। इस विधेयक में ऐसे कई प्रावधान शामिल हैं जिनका सीधा असर आम लोगों के दैनिक जीवन पर पड़ेगा। इनमें क्रय शक्ति यानी खरीद शक्ति, कर व्यवस्था यानी टैक्सेशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण उपाय शामिल हैं। कई उपाय कल 1 जुलाई से अमल में लाए जाएंगे। जरा विस्तार रिपोर्ट में।
0: सबसे बड़ा कदम बुनियादी खाद्य चीजों पर सब्सिडी है। प्राइस स्टेबिलाइजेशन में मजीद 2 बिलियन रुपए लगाकर कुल रकम को 12 बिलियन रुपए कर दिए जाएंगे। इससे 485 पैदावारों पर सब्सिडी होगी। फहरिस्त में कोंड बीफ, मकाहोनी, कैंड चूना, दाल, लाल सेम और बच्चों के खाने की चीजें शामिल होंगी। कैंड चूना की कीमत में 69% की गिरावट लाई जाएगी। शिशुओं के सामानों के दामों को 70% से घटाया जाएगा और दूसरी मूलभूत पैदावारों पर 40% से ज्यादा छूट दी जाएगी। दूसरा बदलाव वैट है। ई बुक्स, फोटोवोल्टाइक पैनल्स, फिटिंग्स, नमक, डाकिया सेवाएं वगैरह, इन पर वैट की कीमत को बदला नहीं जाएगा। सामाजिक क्षेत्र में सोशल रजिस्टर ऑफ मॉरिशस पर होने के लिए मासिक आमदनी के मापदंड को 14,000 रुपए से 16,000 रुपए कर दिए जाएंगे और ज्यादा लोगों को इससे फायदा होगा। कैरेज अलाउंस को 3,500 रुपए से बढ़ाकर 4,250 रुपए कर दिए जाएंगे। टैक्स के सिलसिले में एक नया मापदंड लागू होगा। 1 साल में 1 मिलियन से 12 मिलियन रुपए की आमदनी प्राप्त करने वालों के लिए 20% का टैक्स लाजमी कर दिया जाएगा, जबकि इससे ज्यादा आय हासिल करने वाले लोगों को 35% का टैक्स चुकाना पड़ेगा। ये कदम उच्च आमदनी हासिल करने वालों के लिए उठाया जाएगा। एक और बदलाव, देश की शख्सियतों की तनख्वाह और पेंशन प्रणाली पर टैक्स लागू होगा।
2: विदेश की खबरों में जो आज सुर्खियों में हैं, उनमें वेनेजुएला में 2 शक्तिशाली भूकंपों के कई दिन बाद रविवार को चमत्कारी बचाव की नई कहानियां सामने आई। वहां के अधिकारी ने बताया कि सप्ताहांत के दौरान अब तक मलबे से 33 लोगों को जीवित बाहर निकाला गया। इनमें 2 11 वर्षीय लड़के भी शामिल हैं जिन्हें रविवार को अलग अलग समय पर वहां से मलबों के नीचे से बचाया जा सका है। और पिछले 48 से 72 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जहां सबसे ज्यादा लोगों को जीवित बचाने की आशंका और संभावना सबसे अधिक होती है। लापता लोगों के परिजन अब भी अपने प्रियजनों की खबर के इंतजार में 5वीं रात बिता चुके हैं। फ्रांस के पूर्वी हिस्से में एक नागरिक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 11 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार विमान में सवार सभी लोग, पायलट और 10 यात्री इस हादसे में मारे गए। मृतकों में 5 इंस्ट्रक्टर और 5 ऐसे लोग शामिल थे जो पहली बार स्काई डाइविंग करने की तैयारी कर रहे थे। ये विमान, जो एक पैराशूटिंग स्कूल द्वारा संचालित है, उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस घटना की जांच शुरू की गई है। बताया गया है कि कुछ पीड़ितों के परिवार वाले भी दुर्घटना के समय वहां के एयरफील्ड पर मौजूद थे, जहां वे पहली बार किए जाने वाले टैंडम जंप्स को देखने आए हुए थे। बुलेटिन के अंत में फीफा वर्ल्ड कप की बात। राउंड ऑफ 32 का दौर शुरू हो चुका है और अब सभी टीमें खेलेंगी राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की करने के लिए। कल ग्रुप जे का अंतिम मैच खेला गया। अर्जेंटीना और जोर्डन के बीच मैच का स्कोर रहा 3-1, जबकि राउंड ऑफ 32 का सबसे पहला मैच कल रात खेला गया। दक्षिण अफ्रीका की टीम का सामना हुआ मेजबान देश कनाडा के साथ और मैच काफी रोमांचक रहा। स्कोर रहा कनाडा 1 और बफाना 0। आज रात 9 बजे ब्राजील खेलेगा जापान के खिलाफ।

अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल आज दिन के दौरान स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज सुबह धूप के लिए रहेगी। दोपहर बाद और रात को दक्षिणी इलाकों और पूर्वी इलाकों तथा सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। कहीं कहीं पर कोहरा भी छाया रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 15 से 17, अधिकतम 20 से 23, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 7:45 बजे हुआ, शाम को सूर्यास्त 5:41 पर होगा।

0: देश विदेश की इन खबरों के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग और टेक्निकी पर कादर का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
0: शोक समाचार सुनिए। रॉय रोड लेस्पिरांस कॉचे मिलते हमें, रॉय रोड लेस्पिरांस कॉचे मिलते हमें 39 साल के 39 ईयर्स ओल्ड के श्री श्री वेंकटेश्वर राव नरसिमलू, श्री श्री वेंकटेश्वर राव नरसिमलू जो क्रिश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनकी पत्नी कोमल नौसिमलू के मकान रॉ रोड लेस्पिरांस कॉचे मिलितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। एवेन्यू मांगिए कैथरबोन में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के जनाब इलाम लाल मोहम्मद इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा सुबह 10 बजे उनकी बीवी गजाला के मकान नंबर 6 एवेन्यू मांगिए कैथरबोन से उठाकर सबसे पहली नमाज जनाजे के लिए रिशमा की मस्जिद और दफनाने के लिए रिशमा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। नंबर 118 एडगार लोहान स्ट्रीट प्लैनवेट में, नंबर 118 एडगार लोहान स्ट्रीट प्लैनवेट में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की मिसिज बीबी जुबेदा हुसैन पैदाशी नाम रावा और जो बिल्किस के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा दिन के 12:30 बजे उनके दामाद मोहम्मद सलीम पहाउची के मकान नंबर 118 एडगार लोहान स्ट्रीट प्लैनवेट से उठाकर दफनाने के लिए रिश्तेया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 12:30 PM। बादामिया रोड कालबास में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री अनिरुद्ध बुधू जो अनिरुद्ध के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 11:30 बजे उनके मकान बादामिया रोड कालबास से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM। ब्रांच रोड पेटी वेजे सेंपिया में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड की मिसिज अमातुस शरेका महमूद पैदाशी नाम बनू और जो शरेका के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा दिन के 11

बजे उनके मकान ब्रांच रोड पृथ्वीजे सैंपिया से उठाकर दफनाने के लिए सियाकोस्तान सैंपिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 एम। थोबी श्रोत्रियोले में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के श्री शैलेंद्र कुमार रामतोहल, श्री शैलेंद्र कुमार रामतोहल जो जैक्सन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 11 बजे उनके भाई अनूप रामतोहल के मकान थोबी श्रोत थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनुस थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। सिटे थ्वा बुचिक यूनियन वेल में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के श्री ज्ञान दत्त गोबर्धन जो ज्ञान संदाओ के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1 बजे उनके बेटे पटेल गोबर्धन के मकान सीते थ्वाबुचिक यूनियन वेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। रारो थ्वाबुचिक यूनियन वेल में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री धनराज चिनीबांस जो बाबू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 2 बजे उनकी पत्नी बेलवंती चिनीबांस के मकान रारो थ्वाबुचिक यूनियन वेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। मालोचिक स्ट्रीट क्यूपिप में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के जनाब कसम दाऊद हुसैनी इंतकाल कर गए हैं। जनाजा दिन के 11:30 बजे उनकी बीवी सुल्ताना हुसैनी के मकान मालोचिक स्ट्रीट क्यूपिप से उठाकर दफनाने के लिए बिगाहा का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11:30 AM। कॉम्बे लैन नंबर एक अंकिता वाकवा में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री विवेकानंद बालगोबिन जो विवेकानंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1 बजे उनकी पत्नी शोभा बालगोबिन के मकान कॉम्बे लैन नंबर एक अंकिता वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेनो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। रॉ रोड बोबासे में लाउस टू ला लुविया स्ट्रीट फ्लोरियाल में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शारदा देवी चतू पैदाश नाम भी से सर और जो गरीब के नाम से ज़्यादा जाने जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1 बजे लाशा पैलाओ दौंतिलियन सन्स रॉ रोड बोबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। सिवक सिंह लेन गोकुला में 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मावती दुर्गा पैदाशी नाम रावा और जो मावती के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 11 बजे उनके बेटे रंजीत दुर्गा के मकान सिवक सिंह लेन गोकुला से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामिचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। मुंबई में 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती आशा देवी जमन पैदाशी नाम गुलब और जो आशा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। रॉ रोड पुस्तफ्लाक में 79 साल की 79 ईयर्ज़ ओल्ड की श्रीमती देवंती उचिगाडू पैदाशी नाम कुदी सिंह और जो साबित के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सपहर 3 बजे उनके बेटे राजेश उचिगाडू के मकान रॉ रोड पुस्तफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौलोबिन बेलमॉ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

6:56, have a nice day ahead, stay safe. हमारे जाने का टाइम आ गया है, कल मुलाकात होगी सेम टाइम 5 to 7 इन योर राइज एंड शाइन. ये दिन आपके लिए खुशगवार हो, मंगलमय हो, ये कामना करते हैं.

0: रेडियो मस्ती।
1: हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रेडियो मस्ती। सुबह के 7:16 हुए हैं। ओह यार, पार्टी खत्म नहीं हुई आपकी?

वेलकम टू मॉर्निंग बीट विदिता के साथ साथ रहेंगे हम सुबह के 9 बजे तक। कांटा क्यों मम्मा, जरा प्यार से जगा दूं उनको।

0: बड़ा झुमका।
1: इतना बड़ा झुमका पहना फिर भी पता नहीं है, गुम भी कर दिया और उनको पता नहीं किया। व्हाट झुमका?
2: A good beat for your morning show. RM2
3: Radio Musti.
1: चलो भाई, you're listening to Radio Musti, विरित आपके साथ है और हम साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। वैसे कुछ लोग कहते हैं यही से क्या तो प्रॉब्लम है जब विरिता साथ है। चलो 7:25 हुए हैं और टुडे 29th of June मंडे का दिन है, नए हफ्ते की शुरुआत है और इसी हफ्ते में हम एक नए महीने की भी शुरुआत करने जा रहे हैं वेडनेसडे को। चलो आप लोग साथ में हो ना तो हमारा भी थोड़ा हैप्पी मूड हो जाता है। आपको खुश करने के चक्कर में हम खुद को बहुत ज़्यादा खुश कर लेते हैं। मोगैम्बो खुश हुआ और यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो लुलु हाइपरमार्केट की तरफ से। चलिए जानेंगे कि आज हमारा बर्थडे गर्ल या बर्थडे बॉय कौन होगा जिन्हें हम सरप्राइज करने वाले हैं। उनके लिए एक वाउचर है लुलु हाइपरमार्केट की तरफ से और ये वाउचर उन्हीं को मिलेगा जिनके लिए आप उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर हम तक पहुंचाएंगे। तो करना क्या है, जिनका भी बर्थडे है लेकिन बर्थडे आज होना चाहिए, ना कल ना परसों वाला, आज होना चाहिए। सो आपको मुझे उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर भेजना है 1549912944।

0: for my man.
1: That's right. Check it out, y'all. Come on. Play on.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musty.
3: तो चलिए भाई इनसे जानते हैं, इनसे देखते हैं कि क्या वो कर पाएगी या नहीं, जैसा मैंने आपको पहले बताया. हेलो, गुड मॉर्निंग. हेलो, गुड मॉर्निंग.
4: गुड मॉर्निंग.
3: ये अनिश्ता जी है ना?
4: Yes.
3: आपको पता है आपसे कौन बात करी है?
4: नहीं.
3: अच्छा जी, हम लोग ना एक्चुअली वॉइसेस ढूंढ रहे थे, तो रैंडमली हम हर किसी को फ़ोन कर रहे हैं. वो क्या है ना कि हम लोग ना मॉर्निंग के लिए, बहुत सारे लोग हैं जो मॉर्निंग में उठते नहीं हैं, तो हमारी जो कंपनी है, हम लोग ना जिंगल्स बनाते हैं, जैसे आवाज़ बनाते हैं, ताकि मॉर्निंग में ये आवाज़ उनके कानों तक पहुँचे और वो उठ जाए. तो आपको ना, आपको ना वो मुर्गे की आवाज़ बनानी है, कुकरू कुक. आपको करना आता है?
4: नहीं आता है.
3: तो आप ट्राई कीजिए प्लीज, आप ट्राई कीजिए प्लीज, ट्राई कीजिए. ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा. थोड़ा सा आपको और जोर से बोलना पड़ेगा, और ऐसे बोलना नहीं पड़ेगा, आपको करके, जैसे आपको उनको इमिटेट करना है, आपको करके दिखाना पड़ेगा, आई मीन सुनाना पड़ेगा. कैन यू प्लीज हेल्प मी, वरना मुझसे करवाएंगे, मुझसे होता नहीं है. कैन यू प्लीज ट्राई? ओके ओके, गो ऑन. गो नहीं, थोड़ा ठीक से. ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसा मुर्गा नाराज हो गया. ठीक से ना, प्यार से, थोड़ा प्यार से, जैसे माँ अपने बच्चे को उठाती है, वैसे आपको थोड़ा प्यार से करके उनको उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वॉइस हम रिकॉर्ड करेंगे. ओके, प्यार से. रेडी, 1 2 3. ऐसा लग रहा है जैसे आप ऐसा लग रहा है जैसे आप तो हाइड एंड सीक खेल रहे हो. कुकरू कुकरू, ऐसा लग रहा है जैसे कि ए कुकरू कु, कैसे हो, हेलो. अब हम हेलो हाय थोड़ी ना कर रहे हैं भाई, जगा रहे हैं जैसे कुकरू कु.
4: नहीं आती है.
3: देखो मुझे आती है, मैं करके दिखाऊं. सुनो,

0: Happy birthday to you from Radio Musti.
1: जी अब कैसा लगा आपको, कैसा लगा आपको, अच्छा लगा ना?
2: आपसे अच्छा,
1: आपसे बेटर किया मैंने, आपसे बेटर किया मैंने, है ना?
2: Yes.
1: हाँ. So, अनिश्ता,
2: थैंक यू वेरी मच,
1: वेरी हैप्पी बर्थडे. आप रिविया जो पर रहती हैं, आपकी जो देवरानी है ना खुशबू, उन्होंने कहा था कि प्लीज इसके साथ कुछ करो और इसको मॉर्निंग में थोड़ा सा हंसा दो. तो हमने सोचा कि जब मैं फोन करूंगी तो आप तो रेडियो सुन ही रही होगी, आप मुझे पकड़ लेंगी. तो लेकिन दैट वाज नाइस. एक बार फिर से कुकुर कुकुर, एक बार फिर कुकुर कुकुर के सुनाना. आप सोचो मॉर्निंग में मुर्गा आके आपके कान में कहेगा कुकरुकू, कौन इंसान जानेगा, वो तो सो जाएगा. वेल, आपको लुलू हाइपरमार्केट की तरफ से एक वाउचर मिल रहा है और ये वाउचर जो है आपको आकर एमबीसी कलेक्ट करना पड़ेगा अपने आईडी कार्ड के साथ. और याद रखिए कि ये जो वाउचर है आपको आज नहीं तो कल, दो दिन है आपको आकर कलेक्ट करना पड़ेगा. आप आज आते हो तो और भी बढ़िया है. सो विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. आई होप हमारा जो रेडियो मस्ती है आपकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशी जरूर लेकर आता है. और ये जो आपके चेहरे पे स्माइल है, ये सिर्फ पूरे दिन नहीं बल्कि पूरे साल रहे. आपको हमारी ओर से हैप्पी बर्थडे वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच. कुकुरुकू.

0: बादशाह फॉर यू ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. काफी ब्यूटीफुल गाना है, आई लव्ड इट. आपको अच्छा लगा ना? चलिए अब भागते हैं.
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट.
2: स्पोर्ट्स न्यूज
3: रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
0: चलो भाई, अभी हमारे दोस्त अरविंद से मिलने का टाइम हो गया है. पहले तो वो गांव-गांव घुमा करते थे, लेकिन अभी तो वो वर्ल्ड वाइल्ड घुमा करते हैं. सारी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं. मिल लेते हैं. बात कर रहे थे भी थोड़ी देर पहले बेस्ट ऑफ 16 की. कहता है कि कनाडा वाले बड़े खुश हो गए हैं. है अरविंद, गुड मॉर्निंग.
4: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. वर्ल्ड कप 2026 के बेस्ट ऑफ 16 यानी विच एम दे फिनाल में जाने वाली पहली टीम बनी कनाडा. ड्रामेटिक लेट विनर, एडिशनल टाइम के दूसरे मिनट में स्टेफन स्टाकियो का गोल और कनाडा पहुंचा अपने वर्ल्ड कप के बेस्ट ऑफ 16 में. कनाडा 1 साउथ अफ्रीका 0. इस वर्ल्ड कप से पहले कनाडा की टीम 6 वर्ल्ड कप मैच हार चुकी थी. इस बार विच एम दे फिनाल में है. अब कनाडा का सामना नेदरलैंड्स या मोरक्को से होगा. फिर आज बाकी मैच खेले जाएंगे जिनमें ब्राजील का मुकाबला होगा जापान से. सो लास्ट 32 नॉकआउट राउंड में 9 बजे ये मैच होगा. और रात्रि के 12:30 जर्मनी वर्सेस पाराग्वे. फिर कल सुबह 5 बजे नेदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को. कल ही रात के 9 बजे आइवरी कोस्ट नॉर्वे और 1 बजे फ्रांस वर्सेस स्वीडन. मामला अब गंभीर होने लगा है. जीत पर आगे जाओ या फिर हार हुई तो घर जाओ. ट्रांसफर न्यूज. आइवरी कोस्ट का स्टार खिलाड़ी जियो मांडे, जिसके लिए लिवरपूल 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग देने के लिए तैयार था, वो पारी सेंट जर्मेन में जाना पसंद कर रहा है. जियो मांडे को पारी पसंद है. सीजन शुरू होने से पहले आर्सेनल 5 नए खिलाड़ियों को साइन करना चाहता है. इधर मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल मोनाको के मिडफील्डर मैग्नस अक्लुशे के पीछे है, पर यह भी पारी सेंट जर्मेन में जाना चाहता है. क्रिकेट की बात करें, भारतीय टीम T20 में फिर से उसकी हार हुई. घमंड टूटा है. आयरलैंड की ओर से व्हाइट वॉश. दूसरा मैच भी टीम इंडिया हार गई. द बिग क्वेश्चन, अभी तक वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू क्यों नहीं कराया गया? दो ओपनिंग बैट्समैन 0 पर आउट हुए. टीम इंडिया की शर्मनाक हार 2-0 से, वो भी आयरलैंड के खिलाफ. दूसरे T20 मैच में 2-1 रन से हार हुई. इंडिया की महिला टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई. ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 6 विकेट से हराया. अब ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा. इंग्लैंड खेलेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ. ये सेमीफाइनल में है. फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप की बात करें, ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री में कल जॉर्ज रसेल की जीत हुई. मर्सिडीज पर रसेल 4 महीने बाद एक रेस जीत पाया. अभी किमी एंटोनेली लीडर है रसेल से 40 अंक आगे. सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही. आई कैच यू वेरी सून विद द लेटेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप, जिसमें ब्राजील और जापान वाले मैच पर प्रीव्यू आपको देंगे. ये होगा 8:30 RM2 पर. टिल देन हैव अ वंडरफुल टाइम लिस्टिंग रेडियो मस्ती एंड अ वंडरफुल वीक अहेड. टेक केयर. बाय बाय.
0: बाय अरविंद. बाय क्यों, अभी थोड़ी देर में मिल रहे हैं ना 8:30.
1: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट.
2: RM2 रेडियो मस्ती.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: घड़ी मिलाते चलिए, इसमें सुबह के ठीक 8 बजे हैं।
6: अपन घड़ी मिला ले फजर के 8 बजे बा। सबको के नमस्ते, संक्षिप्त समाचार सुना जा। सेशल्स अपन स्वतंत्रता के 50 बरिस पूरा हो के उत्सव मनावट बटे। कई दिन के तैयारी के बाद आज जश्न के दिन है। ये ऐतिहासिक अवसर पर ही पूरा देश में विभिन्न सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और औपचारिक कार्यक्रम के आयोजन करल जात बा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम अपन पत्नी श्रीमती वीना रामगुलाम संगे हौजा ए इस समारोह में भाग लेवत हवन। 1976 में स्वतंत्रता के बाद सेशल्स राजनीतिक स्थिरता, पर्यटन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में प्रगति कर ले बाटे। करण इत्वा के मौत के जांच अब हत्या के ओर बढ़त बा। काल करल गल पोस्टमार्टम में ये निष्कर्ष आल कि करण इत्वा के मौत स्कल फ्रैक्चर के कारण भल बाटे। पुलिस के फोरेंसिक डॉक्टर अपराध के संभावना के प्राथमिकता देवे हवन। डॉक्टर के अनुसार उकर सिर परी घाव कोनो तेज धार होला हथियार से करल हमला के कारण भल बाटे। बाची मागे रहे होला निकतीस बरिस के करण इत्वा सामदी 27 जून के सांझ के सोहिनाम में सीमा परी मृत अवस्था में मिलल रहलन जा। मडागास्कर में मॉरिशस के दूतावास मानानारा नो में होल एगो दुखद घटना के बाद शोक में डूबल परिवार संगे संवेदना जतैले बाटे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जून के एगो मलगासी महिला के शव मिलल। उकरा चाकू से हमला करके ओकरा मुआवल गरहल। परिवार के अनुसार संदिग्ध ओकर साथी हवनजा जे घटना के बाद हौजा से भाग गरहल। कई घंटा बाद

0: ओकरा मलगासी पुलिस पकड़लक। संदिग्ध के पहचान मॉरिशस के नागरिक राजीव जिबुद के रूप में करल गल ह। आरी यही मामला के लेके कथित गिरफ्तारी के दौरान वो पुलिस के गोलीबारी में राजीव जिबुद घायल हो गयलन, जेकर बाद अस्पताल में उनकर मृत्यु भेल। फिलहाल मॉरिशस में कानून व्यवस्था से जुड़ल अधिकारी लोग ई मामला पर ही कोनो औपचारिक बयान जारी नहीं कर ले हवन जा। विदेश के खबर में वेनेजुएला में दूगो शक्तिशाली भूकंप के कई दिन बाद दिमास के चमत्कारी बचाव की कहानी आगे आल बाटे। सप्ताहांत के दौरान अब तक लिख मलबा से 33 जना के जीवित बाहर निकालल गल है। इमें दूगो 11 बरिस के लड़का शामिल बाटे। अब हो कई गो हजार जना लापता हवन जा, जिनकरा जीवित बचाए खातिर खोज कार्य जारी रखल जात बा। जिमास लिख कम से कम 1,450 जना के मौत भेल बाटे। फुटबॉल के दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप खातिर राउंड ऑफ 32 के दौर शुरू हो गल बाटे। यार अभिलेख टीम खेली राउंड ऑफ 16 में अपन जगह पक्का करे खातिर अब सब टीम आपस में तकरयन जा। राउंड ऑफ 32 के सबसे पहला मैच काल रात के खेलल गल। दक्षिण अफ्रीका के टीम के सामना भेल मेजबान देश कनाडा संगी। आरी मैच रोमांचक रहल, स्कोर रहल कनाडा 1 आरी बाफाना 0। आज रात 9 बजे ब्राजील खेली जापान के खिलाफ। ई रहल संक्षिप्त समाचार। तुहर ध्यान खातिर धन्यवाद। हमने के आज्ञा दिया, नमस्ते।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musty.
3: A very good morning and welcome. आपका फिर से हम स्वागत करते हैं आप ही के प्रोग्राम में जो कि है मॉर्निंग बीट, और मैं वेदिता आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। चलिए तो इसी के साथ अभी समय हो गया है कि हम अपने इस प्रोग्राम को आगे ले चले। डोंट फॉरगेट, आपके जो मैसेजेस हैं वो आप हमें भेज सकते हैं 5499124 पर, और यहाँ धीरे धीरे करके आपके जितने भी मैसेजेस हैं, जो भी आपने गाने की, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गाने की फरमाइश भी की है, चलो के बारे में भी हम सोचेंगे थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल आप लोग बस हमारे साथ रहिए और हमारे गाने एंजॉय करते रहिए।
4: प्ले करो, स्माइल करो, बॉलीवुड के साथ चल करो, दिल से बॉलीवुड रेडियो मस्टी।

0: राइट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। सुबह के 8:12 चलिए जान लेते हैं आज मौसम कैसा रहेगा याशना के साथ।
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स,
2: ओनली टू विनर्स।
3: स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल दिन के दौरान स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह धूप खिली रहेगी, दोपहर बाद दक्षिणी और पूर्वी इलाकों तथा ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी, कहीं कहीं पर कोहरा भी छाया रहेगा। रात तक को भी बादल घिर रहेंगे, पूर्वी दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लाटू पर कुछ बारिश भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 15 से 17, अधिकतम 20 से 23, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। सुबह सूर्योदय 7:45, शाम को सूर्यास्त 5:41 पर होगा।
1: Your weather forecast on RM2.
4: Radio Musti.
5: Fin de mois, et si on faisait les choses autrement? Du 26 juin au 9 juillet, chez Winners, retrouvez les grandes marques que vous aimez à des prix qui font vraiment du bien. 800 grammes de pilon de poulet Prodigal à 179,95 € et le pack de 100 serviettes Soft Pack Green à 44,95 €. Pas oublier, ex-can to pay, te gagne plus points WIV.
6: On est tous Winners!

0: Avant le défi, the long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: दोस्तों आज हम कुछ ज़िंदगी की असलियत के बारे में चलिए बात करते हैं। पता है मुझे किसी ने एक स्लीपर गिफ्ट किया, पहनने पर बड़ा कम्फी था। एक महीने तक मैंने उसे पहने ही रखा। एक दिन मैंने पैरों पे क्रीम लगाया तो देखा कि वहाँ पे छाले पड़ रहे हैं। अब देखो, देने वाले ने बड़े प्यार से आपको दिया, लेकिन वो स्लीपर की वजह से आपके पैर में छाले पड़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अगर आप उसे नहीं पहनते हो तो आपको लगेगा कि जिसने भी आपको दिया उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कभी कभी ये भी होता है ना कि हम दूसरों को दर्द ना देने के बजाय वो जो दर्द होता है सहते रहते हैं। इसलिए ये जो छाले गहरे हो जाए, ये जो चोट है वो घाव बन जाए, इससे बेटर है कि आपको उसे पहनना बंद कर देना चाहिए। कहने का मतलब साफ है कि कुछ रिश्ते जो हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी कुछ रिश्ते बिना दर्द दिए ही इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता है। इसलिए हर छोटी सी चोट पर समय पर मरहम लगा लेना चाहिए, उसे ज़िंदगी भर का जख्म बनने मत देना चाहिए, क्योंकि जो दर्द दिखाई नहीं देता वही अक्सर सबसे गहरा होता है, और जो रिश्ते संभाल लिए जाए वही उम्र भर सुकून देता है। आई होप आपने इस प्यारे से मैसेज को समझा होगा, और अगर आपको लग रहा है कि बिना दर्द दिए कहीं पे चोट लग रहा है आपको, तो वहीं पर उसे रोक देना चाहिए।
0: Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: RM2, Radio Mastie.

भाई आप क्या जा रहे हैं सच में यहाँ पे हमारे यहाँ भी ऐसा लगता है कि जैसे हमारी खुशियाँ डबल हो गई है। So do send me your messages on 549 and 1294। यहाँ पर पूजा भी सर कहती है प्लीज मेरी मम्मी नालिनी मंगरू को हैप्पी बर्थडे विश कीजिएगा, वो रेडियो मस्ती रोज सुनती है। ओ मम्मी हैप्पी बर्थडे टू यू। ये गाना राखी के लिए जो ड्राइव कर रही है, जानी मन ड्राइव करो, मस्त रहो और खुश रहो। नीना और दिनेश को भी अ वेरी गुड मॉर्निंग, वो भी ड्राइव कर रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हो गया। ओए हो, ये तो आपके जमाने का गाना है, एंजॉय करो, गाओ तो थोड़ा।

0: आपके आ जाने से भी यहाँ पर हमारा जो माहौल है एकदम खुशगवार हो जाता है. वैसे ये गाना है मोती से ना हीरों से ना जेवर से ना किसी खजाने से. एक्चुअली आज की लड़कियाँ इससे रिलेट तो नहीं करती लेकिन खैर चलो उस जमाने में काफी चला था. क्या अंकल जमाने के दिन याद आ गए, बड़ा गोविंदा बने घूम रहे थे हाँ चीची. चलो इसी के साथ अभी हम भी थोड़ा घूम लेते हैं अरविंद से मिलने.
1: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
2: Get ready for the biggest World Cup ever!
3: 2026 FIFA World Cup.
2: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. Radio Masti ki team ke saath chaliye United States, Canada aur Mexico.
3: Radio Masti ke saath
2: World Cup magazine.
0: Chale bhai. अरविंद आ गए हैं, उनसे मिलते हैं. यस अरविंद, चलिए बताइए क्या चल रहा है अभी वर्ल्ड कप में.
4: वर्ल्ड कप 2026 अब रोमांचक मोड़ पर, अब मुक्केबाजी होने लगी है नॉकआउट राउंड. पहली टीम क्वालिफाई होने के लिए कनाडा, जिसने साउथ अफ्रीका को 1-0 से हराया और वो भी अंतिम मिनट तक इंतजार करना पड़ा. ड्रामेटिक लेट विनर एडिशनल टाइम के दूसरे मिनट में उस्ताकियो का गोल और कनाडा पहुंचा बेस्ट ऑफ 16 में. वहां पर उसका मुकाबला

0: किससे होगा? नेदरलैंड्स या मोरक्को से। सो आज लास्ट 32 नॉकआउट राउंड में 9 बजे, ज्यादा देर नहीं है, रात्रि के 9 बजे ब्राजील का मुकाबला जापान से होगा और रात्रि के 12:30 बजे जर्मनी वर्सेस पाराग्वे। फिर कल सुबह 5 बजे नेदरलैंड्स मोरक्को और कल ही रात के 9 बजे आइवरी कोस्ट नॉर्वे और 1 बजे फ्रांस स्वीडन। मामला अब गंभीर होने लगा है, जीत कर आगे जाओ, हारो तो घर जाओ। ब्राजील वर्सेस जापान टेक्सास के ह्यूस्टन स्टेडियम में लासेलिसाओ अपना ग्रुप टॉप करके क्वालिफाई हुआ है। मोरक्को के खिलाफ ड्रो, फिर आईटी और स्कॉटलैंड पर आसान जीत। विनिसियस जूनियर 4 गोल स्कोर कर चुका है, मार्चुस कुन्हा 3। जापान के ब्लू सामुराई ग्रुप एफ में सेकंड पोजीशन पर आए 5 अंकों के साथ। नेदरलैंड्स के खिलाफ 2-2 का ड्रो, चुनिजिया पर 4-0 की जीत, फिर स्वीडन से ड्रो 1-1। मतलब अभी तक जापान और नेदरलैंड्स की हार नहीं हुई है, अपने पिछले मैचों में जापान की हार नहीं हुई है, इसलिए ब्राजील को डर के खेलना होगा, चौकन्ना रहना होगा। अक्टूबर 2025 में एक फ्रेंडली मैच में जापान ने ब्राजील को 3-2 से हराया था। ब्राजील में राफिना हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण आउट है, नेमा वापस आया है। टीम इस प्रकार है, अलिसन, डानिलो, मार्किनोस, गैब्रियल, डुग्लास सांतोस, कैसेमिरो, ब्रूनो गिमारेस, लुकास पाकेटा, रायान, मार्चुस कुन्हा, विनिसियस जूनियर। जापान में काओरू मितोमा और ताकुमी मिनामिनो इंजरी से आउट है, कप्तान वातानु एंडो भी नहीं है, अभी को अताकुरा कप्तान है। गोलकीपर है जियोन सुजुकी, फिर इरोकि इतो, ताकेइरो तोमियासु, को इताकुरा, रित्सु डोन, आओ तनाका, काइशु सानो, केइतो नाकामुरा, योन्यो इतो, दाइची कामादा और आइसे वेदा। जापान का इंटेंस काउंटर प्रेसिंग सिस्टम अभी तक उनकी शक्ति है, उनका फोर्स पोसेशन प्रॉब्लम नहीं है। ब्राजील वर्सेस जापान, इस मैच में बहुत गोल बनने की उम्मीद है, जो जीतेगा अगले राउंड में आइवरी कोस्ट या नॉर्वे का सामना करेगा। सो वर्ल्ड कप 2026 में अटेंडेंस रिकॉर्ड फीफा के अनुसार 4.6 मिलियन फैंस अभी तक यूएसए, मेक्सिको और कनाडा में मैच देखने आ चुके हैं। जिस तरह से नॉकआउट राउंड के ड्रॉ हुए हैं, एक ब्रैकेट काफी कॉम्पिटिटिव है। फ्रांस और जर्मनी अगर राउंड ऑफ 32 पार करते हैं तो राउंड ऑफ 16 में ही दोनों के बीच एपिक शोडाउन। मेसी और रोनाल्डो, इन दोनों का आमना सामना फाइनल से पहले नहीं होगा। पोर्टुगल अगर क्रोएशिया को हरा पाया तो लास्ट 16 में स्पेन या ऑस्ट्रिया इंतजार कर रहे हैं। इंग्लैंड कोंगो को हराता है तो मेक्सिको और इक्वाडोर आगे हैं। अर्जेंटीना के वर्दे जो जीतेगा आगे हैं ऑस्ट्रेलिया या इजिप्ट। इस वर्ल्ड कप में बहुत गोल स्कोर किए जा रहे हैं, खिलाड़ी तो अपने देश के लिए खेल रहे हैं, पर किस क्लब के खिलाड़ी ज्यादा गोल स्कोर कर रहे हैं? प्रीमियर लीग में क्रिस्टल पैलेस और सन्डरलैंड आगे हैं। इंग्लैंड से बाहर पेरिस सेंट-जर्मेन और रियल मैड्रिड के खिलाड़ी भी अपने अपने वतन का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रीमियर लीग के 182 खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में है, 182 प्लेयर्स। क्रिस्टल पैलेस से इस्माइल असा, दाइची कामादा और डैनियल मुनोज टोटल 7 गोल स्कोर कर चुके हैं। सन्डरलैंड से ब्रायन ब्रोबरे 3 गोल, फिर जाका, हबीब जारा, विल्सन इजिडो और निल्सन अंगुला, इनके टोटल 7 गोल है। आर्सेनल से काई हावर्ट्स, ट्रोसा और ग्योकेरेस, मैनचेस्टर यूनाइटेड से मार्चुस कुन्हा, राशफोर्ड और जालू, लिवरपूल से गाकपो, वैन डाइक और इसाक, मैनचेस्टर सिटी से अकेले अलोन 4 गोल स्कोर कर चुका है। गोल को लेकर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। लियोनेल मेसी पहला खिलाड़ी बना टू स्कोर 7 in 7 consecutive World Cup appearances. World Cup में इंग्लैंड का टॉप स्कोरर बन गया हैरी केन, टोटलिंग 11 गोल्स। सो रिकॉर्ड ब्रेकिंग, 9 अफ्रीकी टीम वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में है। मैच जारी रखे जाएंगे और रिकॉर्ड बनेंगे। आज क्या कहेंगे, लासेलिसाओ या जापान? एक तगड़ा मुकाबला और एक बड़ी टीम आज घर जाएगी जरूर। देखेंगे आज 9 बजे, भूलिएगा नहीं। टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू नोटेड
2: फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: And yes, यहाँ पर काफी सारे मैसेज आए हैं 549 and 1294 पर. देखते हैं कौन है जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे. सो यहाँ पर वेरी हैप्पी बर्थडे टू डियाना राजकुमार सिंह. वो 8 साल की हुई है, उनके लिए बहुत सारा प्यार है. दादी दादा, उनके मम्मी शीना, उनके पापा मनीष जो खेले का जैन क्यू पिप से हैं, थैंक यू, गुड मॉर्निंग साथ देने के लिए. नेक्स्ट गाना होगा कल्याणी शीतल के लिए, उनकी बहन रीटा सलोनी बबीता और उनके भाई अजय और जय की तरफ से. ये तो वो हो गया, मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे. हाँ आ गए दोनों भाई. चलिए नेक्स्ट गाना होगा हैप्पी बर्थडे दादा दादी ओके दीदी की तरफ से और दिशिता अद्वान फैमिली की तरफ से. हैप्पी हैप्पी बर्थडे. आपका मैसेज बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया है, समझ में नहीं आया, लेकिन थैंक यू सो मच. हेलो जी, चलो जी यहाँ पर अजय हमारे साथ हैं. गुड मॉर्निंग टू यू. कहते हैं नेक्स्ट गाना प्लीज़ मेरी वाइफ येशना के लिए और मेरे बेटे ओम के लिए और आपके पूरे रेडियो टीम के लिए. थैंक यू सो मच अजय एंड हैव अ गुड डे. चलिए इसी के साथ नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं उनके लिए जो साथ दे रहे हैं. किसी ने मैसेज भेजा है मंजुलिका कैसी है. बेटा मैं मंजुलिका की सेक्रेटरी थोड़ी ना हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि वो आजकल बड़ी बिजी है. पिछले हफ्ते से नेल पॉलिश लगा रही है. अब आप बोलोगे पिछले हफ्ते से नेल पॉलिश कैसे लगा सकती है, वो तो कुछ मिनट लगते हैं. हाँ तो हम नॉर्मल है ना, हम नॉर्मली लगाते हैं, 2 मिनट में लगा लेते हैं. उसके पैर उल्टे हैं, उसको टाइम लगता है.

0: Morning beat.
1: Oh God, one more remix.
0: A good beat for your morning show.
2: RM2, Radio Musti in the mix.
3: और जिनको शिकायत है कि उनकी बेली बाहर आ गई है, यही मौका है बेली डांस करने का। भाई हम तो शुरू हो गए हैं, आप कब शुरू करोगे?

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musty.
2: चलो भाई, काफी सारे नाम है यहाँ पर जोड़ना है. वी हैव सीता, गीता, बलोराम फैमिली फ्रॉम शातु बिन आगिस, कमलदीप, गुड मॉर्निंग टू यू एंड वेलकम. एंड द नेक्स्ट गाना गोज फॉर गिलेश जो सुरी नाम से साथ दे रहे हैं. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी फॉर मॉर्निंग बीट आपके अपने रेडियो मस्ती पर. अब मेरे जाने का टाइम हो गया है और विकास के आने का टाइम हो गया है. चलो, आपका दिल नहीं तोड़ूंगी, प्यार से जा रही हूँ और प्यार से मैं वापस आऊंगी कल मॉर्निंग में, भूलिएगा नहीं, फ्रॉम 7 till 9 AM. अभी के लिए इट्स टाइम कि चेहरे पे स्माइल लगाओ और जिंदगी के हर एक मुश्किल को अपने स्माइल के साथ जीतते जाओ. चलो, कल मिलते हैं. लव यू ऑल, बाय.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के 9 बजे हैं।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे याचना। नमस्कार।
1: नमस्कार नीतूषा, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। सेशेल्स अपनी स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने का भव्य जश्न आज मना रहा है। कई दिनों की तैयारियों के बाद आज उत्साह का दिन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे देश में विभिन्न सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी अपनी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम के साथ वहां इस समारोह में भाग लेने गए हुए हैं। 1976 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से सेशेल्स ने राजनीतिक स्थिरता, पर्यटन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। करण इतवा की मौत की जांच अब हत्या की ओर रुख कर रही है। कल किए गए पोस्टमार्टम में ये निष्कर्ष निकला कि करण इतवा की मृत्यु स्कल फ्रैक्चर के कारण हुई है। पुलिस के फोरेंसिक डॉक्टर ने अपराध की संभावना को प्राथमिकता दी है। डॉक्टर के अनुसार मृतक के सिर पर पाए गए घाव किसी तेज धार वाले हथियार से किए गए हमले के कारण हो सकते हैं। बाचीमागे रहने वाले 31 साल के करण इतवा शनिवार 27 जून की शाम सुगिनाम में सड़क किनारे मृत अवस्था में मिले थे। इस मामले की जांच अब सुयाग की CID कर रही है। बताया गया है कि घटनास्थल पर कोई भी CCTV कैमरा नहीं लगाया गया है। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैडागास्कर में मॉरिशस के दूतावास ने मनानागानो में हुई एक दुखद घटना के बाद शोक में डूबे परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जून को एक मलगासी महिला का शव बरामद हुआ। उसकी चाकू से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका है। परिवार के अनुसार संदिग्ध उसका साथी है जो घटना के बाद वहां से फरार हो गया था। कुछ घंटों बाद उसे मलगासी पुलिस ने खोज निकाला। संदिग्ध की पहचान मॉरिशस के नागरिक राजीव जिबुद के रूप में की गई है। कथित गिरफ्तारी के दौरान वो पुलिस की गोलीबारी में घायल हुआ और बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु की पुष्टि की गई है। फिलहाल मॉरिशस में कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों ने इस मामले पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है। प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र आज आम किया जाएगा। इस

पत्र का प्रमुख विषय पेंशन है, जो बजट 2026-2027 पेश किए जाने के बाद से श्रमिक संघ की चिंताएं बढ़ा रहा है। अपनी आवाज पहुंचाने के लिए कई ट्रेड यूनियन के सदस्य आज दिन के दौरान राज्यसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि पब्लिक गैदरिंग्स एक्ट में प्रस्तावित सुधार से उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के अधिकार पर असर पड़ सकता है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़ों के अनुसार मॉरिशस में वेतन में वृद्धि जारी है। पहली तिमाही 2026 में वेज रेट इंडेक्स पिछली तिमाही की तुलना में 4.1% से बढ़ा है। ये वृद्धि कई क्षेत्रों में वेतन में बढ़ोतरी की पुष्टि करती है, जिससे ये संकेत मिलता है कि देश में मजदूरी और श्रम में सामान्य सुधार देखा जा रहा है। विदेश की खबरों में वेनेजुएला में दो शक्तिशाली भूकंपों के कई दिन बाद रविवार को चमत्कारी बचाव की कहानियां सामने आई। सप्ताहांत के दौरान अब तक मलबे से 33 लोगों को जीवित बाहर निकाला गया है, जिनमें 11 वर्ष के दो लड़के भी शामिल हैं। अभी भी हजारों लोग लापता हैं, जिससे जीवित बचे लोगों की खोजने की उम्मीद हर घंटे कम होती जा रही है। फ्रांस के पूर्वी हिस्से में एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 11 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार विमान में सवार सभी लोग, पायलट और 10 यात्री इस हादसे में मारे गए। मृतकों में 5 इंस्ट्रक्टर्स और 5 ऐसे लोग शामिल थे जो स्काई डाइविंग करने गए हुए थे। ये विमान, जो एक पैराशूटिंग स्कूल द्वारा संचालित था, उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना की जांच शुरू की गई है। बताया गया है कि कुछ पीड़ितों के परिवार वाले भी दुर्घटना के समय एयरफील्ड पर मौजूद थे, क्योंकि वे पहली बार किए जाने वाले टैंडम जंप को देखने आए हुए थे। अंत में फुटबॉल की कुछ बातें। फीफा वर्ल्ड कप के लिए राउंड ऑफ 32 का दौर शुरू हो चुका है और अब सभी टीमें खेलेंगी राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की करने के लिए। कल ग्रुप जे का एंटी मैच खेला गया और अर्जेंटीना और जॉर्डन के बीच मैच का स्कोर रहा 3-1, जबकि राउंड ऑफ 32 का सबसे पहला मैच कल रात खेला गया। दक्षिण अफ्रीका की टीम का सामना हुआ मेजबान देश कनाडा के साथ और मैच काफी रोमांचक रहा। स्कोर रहा कनाडा 1 और बाफाना 0। आज रात 9 बजे ब्राजील खेलेगा जापान के खिलाफ। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Hey, no, what's going on, की बात करें तो आज हाँ एक कोई लड़की है सुबह से उसकी एनर्जी खत्म ही नहीं हो रही राइट 9:09 और तारीख भी 29 है इसमें भी 9 है इतने सारे 9 9 9 अरे जाने दो इसे क्योंकि हम दोनों आगे हैं दोनों के दो 9
3: राइट
2: क्यों तुम्हारा प्रोग्राम खत्म हुआ इसलिए
3: मैं तो यही हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ मैं तो यही बैठू
2: हाँ ये भी ठीक है तो हम दोनों साथ में रहने वाले हैं थोड़ी देर के लिए मस्ती जरूर होगी और वहीं पर आपके क्या हाल चाल है भाई वीकेंड में जितनी बारिश हुई काफी लोगों ने इतने सारे पकौड़े बना लिए दोस्तों को बना लिया प्लान बना लिया वेरी गुड
3: मेरी डाइटिंग चल रही है
2: नहीं तुमसे पूछा भी नहीं मैंने क्योंकि तुम ये सब करती नहीं तुम प्लान ही नहीं बनाती हो
3: अच्छा करती हूँ अभी
2: है ना चलो कुछ मोटिवेशन तो मिला अगर बारिश से नहीं
3: आती ताना मारा मोटिवेशन
2: नहीं वो तो मैं कहता मोटिवेटिंग
3: अच्छा यहाँ पर भी ताना मारा
2: नहीं,
3: बात नहीं करती मैं तुझसे वैसे ट्रैफिक कैसा है अभी
2: भाई ट्रैफिक ठीक ठाक है हाँ फिनिक्स पर काफी रुक रुक के लोग आए एंड मौसम आज एक्चुअली अच्छा है ब्लू बिल्कुल स्काई आज ब्लू है पानी पानी
3: पानी पानी
2: बढ़ेगी ना कहानी आपकी मुंह जबानी 5491294 पर

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए साहब शुरुआत करते हैं आपकी राशियों के साथ और शुरुआत करते हैं with
2: Aries मेष राशि।
1: आज भावनाएं आपके मन के दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। किसी दूर बैठे अपने की याद अचानक दिल को छू सकती है और मन थोड़ा संवेदनशील होता रहेगा, लेकिन ऐसे में आप थोड़ा इमोशनल भाव में ना बह जाएं, कुछ जो नहीं कहना वो ना कह जाएं। आर्थिक दृष्टि से आपका दिन अच्छा जाने वाला है, आय के नए रास्ते खुल सकते हैं और लंबे समय से कोई नौकरी की तलाश में लगे लोग हैं तो सुखद समाचार मिल सकता है।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज का दिन याद दिला रहा है कि छोटी छोटी बचतें, यानी कि थोड़ा थोड़ा पैसा जो बचा रहे हैं वही बड़े सपनों की नींव रखती है। खर्चों पर नियंत्रण रखना भविष्य के लिए आपके लिए साबित होगा, फायदेमंद होगा, क्योंकि जल्दी कोई इंपॉर्टेंट योजना आपके सामने आ सकती है। घर में किसी खास मेहमान के आने से माहौल उत्सव जैसा महसूस होगा, हालांकि वाहन चलाते हुए बहुत सावधानी।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: कार्य क्षेत्र में आपकी सजगता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। वरिष्ठ अधिकारियों की बातों को गंभीरता से लें, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। काम में बिजी बने रहेंगे, लेकिन इसी बीच किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी, चेहरे पर मुस्कान आएगी और ओए होए होए प्लान्स ऑन द मेकिंग।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज के दिन किसी सुखद समाचार के साथ स्वागत कर सकता है। विशेष रूप से संतान पक्ष से जुड़ी कोई खुशखबरी आपके मन को काफी प्रसन्न कर सकती है। मेहनत और लगन का फल मिलने से आपको फायदा तो होगा, लेकिन साथ साथ में एक मोटिवेशन जो आगे आपको लेकर जाएगी। सड़क पर चलते समय, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
2: लियो सिंह राशि।
1: लियो, जो भी काम मिले उसको कर दियो। वैसे आज रिश्तों में मिठास घुलने का दिन है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझदारी पहले से अधिक मजबूत हो सकती है। परिवार में यदि किसी बात को लेकर तनाव था तो अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है और कोई पुरानी इच्छा भी पूरी होती दिखाई दे रही है, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए फैसले उनसे बचें। आज जितना सोच समझ कर कदम बढ़ाएंगे उतना ही लाभ पाएंगे।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज का दिन धैर्य और विवेक का महत्व आपको समझाएगा। किसी सरकारी मामले को लेकर चिंता बढ़ सकती है, लेकिन जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है। कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत भी मिल रहे हैं। व्यापार यानी कि बिजनेस में आप लगे हुए हैं तो सावधानी बरतें, क्योंकि अंतिम समय में कोई काम अटक सकता है। पूरी पूरी सावधानी।
2: लीब्रा तुला राशि।
1: आज का दिन वैसे तो सामान्य रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करना उचित नहीं होगा। नो नो नो। किसी दूर के रिश्तेदार से मिली खबर मन को थोड़ा सा उदास कर सकती है। नौकरी में बदलाव का विचार आपके मन में जोर पकड़ सकता है और आप नए अवसरों की तलाश भी शुरू कर सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए जीवन में कोई दिलचस्प मुलाकात या नया एहसास जगा सकती है।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: स्वास्थ्य आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। शरीर की छोटी सी परेशानी को भी नजरअंदाज ना करें। माताजी यदि कोई जिम्मेदारी सौंपे तो उसको पूरी निष्ठा से निभाएं। घर में धार्मिक आयोजन या पूजा पाठ का माहौल बन सकता है, जिससे पूरे परिवार में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: भाई आज कोई विशेष रूप से नेतृत्व या फिर जिम्मेदारी से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए शुभ संकेत आएंगे। आप अगर संतान के साथ समय बिता रहे हैं तो इससे बेटर और कुछ नहीं। आपको मन में काफी एक तो हल्कापन महसूस होगा, लेकिन साथ साथ में जो बॉन्ड है काफी स्ट्रांग होगा। स्टूडेंट है तो अपनी तैयारी और मजबूत करने की जरूरत होगी आपकी।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज आपके मन में संपत्ति या नए निवेश को लेकर गंभीर विचार आ सकते हैं। व्यापार में लाभ के अच्छे संकेत हैं और लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आपकी संभावना को समझ सकता हूं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कोई नया निवेश आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: मेहनत आपकी सफलता की चाबी बनेगी। कार्य क्षेत्र में अपेक्षा से अधिक जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचारों का मतभेद संभव है, लेकिन फिर भी आराम से बैठकर बहुत सारी बातें स्पष्ट हो सकती हैं। जीवन साथी के साथ कोई महत्वपूर्ण वादा या भविष्य की योजना बन सकती है।
2: पाइसेस मीन राशि।
1: आज के दिन खुशियों और मित्रों के साथ आनंददायक पलों से भरा रहने वाला है। दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और स्वादिष्ट भोजन दिन को और यादगार बना सकता है। लंबे समय से रुका हुआ कोई सरकारी कार्य आगे बढ़ सकता है। हाँ, कोई महत्वपूर्ण डील को अंतिम रूप देने से थोड़ी सी देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य बना के रखें।
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: चंद कोशिश करते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करें जो जिंदगी में थोड़ा सा चेंज लेकर जरूर आ चुके हैं, और साथ साथ में अभी मौसम जब चेंज हो रहा है तो काफी लोग हाँ ये सब हो रहा है। चलिए उसको छोड़कर थोड़ी देर में कुछ और बातें होंगी, लेकिन अभी आज का लाइफस्टाइल मंत्र, जो काम दो मिनट में हो सकता है उसे कल के लिए मत छोड़िए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि छोटे छोटे पेंडिंग जो टास्क होते हैं वही स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन बन जाते हैं। बेड बनाना हो, बॉटल रिफिल करनी हो, इंपॉर्टेंट मैसेज का रिप्लाई देना हो, अगर दो मिनट में हो सकता है तो अभी कर लो ना। जो सिचुएशन है उसको आज संभालो, कल पर मत टालो, क्योंकि लाइफ इजी तभी बनती है जब हम छोटी आदतों को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: और ये मंडे की मॉर्निंग है और महीना जहाँ पर खत्म हो रहा है वहीं पर काम कभी खत्म नहीं होता है। ये लो लगे हो। हाँ, लेकिन कभी कभी होता है कि दिमाग

0: काफी हैवी हो जाता है और जब ऐसा हो जाए ना तो फिर निकल पड़ो। अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस किया, जब माइंड हैवी होता है तो फिर आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, नथिंग इज रियली वर्किंग योर वे। रिसर्च बताती है कि सिर्फ 10-15 मिनट की वॉक मूड को फ्रेश कर सकती है। सच मानिए, क्रिएटिव थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकती है, क्योंकि जब आप ऐसे पैदल निकल पड़ते हो, आसपास देखते हो, इंस्पिरेशन मिलती है, चाहे नेचर से या फिर किसी को स्माइल करते हुए देखते हो या फिर मोटिवेटेड, तो सब कुछ चेंज होने लगता है धीरे धीरे। आज लिफ्ट की जगह स्टेज ले लो या डिनर के बाद एक छोटी सी वॉक और देखिए मूड कैसे चेंज होता है फटाफट। भाई हर प्रॉब्लम का सलूशन रनिंग नहीं है, कभी वॉक भी कर लेना चाहिए।
1: RM2 Radio Musty. Feel the Musty.

जब बात करेंगे हम जब बात करें तारीख की तो खाली तारीख पे नहीं हट रखते We also going to talk about कि आज क्या स्पेशल है 29th of June सोचिए और आपको पता लगे तो हमें बताइए हम तो आने वाले हैं थोड़ी देर में स्टे ट्यून्ड

0: 29th of June, Monday का दिन ठीक है, लेकिन 29 June यानी कि International Day of the Tropics. चलिए बात करते हैं.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: हाँ, तो जैसे बताया कि आज खाली एक और नया दिन नहीं है, ये है इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स. अरे सोचिए, दुनिया के ट्रॉपिकल रीजन्स में अरे क्या खूबसूरती मिलती है. डेंस रेन फॉरेस्ट, कलरफुल वाइल्ड लाइफ, एग्जॉटिक फ्रूट्स और नेचर के कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारे जो कहीं मिलते नहीं. लेकिन इसी के साथ साथ एरियाज को क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल चैलेंज से भी बचा कर रखना है हमारी जिम्मेदारी है हर किसी की. तो आज का मिशन बहुत सिंपल है, एक पेड़ लगाइए, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, पानी बचाइए या फिर नेचर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताइए. ये तो काफ़ी अच्छा है ना. अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी खूबसूरती रहे चारों ओर, तो साफ सफाई रखना, पेड़ लगाना, ये भी आपका काम है. छोटी छोटी आदतें ही मिलकर बड़ी तब्दीली ला सकती है. सो याद रखिए, अगर ट्रॉपिक्स हेल्दी रहेंगे तो हमारी अर्थ भी हेल्दी रहेगी, ब्रीथ करती रहेगी, और जब धरती मुस्कुराएगी तभी ये जिंदगी वापस आपकी तरफ मुस्कुराएगी.
1: You're listening to Radio Masti.

काफी लोग इन गानों को सुनकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और हैप्पीनेस ये फैक्टर है जो कभी रंग नहीं बदलता। जिंदगी मुस्कुराएगी तो ये मुस्कुराहट आपके पास भी लौट कर जरूर वापस आएगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहो। कह दूं कुछ और

0: या शाह की स्टूडियो उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार
1: सभी को, नमस्कार, सुनिए संक्षिप्त समाचार। करण इतवा की मौत की जांच अब हत्या की ओर रुख कर रही है। कल किए गए पोस्टमार्टम में ये निष्कर्ष निकाला गया कि करण इतवा की मृत्यु स्कल फ्रैक्चर के कारण हुई है। पुलिस के फोरेंसिक डॉक्टर ने अपराध की संभावना को प्राथमिकता दी है। डॉक्टर के अनुसार मृतक के सिर पर पाए गए घाव किसी तेज धार वाले हथियार के किए गए हमले के कारण हो सकते हैं। बाचीमागे रहने वाले 31 साल के करण इतवा शनिवार 27 जून की शाम सुकीनाम में सड़क किनारे मृत अवस्था में मिले थे। इस मामले की जांच अब सुया की सीआईडी कर रही है। बताया गया है कि घटनास्थल पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। मडागास्कर में मॉरिशस के दूतावास ने मनानारा नोड में हुए एक दुखद घटना के बाद शोक में डूबे परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जून को एक मलगासी महिला का शव बरामद हुआ। उसकी चाकू से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका है। परिवार के अनुसार संदिग्ध उसका साथी है जो घटना के बाद फरार हो गया था। कुछ घंटों बाद उसे मलगासी पुलिस ने खोज निकाला। संदिग्ध की पहचान मॉरिशस के नागरिक राजीव जिबत के रूप में हुई है। कथित गिरफ्तारी के दौरान वो पुलिस की गोलीबारी में घायल हुआ और बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई। फिलहाल मॉरिशस में कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों ने इस मामले पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है। सेशल्स अपनी स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने का भव्य उत्सव मना रहा है। कई दिनों की तैयारियों के बाद आज जश्न का दिन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे देश में विभिन्न सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम अपनी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम के साथ वहां इस समारोह में भाग ले रहे हैं। 1976 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से सेशल्स ने राजनीतिक स्थिरता, पर्यटन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। फुटबॉल की बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के लिए राउंड ऑफ 32 का दौर शुरू हो चुका है और अब सभी टीमें खेलेंगी राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की करने के लिए। कल ग्रुप जे का अंतिम मैच खेला गया। अर्जेंटीना और जोर्डन के बीच मैच का स्कोर रहा 3-1, जबकि राउंड ऑफ 32 का सबसे पहला मैच

0: कल रात खेला गया। दक्षिण अफ्रीका की टीम का सामना हुआ मेजबान देश कनाडा के साथ और मैच काफी रोमांचक रहा। स्कोर रहा कनाडा 1 और बफाना बफाना 0। आज रात 9 बजे ब्राजील खेलेगा जापान के खिलाफ। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: भाई जितनी बारिश हुई वीकेंड के टाइम पर काफ़ी लोग कहते हैं कि कपड़े, अरे कपड़े की बात ठीक है लेकिन जितना पानी आना चाहिए इस कंट्री के अंदर, जितनी ज़रूरत है कि जो वो हमारा भरता जाए, इसकी ज़रूरत थी तो सब कुछ चाहिए। पानी, धूप, बरसात और आपसे यूं मुलाकात है। यस, इज द सेकंड आवर, 10:09, 29th ऑफ जून, मंडे का दिन और नया हफ्ता शुरू है, लेकिन यही हफ्ता इस महीने को ख़त्म कर देगा। उसके बाद जुलाई शुरू, अरे सोचिए जुलाई शुरू। लेकिन ये सच है कि जब शुरू की बात करें तो आप भी शुरू हो जाओ ना। अगर काफ़ी चीज़ के लिए आप इंतजार करें कि ये होगा तो ये करेंगे और ये करेंगे नहीं तो वो करेंगे, सोचते सोचते वक्त कितनी जल्दी टिक टिक करते हुए ऑटोमेटिक चला जाता है। इसलिए वक्त को पकड़ो और पकड़ लो इस पर्टिकुलर लम्हे को भी, मेक इट स्पेशल। हर जिंदगी के हर एक लम्हे को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल। अगर चल रहा है वक्त तो राही, तू भी चल चला चल।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: RM2
1: Radio Musty.
2: Pour un petit déjeuner tout en douceur, pour des desserts encore plus savoureux, pour des grillades encore plus croustillantes, et pour aider à combattre une grippe, ce n'est qu'avec du miel Wescoby. Wescoby, le miel 100% pur de l'Australie. Le miel Wescoby, c'est zéro additif, zéro colorant, zéro conservateur, zéro sucre ajouté. Pour 100% de douceur et 100% de bienfait. Wescoby, du bon miel australien 100% pur.
3: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रही हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीस, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
4: Fin de mois, et si on faisait les choses autrement? Du 26 juin au 9 juillet, chez Winners, retrouvez les grandes marques que vous aimez à des prix qui font vraiment du bien. Café, produits du quotidien, entretien, vos essentiels sont là, mais moins chers. Profitez-en pour faire le plein de bonnes affaires pour toute la famille. Pas oublier, Excan to pay te gagne plus points Weave.
5: On est tous Winners!
0: RM2
1: Radio Musty.

0: वेलकम टू द जंगल। अब जंगल में आओ तो मंगल तो होगा ही होगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी की। हाउ इज द मूवी डूइंग?
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: तो चलिए साहब, इस मूवी का इंतजार काफी लोग कर दे कि वेलकम टू द जंगल, इसमें क्या मस्ती क्या कॉमेडी होगी। सो इसमें बड़े बड़े स्टार्स अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल तीनों हैं। ये तो कोई और मूवी की सिग्नल दे रहा है नहीं, लेकिन अच्छा रिस्पांस मिला है और ये बहुत कमाल की फ्रेंचाइजी है और काफी लोग इसी के चलते पहुंच गए इस मूवी को देखने के लिए थिएटर के अंदर इंस्टेड टू द जंगल, जहां पर वीकेंड ने काफी कमाल किया 15 करोड़ पहले और उसके बाद 20 करोड़ और ये हुआ शनिवार को। तो शुक्रवार शनिवार काफी कमाल की कमाई कर गई। अब लगता है कि ज्यादा रुक नहीं भाई, अक्षय कुमार की पिक्चर जाने वाली 100 करोड़ क्लब के अंदर। वैसे आप बताएं कि इस मूवी के अंदर बड़े कलाकार तो हैं लेकिन अक्षय कुमार इनका डबल रोल है। सोचने वाली बात यह कि किसी मूवी के अंदर किसी एक्टर का डबल रोल हो, इसका मतलब ये थोड़ी डबल पेमेंट होगी। ये भी सच है, लेकिन मूवी काफी कमाल की। ये एक आर्मी मूवी है, यानी ये बोलकर उनको शूटिंग कराई जाती है, उसके बाद क्या होता है कमाल। गाने अच्छे खासे चल गए और

टॉकिंग अबाउट कॉकटेल टू, तो ये भी काफी कमाल के हैं, इसे क्योंकि जो पहले वाली थी वो काफी चली, जबरदस्त शुरुआत हुई बॉक्स ऑफिस पर, उसके बाद धीरे धीरे ये धीरे बढ़ने लगी। टॉकिंग अबाउट द पार्ट टू 100 करोड़ में आसानी से पहुंच जाएगी, हर कोई कह रहा था, लेकिन ऐसा होना अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं बार आपको बता दूं कि एक और मूवी है, ये है मैं वापस आऊंगा। बड़ी फिल्मों में आ गई है इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा, अपना जादू बिखेर रही है और ये भी ज्यादा दूर नहीं है फ्रॉम कॉकटेल टू। ट्रेंड के हिसाब से काफ़ी अहम है और अगर बात करें इसके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो कमर्शियल तौर पर नहीं सामने आती, बट यस टॉकिंग अबाउट वेलकम टू द जंगल, जहां पर गाने फेमस वहीं पर हो रही है इनकी तारीफ पे तारीफ।

0: रेडियो मस्ती
1: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। वेलकम टू RM2
0: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
2: चलिए आज का फैशन मंत्र अगर हम बात करें तो फ्रॉम द मूवी क्रू, जिसमें करीना साथ में थी तब्बू एंड कीर्ति सानन, एक बात बहुत अच्छे से बताती है, पावर ड्रेसिंग को बहुत लाउड नहीं होना चाहिए, जितना पॉलिश हो उतना ज्यादा अच्छा। अच्छा, उन्हें देखोगे उसके अंदर उनके यूनिफॉर्म्स क्या क्लीन लोग हैं, परफेक्ट।

0: नहीं सबसे बड़ा हीरो चाहे ब्लेजर हो शर्ट हो या ट्राउजर्स जब फिटिंग सही होती है तो आउटफिट ऑटोमेटिकली प्रीमियम लगने लगता है इसलिए शॉपिंग करते वक्त सिर्फ ब्रांड नहीं फिटिंग पर भी ध्यान दीजिए और उसके बाद मजा लीजिए सारे कॉम्प्लीमेंट्स लीजिए और हाँ एक और खास बात फिल्म में कलर्स बहुत थॉटफुली यूज किए गए डीप रेड्स नेवी ब्लू ब्लैक आइवरी या मेटालिक गोल्ड एक्सेंट्स के साथ एक सोफिस्टिकेटेड वाइब क्रिएट किया गया अगर आप ऑफिस मीटिंग डिनर या डेट या फैमिली फंक्शन के लिए रेडी हो रहे हैं तो क्लासिक शेड्स को मिक्स करके देखिए ये कलर्स जल्दी आउट ऑफ फैशन भी नहीं होते और एक्सेसरीज अरे इसकी बात करें तो बहुत कमाल का स्टाइल मंत्रा कि लेस इज लुक्स एलिगेंट वॉच स्मॉल हुप इयररिंग्स डेलिकेट चेन स्ट्रक्चर्ड हैंडबैग्स या क्लीन लेदर शूज बस इतना ही काफी है हेयर स्टाइल इसकी बात अलग है मेसी आउटफिट से पहले मेसी हेयर नोटिस होता है इसलिए जरूरी है कि टाइम कम हो तो हेयर स्टाइल को नीट रखना कभी ना भूले
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स RM2
2: रेडियो मस्ती

तो जानी वक्त दौरा ओनली फॉर दिस आवर, उसके बाद फिर से मुलाकात होगी 11 से 12 के बीच में, जहां पर कुछ किचन टिप्स, कुछ हाउसहोल्ड टिप्स और साथ में मस्ती जारी, गाने की बारी, एंड मिलते हैं ना संक्षिप्त समाचार के बाद।

0: Good morning, Monday, 29th of June, time check, exactly 11 a.m. याशना के स्टूडियो में उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार
1: सभी को, नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। सेशेल्स अपनी स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने का भव्य उत्सव आज मना रहा है। कई दिनों की तैयारियों के बाद जश्न का दिन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे देश में विभिन्न सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी अपनी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम के साथ वहां इस समारोह में भाग लेने गई हुई हैं। 1976 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से सेशेल्स ने राजनीतिक स्थिरता, पर्यटन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 50वीं वर्षगांठ के समारोह में राष्ट्रीय एकता और देश की उपलब्धियों को विशेष रूप से उजागर किया जा रहा है। मडागास्कर में मॉरिशस के दूतावास ने मनानारानोट में हुए एक दुखद घटना के बाद शोक में डूबे परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जून को एक मलगासी महिला का शव बरामद किया गया। उसकी चाकू से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका है। परिवार के अनुसार संदिग्ध उसका साथी है जो घटना के बाद फरार हो गया। कुछ घंटों बाद उसे मलगासी पुलिस ने खोज निकाला। संदिग्ध की पहचान मॉरिशस के नागरिक राजीव जिबुत के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के दौरान वो पुलिस की गोलीबारी में घायल हुआ और अस्पताल में बाद में उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल मॉरिशस में कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों ने इस मामले पर कोई जानकारी नहीं दी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़ों के अनुसार मॉरिशस में वेतन में वृद्धि जारी है। पहली तिमाही 2026 में वेज रेट इंडेक्स पिछली तिमाही की तुलना में 4.1% से बढ़ा है। ये वृद्धि कई क्षेत्रों में वेतन में बढ़ोतरी की पुष्टि करती है, जिससे ये संकेत मिलता है कि देश में मजदूरी और श्रम में सामान्य सुधार देखा जा रहा है। विदेश की खबरों में फ्रांस के पूर्वी हिस्से में एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 11 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार विमान में सवार सभी लोग, पायलट और 10 यात्री इस हादसे में मारे गए। मृतकों में 5 इंस्ट्रक्टर और 5 ऐसे लोग शामिल थे जो पहली बार स्काई डाइविंग करने की तैयारी कर रहे थे। ये विमान, जो पैराशूटिंग स्कूल द्वारा संचालित है, उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है। बताया गया कि कुछ पीड़ितों के परिवार वाले भी दुर्घटना के समय एयरफील्ड पर मौजूद थे, क्योंकि वे पहली बार किए जाने वाले टैंडम जंप को देखने आए हुए थे। ये थे अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। ब्रांच रोड लालमाटी में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड की कुमारी पद्मावती बसावा जो लीला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के एक बजे उनके मकान ब्रांच रोड लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM। महात्मा गांधी रोड स्टैनली रोजिल में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती हेमंती हृदय पैराशी नाम रतन और जो बसंती के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे धर्म हृदय के मकान महात्मा गांधी रोड स्टैनली रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्लेव्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रारोड लेस्पेहांस कॉचिमिलिटिया में

0: उनचालीस साल के 39 ईयर्स ओल्ड के श्री श्री वेंकटेश्वर राव नरसिम्हलु, श्री श्री वेंकटेश्वर राव नरसिम्हलु जो कृष के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी दोपहर 2 बजे उनकी पत्नी कोमल नरसिम्हलु के मकान रॉयल रोड लिस्पेरांस कच्चे मृतिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: रेडियो मस्ती।
1: मेरी आंखें सोती हैं मगर ये दिल जागता है। ऐ मेरी प्यारी चलिया।

0: अच्छा एक टाइम था ना जब ये प्राइवेट वीडियोस बनते थे और फिर वी यूज़ वॉच इट, वो 90s जमाना जब शुरू हुआ था प्राइवेट टेलीविजन और वहीं पर ये प्राइवेट वीडियोस एंड कुछ अलग ही कहानी थी। और वहीं पर अभी अलका याग्निक इंद्रेश अपना चेहरा दिखा रेडियो पर आएंगे लेकिन अभी चेहरा तो नहीं लेकिन आवाज जरूर हाथों पर पहुंचाएंगे। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यू लिसनिंग टू द वेरी बेस्ट। वेलकम टू दिस थर्ड आवर।
1: वेलकम टू आरएम2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जी हाँ, सुबह से भाग दौड़ी लगी हुई है हर किसी की, चाहे काम पर हो या फिर घर पर थोड़ा आराम की बात हो, जो भी हो कहानी चलती ही रहती है वहीं पर। नमस्ते जी, पूजा आ गई क्वायर से, कहती हैं कि प्यासा गाना स्पेशली विजेश के लिए, उनकी दादी बसंती की तरफ से। मम्मी है पूजा, पापा रमेश, चाचा राकेश, विधि विभा, साथ में फूफा जी और साथ में है आरती जी और पूजा फूफा आवेश। विशे वेरी हैप्पी बर्थडे एंड हेल्दी लाइफ। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है हेल्थ होना, हेल्थ इज वेल्थ, ऐसे नहीं कहते इसलिए क्योंकि सब मॉर्निंग के अंदर आप जब अच्छा फील करते हैं निकल पड़ते हैं अपने काम को करने के लिए, हेल्थी है। अगर ठीक होगी तो सब कुछ ठीक, नहीं तो अच्छुम अच्छुम। अरे साहब, कौन से राउंड अबाउट पे कहाँ हो जाओगे गुम, बता नहीं पाओगे तुम। गुड मॉर्निंग फरजान के लिए, सलीम के लिए, प्लीज फिरान के लिए, नाइज, नबील, समीर भी हमारे साथ दे रहे हैं, अमीर भी हमारे साथ दे रहे हैं, सभी सुनने वालों के नाम हेलो। साथ में सचिन जो हमारे साथ दे रहे हैं नुबेल दे कुवैत से, और कहते हैं कि मौसम बहुत ही कमाल का है लेकिन सोने के लिए क्या बात कर रहे हो। नहीं, हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा काम कर लिया वीकेंड में, अभी एक दिन ऑफ मिल जाता ना इतना काम करने के बाद। ऑल द वंस जो अभी शादी वादी के बंधन में बंध रहे हैं, ओए होए, मैं कहता हूँ खुशी, हैप्पीनेस एंड अ बिग बिग हैप्पी एंड हेलो। Shout out goes out to Urvashi and Dan, जिनकी शादी हो गई बहुत खुशी खुशी में, पूरी फैमिली की तरफ से, especially उनके मामू कैलाश की तरफ से loads of love.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: Uniquement chez King Savers, du 25 juin au 13 juillet, les snacks Nandi de 40 à 90 grammes sont à 37,80 €. Les chips Lawrence Naturals sont à 89,80 €.
0: RM2 Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: अरे जब छोटे थे तो आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, लेकिन माँ बाप कहते थे कि ऐसा है कि आप कुछ नया सीखे, एक नया वर्ड ही सीखो दिन में, क्यों नहीं एक दिन एक डायरी बनाओ क्या नया सीखा। लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी की जिंदगी है और रोज सिर्फ एक नई बात सीखना ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे अगर ऐसा करना शुरू करते हो तो। ये भी चीज रियलाइज करो कि आप कुछ सीखना शुरू करते हो एंड देन यू स्टार्ट नोटिसिंग, अरे हाँ ये तो यहाँ यूज हुआ, या फिर एक शब्द हो या फिर कोई प्रोसेस हो, कुछ भी कुछ नया, एक स्किल प्रोबेबली, अपने आप को और बेहतर बनाते चले जाओ। और एक नया वर्ड हो या फिर कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट हो, एक नई रेसिपी हो, एक नया स्किल हो, कुछ भी आगे बढ़ने का नेचुरल तरीका, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट बट चेंज।

0: to Radio Musti.
1: Household and decoration tips brought to you by Lolo Hypermarket.
0: Welcome to RM2.
1: Musti Mornings Radio Musti.
2: चलिए किचन में इतना सारा काम होता रहता है, फिर चाहे आप वेजिटेबल्स काट रहे हो या फिर सिंक को साफ करके आप अपना स्पंज साइड में रखते हैं या फिर बर्तन साफ करना, ऐसे मुश्किल तो होती है खाने पीने के बाद, पेट भरा हो, मौसम बिल्कुल सजा हो, तो फिर ऐसा काम करना थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है। बट यस, व्हेन इट्स वेलकमिंग तो सब कुछ ठीक। गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। आज के घर का स्मार्ट टिप, अगर आपका किचन स्पॉन्ज से स्मेल आनी शुरू हो चुकी है तो आप समझ लीजिए कि काम ठीक तरह नहीं हो रहा हो, इसलिए क्योंकि आप खाली उसको यूज़ करते हैं और फिर रख देते हैं वापस, नॉट इनफ। उसको गर्म पानी में, बिल्कुल गर्म पानी के अंदर डालना बहुत ज़रूरी है टू किल ऑल द बैक्टीरिया, और उसको ड्राई करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि सारा पानी निकाल के फिर ऐसी जगह रखें जहाँ पर वो ड्राई हो सके, ना कि एक कंटेनर में बंद करके डाल दिया या फिर बस घुसा दिया नीचे। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वेट स्पॉन्ज में बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हर यूज़ के बाद स्पॉन्ज को अच्छी तरह से निचोड़ कर या गर्म पानी में डालकर बहुत ज़रूरी है कि एक दो हफ्ते में उसको रिप्लेस करते रहें। याद रखिए, साफ स्पॉन्ज का मतलब है सिर्फ साफ बर्तन नहीं बल्कि हेल्दी किचन।

0: You're listening to a Radio Masti.
1: जाने का वक्त है. थैंक यू सो मच इतने प्यार से आपने साथ दिया. एंड आप नेक्स्ट वन भी निलमनी आपका साथ देने के लिए. यालेश थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली मैसेज. उनको मैं आपकी विशेस पहुंचा दूंगा. हैप्पी हैप्पी मंडे की मॉर्निंग. नमस्कार जीना जी, गुड मॉर्निंग. एंड कहते बस हफ्ते की शुरुआत करो उसी प्यार के साथ, सक्सेस एंड पॉजिटिविटी के साथ जो आप चाहते हैं जिंदगी में. हमेशा चलता हर कोई है, लेकिन वक्त के साथ चलना ये अलग बात है. मुझे भी चलना चाहिए.

0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. The Musty. The Musty.
2: शकिया टाइम स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं। ये सुनते हैं समाचार याचना के साथ। नमस्कार।
3: नमस्कार गिनिशा, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। सेशेल्स अपनी स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने का भव्य उत्सव मना रहा है। कई दिनों की तैयारियों के बाद आज जश्न का दिन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे देश में विभिन्न सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और औपचारिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम भी अपनी पत्नी श्रीमती वीना रामगुलाम के साथ वहाँ इस समारोह में भाग लेने गए हुए हैं। 1976 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से सेशेल्स ने राजनीतिक स्थिरता, पर्यटन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मडागास्कर में मॉरिशस के दूतावास ने मानानारा नोड में हुए एक दुखद घटना के बाद शोक में डूबे परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जून को एक मालागासी महिला का शव बरामद हुआ। उसकी चाकू से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका है। परिवार के अनुसार संदिग्ध उसका साथी है जो घटना के बाद फरार हो गया। कुछ घंटों बाद उसे मलागासी पुलिस ने खोज निकाला। संदिग्ध की पहचान मॉरिशस के नागरिक राजीव जिबुद के रूप में हुई है। कथित गिरफ्तारी के दौरान वो पुलिस की गोलीबारी में घायल हुआ और अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई। फिलहाल मॉरिशस में कानूनी व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों ने इस मामले पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़ों के अनुसार मॉरिशस में वेतन में वृद्धि जारी है। पहली तिमाही 2026 में वेज रेट इंडेक्स पिछली तिमाही की तुलना में 4.1% बढ़ा है। ये वृद्धि कई क्षेत्रों में वेतन में बढ़ोतरी की पुष्टि करती है। विदेशी समाचारों में फ्रांस के पूर्वी हिस्से में एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 11 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार विमान में सवार सभी लोग, पायलट और 10 यात्री इस हादसे में मारे गए। मृतकों में 5 इंस्ट्रक्टर और 5 ऐसे लोग शामिल थे जो पहली बार स्काई डाइविंग करने की तैयारी कर रहे थे। और फीफा वर्ल्ड कप के लिए राउंड ऑफ 32 का दौर शुरू हो चुका है और अब सभी टीमें खेलेंगी राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की करने के लिए। दक्षिण अफ्रीका की टीम का सामना हुआ मेजबान देश कनाडा के साथ और मैच काफ़ी रोमांचक रहा। स्कोर रहा कनाडा 1 और बाफाना बाफाना 0। आज रात 9 बजे ब्राज़ील खेलेगा जापान के खिलाफ। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। महात्मा गांधी रोड स्टैनले रोजिल में 76 साल की 76 ओल्ड की श्रीमती हेमंती रिदोई पैराशी नाम रतन और जो बसंती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे धर्म रिदोई के मकान महात्मा गांधी रोड स्टैनले रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलोव्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। रा रोड लेस्पेरांस क्वार्टर मिलिटिया में 39 साल के 39 ईयर्स ओल्ड के श्री श्री वेंकटेश्वर राव नौसिमुलू जो कृष के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2 बजे उनकी पत्नी कोमल नौसिमुलू के मकान रॉय रोड लेस्पेरांस क्वार्टर मिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। रॉबिन्सन नंबर दो क्यूपिप में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के श्री महेन ओबिलक जो माहेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4:30 उनके मकान रॉबिन्सन नंबर 2 क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 4:30 PM। रा रोड आल्बियो में 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अहिल्या काली जो चादों के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु

0: मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके बेटे सुचित दुखिया के मकान रॉयल रोड आल्बियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बॉम्बू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10:30 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Retro Rhythm. RM2.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती
0: रेट्रो रिदम
1: RM2 रेडियो मस्ती

0: रेट्रो रिदम
1: बहुत ही खूबसूरत प्यारे गाने को लेकर हम आए हैं खासकर आप लोगों के लिए। दैट वाज स्पेशली फॉर यू आलिशा चिनाई की आवाज़ में यार मेरा खो गया। लेकिन हम तो कहीं नहीं खोए हैं, हम तो यहीं पे आप लोगों का साथ देने के लिए, निभाने के लिए। सो थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए, फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर टू ऑल आवर डियर एंड लवली लिसनर्स। जो अभी काम पे हैं हम आपको विश करना चाहेंगे बों को हाज माई डियर एंड कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन। फिलहाल के लिए आई गॉट योर डेडिकेशन ऑन 5499124 पर। एंड हमारी प्यारी जाना ने एक मैसेज भेजा है फ्रॉम फ्लैक और वो बोलती हैं कि आप कैसे हो, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, आपकी नीस अंशिनी का बर्थडे है, सो आई जस्ट वांट टू विश अ हैप्पी बर्थडे। एंड चलिए जी बेस्ट विशेस आपकी बेटी रीमा जनीता शेष्टा अंशिनी सिल्विया और यूवी कृषि शिव सगन परिवार की तरफ से। आप उनको ढेर सारा प्यार ढेर सारी शुभकामनाएं विश कर रहे हैं, तो चलिए उनके लिए हैप्पी वाला बर्थडे जिंगल हो जाए।

0: to you from Radio Musti.
1: बिल्कुल जी, हैप्पी वाला बर्थडे टू यू एंड इवन हैप्पी 33rd बर्थडे टू सिस्टर उर्वशी महेश जो रहती हैं बॉम्बू में. एंड द बेस्ट विशेस आपके पति विनेश, मामा प्रीति, पापा कृष, सिस्टर विष्णी, बेटा केहान एंड भाई आकाश, सासू माँ सावित्री, जीजू, विक्रम, भाभी प्रीति एंड पूनम, अनिश्ता, नेफ्यू अभिषय, अभिनव, अनीस, वैष्णवी एंड आनिया दिविष्टि. एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम ऑल मनसुख परिवार और महेश परिवार जो बॉम्बू के रहने वाले हैं. विशिंग यू लोड्स ऑफ हैप्पीनेस माय डियर. थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन रेडियो मस्ती. तो चलिए जी, टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज, आई जस्ट वांट टू विश यू अ मैजिकल बर्थडे ऑन आवर टू रेडियो मस्ती. और फिलहाल के लिए अगला गाना उन तमाम सुनने वालों के नाम जो हमारा साथ दे रहे हैं. एंड हियर वी गो 5491294 पर यू कैन सेंड मी योर डेडिकेशंस.
2: यू आर लिसनिंग टू

0: FM2
1: रेडियो मस्ती
0: रेट्रो रिदम
1: RM2 रेडियो मस्ती

0: रेट्रो रिदम।
1: बिल्कुल जी, अपने तो अपने ही होते हैं और जी भर के प्यार तो करते ही रहते हैं और अपने ही हमेशा अपने ही रहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। एंड जैसे कि हमेशा बोला जाता है ना कि ब्लड इज़ ऑलवेज थिकर देन वाटर, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे दोस्त भी तो मिल जाते हैं ज़िंदगी में, जैसे कि हम बोलते हैं यू चूज़ योर फैमिली समटाइम्स, जैसे कि यू चूज़ योर फ्रेंड और बाद में वही दोस्त आपके फैमिली मेम्बर्स बन जाते हैं। एंड वेल वी शुड ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान हो जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, जो आपकी हर नखरे भी उठा लेते हैं और छोटी मोटी बातें भी समझ लेते हैं। आपका मूड अगर ऑफ हो तो वो उस इंसान को पता है कि आपका मूड कैसे फिर से सेट कर सकता है। एंड बोलते हैं ना कि दोस्त हो तो ऐसा भी होना चाहिए, अपने हो तो ऐसा होना चाहिए जिसके साथ सिर्फ दुख ही नहीं लेकिन सुख और दुख दोनों ही बांट सकते हैं, यानी कि क्रेजी टाइम्स यू कैन क्रिएट टुगेदर। तो चलिए 12:40 हो चुके हैं, गिनेश ऑन द माइक साथ देने के लिए और फिलहाल के लिए बढ़ते हैं आपके डेडिकेशंस की ओर। एंड आई गॉट द नेक्स्ट वन हमारे मिस्टर डेव की तरफ से फ्रॉम द सिटी ऑफ लव। अगला गाना आपकी खूबसूरत सी वाइफ के लिए जो साथ

0: Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.

0: आइए सुनते हैं समाचार विदिमा के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनीशा, सभी सुनने वालों को नमस्कार। सेशस और मॉरिशस के बीच साझा हितों पर आज सुबह माहे स्ट्रीट स्थित स्टेट हाउस में चर्चा हुई। पैट्रिक एमिनी ने डॉक्टर नवीन राम गुलाम का स्वागत किया। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने कल रात स्टादली नीति में आयोजित राष्ट्रीय परेड और कार्यक्रम के लिए सेशल्स के राष्ट्रपति को बधाई दी। इसके बाद चर्चा आपसी हितों पर केंद्रित रही, विशेष रूप से इस कठिन वैश्विक परिवेश में एक दूसरे की मदद कैसे की जाए इस पर बातचीत हुई। उनके छोटे द्वीपीय देशों के दर्जे पर भी चर्चा की गई। मॉरिशस सेशल्स में एक उच्चायोग खोलेगा। कल मंगलवार बजट 2026-2027 को अपनाने का अंतिम चरण है। अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 26 जून को बिना किसी संशोधन के कमिटी स्टेज से गुजरने के बाद राज्यसभा में थर्ड रीडिंग के लिए कार्यसूची में शामिल है। इसमें ऐसे उपाय शामिल हैं जो सीधे तौर पर दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से खरीद शक्ति, टैक्सेशन और सामाजिक सुरक्षा। और साल के अंत में अन्य कदम भी लागू किए जाएंगे, विशेष रूप से 1 अक्टूबर से मिठाइयों और बिस्कुट पर शुगर टैक्स का विस्तार, साथ ही प्लास्टिक की बोतलों पर टैक्स लगाए जाने की उम्मीद है। मॉरिशस में वेतन वृद्धि का सिलसिला जारी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में वेज रेट इंडेक्स में पिछली तिमाही की तुलना में 4.1% की वृद्धि हुई है, जो कई क्षेत्रों में वेतन में सामान्य वृद्धि की पुष्टि करती है। विदेश में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदानोम गेब्रेयेसुस के अनुसार यूरोप में अभूतपूर्व शुरुआती ग्रीष्मकालीन हीट वेव सैकड़ों लोगों की असामयिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार हो सकती है। रविवार को पूरे महाद्वीप में तापमान के पुराने रिकॉर्ड फिर से टूट गए, जिसमें जर्मनी, पोलैंड और चेक गणराज्य भी शामिल हैं। एक्स पर एक पोस्ट में WHO प्रमुख ने कहा कि 21 जून से यूरोप में उच्च तापमान से जुड़ी 1300 से अधिक असामयिक मौतें दर्ज की गई हैं। और यूक्रेन ने घोषणा की है कि उसने रूसी ऊर्जा अवसंरचना पर अपने हवाई हमलों को तेज करते हुए 2 रूसी तेल रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले किए हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त है। थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉबिन्सन नंबर 2 क्यूपिप में 54 साल के 54 years old के श्री माहेन अबिलक जो माहेन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम साढ़े चार बजे उनके घर रॉबिन्सन नंबर 2 क्यूपिप से उठाकर बिगाहा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन विस आफ्टरनून एट 4:30। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv.
3: Retro Rhythm.
4: RM2, Radio Musti. Radio.

Retro Rhythm. Hello G, welcome back in the second hour of this beautiful show. And that's your retro rhythm happening right now. RMT Radio Masti par. जी हाँ, हमारे साथ गिनीशा के साथ जो शिद्दत से बड़े प्यार से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारे गाने तराने जो शायद हो सकते हैं हमारे सॉन्ग सिलेक्शन में कोई ऐसा गाना होगा जो आपके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब हो. तो चलिए जी, 9:09 हो चुके हैं. सो विशिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन अ वेरी गुड आफ्टरनून. नमस्कार जी और गिनीशा का प्रणाम. और उम्मीद करते हैं दैट यू आर हैविंग अ गुड डे, क्योंकि आज है मंडे ब्लूज. आई नो यू जस्ट डोंट वांट टू बी एट वर्क, यू जस्ट वांट टू बी होम. और ऐसे मौसम ठंडे ठंडे मौसम में ऐसा लगता है ना कि क्विल्ट के नीचे, ब्लैंकेट के नीचे अगर इंसान ना निकले तो कितना अच्छा रहेगा. गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म कॉफ़ी पियोगे घर पे या पकोड़े शकोरे खाओगे. अरे चुप करो यार, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में. काम करो. सबको आज टू यू, एन्जॉय द शो.

0: Retro Rhythm.
1: Well guys, I really hope that you are really loving these beautiful गानों का selections जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए on RMT Radio मस्ती 12 बजे से लेकर 2 बजे तक रोज दोपहर यानी कि हम लेकर आते हैं 2 घंटे की इस खूबसूरत पुराने गानों की सफर जहां evergreen है Bollywood गाने यानी कि 70s, 80s और even 90s बोला जाता है ना the new oldies it's 90s तो हम ऐसे गिने चुने नगमे लेकर आते हैं आप लोगों के लिए और साथ साथ में आपके dedications को भी हम मोस्ट वेलकम करते हैं ऑन RMT रेडियो मस्ती सो चांदनी जी जो है पुरुषोत्तम फ्रॉम ब्रिटानिया एंड 30 को आपके पति प्रीतम अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं सो एडवांस में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी परिवार की ओर से पत्नी का नाम है चंदनी एंड बेटी यूषा वी हैव बेटा रुद्र सासुमा सीता पुरुषोत्तम एंड चौथी परिवार फ्रॉम सैपिया सो बस उनको विश करना चाहेंगे हैप्पी बर्थडे एंड किसी ने लिखा है यानी कि जाना फ्रॉम फ्लैक नाइस सिलेक्शन अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो दैट्स गुड माई डियर कनीश का सच अ ब्यूटिफुल सिलेक्शन डे सुपर थैंक यू सो सो मच एंड गुड आफ्टरनून जी वेरी स्वीट गाने हमेशा की तरह थैंक यू सो मच आपकी प्यारी दोस्त अच्छा मैं हूँ आपके प्यारे दोस्त ऑफकोर्स मैं तो सभी के दोस्त हूँ आपको तो पता ही है तो चलिए जी हमेशा की तरह हैप्पी मंडे टू यू एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम अनीता फ्रॉम फिकम फ्लैग एंड ग्रीटिंग्स फ्रॉम नेदरलैंड्स एंड यू आर नाउ ऑन वैकेशन इन फ्यूटे वेंचुरा विद योर फ्रेंड्स सो यू एंजॉइंग दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग्स अगेन थैंक यू सो मच जी और बस यूँ ही साथ देते रहना साथ समुद्र पार से भी एंड आई जस्ट होप कि आप और आपकी टीम बिल्कुल ठीक हैं बढ़िया हैं जी बढ़िया हैं मॉरिशस में वी आर लकी वी आर हैविंग अ कूल वेदर हाँ जी यूरोप में तो कानिकल चल रहा है ना आजकल तो बहुत ही गर्मी है सो कूल ठंडी ठंडी हवा भेजने की कोशिश कर रहे हैं टू दिस ब्यूटिफुल एंड मस्मराइजिंग गाने तो चलिए जी 5491294 पर 5499294 सेंड मी योर डेडिकेशंस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम ऑन RMT रेडियो मस्ती

0: शायद तू ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: Retro Rhythm.
1: थैंक यू सो सो मच टू ऑल आवर डियर लवली लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं ऑन आरएमटी रेडियो मस्ती. जी हाँ दोस्तों, वैसे टाइम बीता चला जा रहे हैं और एक के बाद एक खूबसूरत गाने तराने हम पेश कर रहे हैं आप लोगों के लिए और उम्मीद करते हैं दैट यू गाइस आर रियली रियली एंजॉयिंग है. तो चलिए जी, आई हैव द नेक्स्ट वन जो है स्पेशली फॉर यू माई डियर फिया जी जो साथ दे रही हैं एंड एंजॉइंग द शो एंड प्रोग्राम एंजॉय कर रही हैं. बाबू से धनेश्वर, उनकी पत्नी सुनीता साथ दे रही हैं, माला रानी फ्रॉम देवदो family, and thank you for the beautiful song skinny. Thank you so much to you my dear. And chaliye ji, happy 16th birthday to Prince Ekveer Rao Ramdu jo Rodrigues Island se saath de rahe hain, from Darren Shweta Ravish Prishalavishana by the family, so all those jo saath de rahe hain. And especially the next one goes to husband Rakesh jo kafi gusse mein hain, and chaliye aapka phone nahi utha rahi hain. Unki biwi Naina ne bheja hai bade pyar se ek pyara sa message. Are gussa thok do na, aapki biwi ke manane ke liye taiyar hai, to isi baat ka aap fayda utha lijiye aur apne pyari si biwi ke saath baat kar lijiye. And the next one goes out especially to all those जो साथ दे रहे हैं, and कमलदीप जी के लिए भी जो साथ दे रहे हैं, thank you so much साथ निभाने के लिए. and we have जीना, जीना जोयसूरी जी आप हमें सुन रही हैं, thank you so much. actually आप कब से हम यानी कि 12 बजे से मैसेज भेज रहे हो, लेकिन आप बोलते हो कि हम आपका मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं. आप थोड़ा सा सब्र रखें, जब आप दूसरा मैसेज पढ़ते हो तो वो फिर से ऊपर चले जाते हैं, यानी कि अगर आपने 12 बजे एक मैसेज भेजा फिर 12:15 एक मैसेज भेजा तो वो 12:15 वाले में चले जाएंगे ना, इट वॉन्ट रिमेन इन द 12 बजे वाले मैसेजेस. सो इसीलिए ही अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है. वी आर ऑल वन फैमिली, आई एम हियर, आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क रीडिंग ऑल योर मैसेजेस ऑन एयर. वैसे इसलिए हम बोलते हैं कि पेशेंस रखना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है. और चलो अब अगला गाना स्पेशली हम आपके लिए ही जीना डेडिकेट करना चाहेंगे.

नैना। तो चलिए जी, ये हैं कुमार सानू की खूबसूरत सी आवाज में आप लोगों के लिए, प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा। वैसे तो प्यार हो ही गया है, किससे नहीं मैं नहीं बताऊंगी, जरूर जरूर किसी ना किसी तो आपको भी हो गया होगा। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए जाते जाते आई जस्ट वांट टू विश हैप्पी बर्थडे टू अनुषा दसोई का जन्मदिन है आज एंड शी इज इन इटली। हे माय ब्यूटीफुल लेडी, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे अ मैजिकल वन। एक खूबसूरत सा गाना, एक्चुअली यही गाना चल रहा है तो आपके लिए, फ्रॉम ऑल जॉयसोरी फैमिली, दसोई फैमिली, जीवर फैमिली एंड सीवो फैमिली, आरएनटी रेडियो मस्ती फैमिली की तरफ से लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू यू। तो चलिए जी, जाते जाते एक और गाना हो जाए, और आई जस्ट वांट टू विश एवरीवन टू हैव अ ग्रेट टाइम ऑलवेज बाय लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन। थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए। शाम को मिलते हैं 4 to 7 इन योर लवली शो, दैट्स योर रफ्तार वाइब्स, यानी कि थोड़ी देर बाद।

0: आइए सुनते समाचार विदिमा के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनीशा, सभी को नमस्कार। सीशेल्स और मॉरिशस के बीच साझा हितों पर आज सुबह माहे स्थित स्टेट हाउस में चर्चा हुई। पैट्रिक एमिनी ने डॉक्टर नवीन राम गुलाम का स्वागत किया। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने कल रात स्टादिनिते में आयोजित राष्ट्रीय परेड और कार्यक्रम के लिए सीशेल्स के राष्ट्रपति को बधाई दी। इसके बाद चर्चा आपसी हितों पर केंद्रित रही, विशेष रूप से इस कठिन वैश्विक परिवेश में एक दूसरे की मदद कैसे की जाए, इस पर बातचीत हुई। उनके छोटे द्वीपीय देशों के दर्जे पर भी चर्चा की गई। मॉरिशस सीशेल्स में एक उच्चायोग खोलेगा। कल मंगलवार बजट 2026-2027 को अपनाने का अंतिम चरण है। अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 26 जून को बिना किसी संशोधन के कमिटी स्टेज से गुजरने के बाद राज्यसभा में थर्ड रीडिंग के लिए कार्यसूची में शामिल है। इसमें ऐसे कदम शामिल हैं जो सीधे तौर पर दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से खरीद शक्ति, टैक्सेशन और सामाजिक सुरक्षा। मॉरिशस में वेतन वृद्धि का सिलसिला जारी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में वेज रेट इंडेक्स की पिछली तिमाही की तुलना में 4.1% की वृद्धि हुई है, जो कई क्षेत्रों में वेतन में सामान्य वृद्धि की पुष्टि करती है। और विदेश में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक अमरीकी अधिकारी का हवाला देते हुए कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में हुए हमलों के आदान प्रदान के बाद अमरीका और ईरान पीछे हटने पर सहमत हो गए हैं। ये घटनाक्रम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में और उसके आसपास हुए कई हमलों के बाद आया है, जो दोनों देशों द्वारा एक दूसरे पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने के आरोपों के साथ चरम पर पहुंच गए थे। ईरान ने इन खबरों पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि वो होर्मुज में हमले रोकने के लिए सहमत हो गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉबिन्सन नंबर 2 क्यूबिक में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के श्री महेन अबिलक, जो महेन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज शाम 4:30 उनके घर रॉबिन्सन नंबर 2 क्यूबिक से उठाकर बिगाहा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन विस आफ्टरनून एट 4:30। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Lolo Hypermarché, low, low prices. Morcellement Saint-André et le Valentina Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं। हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
3: RM2
4: Radio Musti.
3: तो चलिए दोस्तों, 2:10 हो रहे हैं, मंडे आफ्टरनून, 29th of June. वेल, आफ्टर वीकेंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल वीक, जहां पर आज के दिन के साथ शुरुआत हो रही है इस हफ्ते की। लेकर आए हैं गुड गुड विशेस और उम्मीद करते हैं ये हफ्ता है सबके लिए काइंड और सबके लिए बहुत सारी गुड न्यूज एंड गुड विशेस लेकर आए। शुरू कर रहे हैं एक नया हफ्ता, लेकिन भेज रहे हैं आपके लिए बहुत सारा प्यार आफ्टरनून टाइम। जैसे कि आप जानते हैं, 2 से लेकर 4 बजे तक इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज। मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM राइट हियर ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती। एंजॉय दिस वन दैट्स इन द ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ नेहा कक्कड़।

0: आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं, अब इसकी जरूरत नहीं। हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
1: RM2
2: Radio Musti.
1: RM2 Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: वेल फ्रेंड्स, 2:25 और मैं हूं फेरी आपके साथ. इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. बता दें आपको, होमी अराजानिया की फिल्म कॉकटेल 2, जिसमें शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सनन ने लीड रोल निभाया है, मिले जुले रिव्यूज के बाद बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत जबरदस्त रही. फिर शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद भले ही कमाई में थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म ने 2012 की ओरिजिनल फिल्म

0: कॉकटेल जिसमें सैफ अली खान दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी नजर आए थे उनकी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है और 10वें दिन कलेक्शन अगर देखा जाए तो इस फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया है यानी कि आजकल हम जानते हैं दोस्तों कि जब फिल्म रिलीज होती है उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी काफ़ी अहम रोल निभाती है जैसे हम जानते हैं धुरंधर फिल्म जब रिलीज हुई थी तो इसके दो दिन इस फिल्म की कमाई एकदम नॉर्मल रही थी लेकिन उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से इस फिल्म ने इस कदर एक जंप लिया कि सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़े एंड यस वी आर टॉकिंग अबाउट धुरंधर तो ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कॉकटेल के साथ जहां पर मिक्स रिव्यूज के बाद फिल्म अभी भी कर रही है अच्छा खासा कलेक्शन अब तो कुछ नई फिल्में भी रिलीज हो गई है और जो घरेलू यानी कि जो होम बिजनेस था कॉकटेल का जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2012 इसे पार कर लिया है कॉकटेल 2 ने एंड आई गेस दैट लोगों को ये फिल्म शायद पसंद आ रही है इसीलिए अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है ये फिल्म सो बता दें आपको रश्मिका मंदना शाहिद कपूर कृति सनन स्टार कॉकटेल 2 अभी के लिए तो कर रही है गुड गुड बिजनेस थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है इसके कलेक्शन में बट जैसे हम जानते हैं नई फिल्में रिलीज होती है लेकिन अभी भी लोग देखना चाहते हैं इस ब्यूटीफुल लव ट्रायंगल को सो हमें बताएं अगर आपने इस फिल्म को देखा है ये फिल्म आपको कैसी लगी उसके बाद हम बात करने वाले हैं वेलकम टू दी जंगल ओ माय गॉड क्या हो रहा है इस फिल्म के साथ बात करेंगे थोड़ी ही देर में स्टे वेल ट्यून्ड
1: RM2 रेडियो मस्ती

0: Bombay Talkies Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम तो बात करने के लिए ऑल सेट ऑल रेडी. जैसे कि आप जानते हैं, दो से लेकर चार बजे तक बी टाउन की खबरें आप तक पहुँचाते हैं. कौन सी मूवी कैसा बिजनेस कर रही हैं, आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, सारी खबरें हम आप तक पहुँचाते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट मच अवेटेड फिल्म ऑफ अक्षय कुमार. अक्षय कुमार की लेटेस्ट रिलीज फिल्म वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्मेंस कर रही है. इस मल्टी स्टार फिल्म का रिलीज से पहले ही इतना माहौल बन चुका था कि शानदार प्री स्क्रीनिंग के बाद इसकी दमदार ओपनिंग हुई और वीकेंड पर तो इसने जमकर नोट छापे और इस फिल्म का 3 दिनों का कलेक्शन बेहद शानदार रहा. और चलिए जानते हैं वेलकम टू द जंगल तीसरे दिन कौन कौन से बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं. बता दिए दैट वेलकम टू द जंगल ने अभी तक यानी कि 3 दिन में 10,867 शोज में 24.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. इससे भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 76.50 करोड़ और कुल नेट कलेक्शन 63.75 करोड़ हो चुका है. वहीं अगर विदेशों की बात करें तो इस फिल्म ने तीसरे दिन 5.25 करोड़ जोड़े और जिससे इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 16.95 करोड़ हो चुका है और इसकी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई 93.45 करोड़. यानी कि 3 दिनों में 100 करोड़ के पार पहुंचने वाली है ये फिल्म. लेकिन यहाँ पर जैसे हमने कहा कि ये फिल्म काफ़ी पब्लिसिटी से चल रही थी और जब भी ये फिल्म के बारे में हम सुनते थे तो बहुत सारी चीज़ें थी जो लोगों को इसकी ओर अट्रैक्ट कर रही थी. सबसे पहले तो मल्टी स्टार फिल्म, इतने सारे लोग इस फिल्म में नज़र आए हैं, इतने सारे स्टार्स इस फिल्म में नज़र आए हैं. उसके बाद रवीना टंडन एंड अक्षय कुमार को इतने सालों बाद बिग स्क्रीन पर एक साथ देखना. उसके बाद हेरा फेरी की जो तिगड़ी थी यानी कि परेश रावल, अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी, यस इन को भी एक साथ देखने को मिलने का मौका मिलने वाला था. सो यहाँ पर लोगों के पास बहुत सारे रीजंस थे इस फिल्म को देखने के लिए. और जैसे हमने बताया कि 3 दिनों में इस फिल्म ने बहुत अच्छी कमाई कर ली है, लेकिन अब लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है, जैसे हमने कहा, सब डिपेंड करता है लोगों के रिव्यूज पर. और रिव्यूज तो आ रही है मिक्सड. कुछ लोगों को ये फिल्म काफी फनी लग रही है, कुछ लोगों को लग रही है कि इतनी भी कुछ फनी नहीं है. लेकिन अभी तक हमने इस फिल्म को नहीं देखा. अगर आपने देखा है, बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी. बात हो रही है वेलकम टू द जंगल.

सो वेल फ्रेंड्स, इट्स 2:54 एंड विद दिस ब्यूटीफुल रोमांटिक गाना हम बढ़ने वाले हैं आपके समाचारों की ओर. दिस वन गोज आउट हमारी प्यारी सी जीना जोइसरी, हमारा साथ दे रही हैं आप, एंड थैंक यू सो मच ऑलवेज स्टेइंग कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ. सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक आपके नाम, आशा जी आप भी हमारा साथ दे रही हैं, गाना आपके नाम, सभी लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. दिस वन गोज आउट फॉर ऑल द फैंस ऑफ जुबिन नौटियाल, फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो मस्ती. परी का साथ टिल 4 PM ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

0: welcome to Radio Masti. The time is brought to you by McDonald's.
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
2: Radio Masti.
3: North. South.
4: 103.5.
3: East. West.
4: 96.4.
3: Center.
4: 99.4.
5: RM2, Radio Musty.
2: Radio Musty.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
6: Time check, 3 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा, आपको नमस्कार।
7: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। सेशेल्स और मॉरिशस के बीच साझा हितों पर आज सुबह माई स्ट्रीट स्थित स्टेट हाउस में चर्चा हुई। पत्रिका मिनी ने डॉक्टर नवीन रामगुलाम का स्वागत किया, दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। इसके बाद चर्चा

चाबसी हितों पर केंद्रित रही, विशेष रूप से इस कठिन वैश्विक परिवेश में एक दूसरे की मदद कैसे की जाए इस पर बातचीत हुई। उनके छोटे द्वीपीय देशों के दर्जे पर भी चर्चा की गई। मॉरिशस सेशल्स में एक उच्चायोग खोलेगा। कल मंगलवार बजट 2026-2027 को अपनाने का अंतिम चरण है। अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 26 जून को बिना किसी संशोधन के कमिटी

0: एजुकेशन और सामाजिक सुरक्षा। मॉरिशस में वेतन वृद्धि का सिलसिला जारी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में वेज रेट इंडेक्स में पिछली तिमाही की तुलना में 4.1% की वृद्धि हुई है, जो कई क्षेत्रों में वेतन में सामान्य वृद्धि की पुष्टि करती है। और विदेश में पाकिस्तान ने रविवार को अपनी सीमा से लगे अफगान प्रांतों में हवाई हमले किए और जमीनी सेना भेजी, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। कम से कम 36 नागरिक मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे, और 160 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस कायरतापूर्ण कृत्य की निंदा की और इसे अपराध और अत्याचार करार दिया। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉबिन्सन नंबर 2 क्यूबिक में 54 साल के 54 years old के श्री महेन आबिलक, जो महेन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज शाम 4:30 बजे उनके घर रॉबिन्सन नंबर 2 क्यूबिक से उठाकर भी कहा कि शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन विस आफ्टरनून एट 4:30। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies, Radio Musti.
5: Radio Musti.

इसे थोड़ा सा खास और स्पेशल बना रही हैं विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. मैं हूं परी आपके साथ. इस एल्बम में आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 54991294 पर. साथ में होंगी बी टाउन की कुछ अपडेट्स आपके लिए, कुछ ऐसे गाने जो आपके मूड को सेट रखने वाले हैं. सो वेल फ्रेंड्स, साथ दीजिए हमारा ऑन रेडियो मस्ती. एंड अभी के लिए वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. एंजॉय दिस वन.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So, well, that was a beautiful song. आप सभी के लिए प्यार होता होता होता कई बार है भाई. जेन जी जेन एक्स है, इनका प्यार तो डिफरेंट ही होता है. वेल दोस्तों, आपको बता दी दैट बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहती है. इसी बीच एक्ट्रेस को उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ एक बार फिर देखा गया. दोनों हाल ही में वेलकम टू द जंगल देखने थिएटर्स पहुंचे, जहां से उनका एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें श्रद्धा फिल्म देखते हुए हंसती नजर आ रही है और वहीं राहुल ठीक उनके पास बैठे हुए हैं. श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी का ये वीडियो किसी ऑडियंस में से किसी आदमी ने चुपके से रिकॉर्ड किया और वीडियो में श्रद्धा अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म वेलकम टू दी जंगल को देखते और उसे एंजॉय करते हुए नजर आई. रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी भी उनके साथ बैठे हुए थे और फिल्म को एंजॉय करते वो भी नजर आए. इस वीडियो को शेयर करते हुए फैन ने कैप्शन में लिखा, श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी इतने सारे लोगों के बीच किसी आम सिनेमा हॉल में वेलकम टू दी जंगल देख रहे हैं. वेट, श्रद्धा कपूर एंड राहुल मोदी वो वॉचिंग वेलकम टू दी जंगल इन अ रैंडम मूवी हॉल अमंगस्ट सो मेनी अदर पीपल. हाउ कैन यू बी सो लकी, जहां पर हमारे बाजू में इतनी बड़ी एक्ट्रेस बैठी है और हमें पता ही नहीं था. लेकिन ऑफकोर्स जैसे कि हम जानते हैं, श्रद्धा कपूर शी इज वेरी डाउन टू अर्थ और हमेशा वो ऐसी सिंपल सादगी भरी लाइफ जीती ही नजर आती है. सभी के लिए तो फैंस काफी पसंद कर रहे हैं उनका ये वायरल वीडियो, जहां पर एक सिंपल लड़की की तरह अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो गई फिल्म को देखने और नजर आई फिल्म को एंजॉय करते हुए.
0: RM2 रेडियो मस्ती.

वेल फ्रेंड्स, कनेक्टेड हैं आप आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ. 3:46 मंडे आफ्टरनून. इट्स टाइम फॉर योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस. 5499-1294 पर आप शेयर कर सकते हैं अपने दिल का हाल. थोड़ी देर में लेकर आएंगे योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस फॉर योर लव्ड वंस. तो बस अभी के लिए एक और प्यारा सा गाना. एवरीवन हुज कनेक्टेड हमारे साथ, विशिंग यू ऑल अ लवली आफ्टरनून, लवली टाइम. एंजॉय दिस वन.

0: RM2 रेडियो मस्ती
1: And well, friends, with this beautiful track, it's time for Pari to say goodbye. जाते जाते प्रीतम जी हमारा साथ दे रहे हैं. आप हैं प्रीतम बेटू from Pito और कहते हैं that गानों को enjoy कर रहा हूँ and enjoying the song और specially गाना for my lovely wife Varsha. उनके लिए प्यार and special wishes. So we have this beautiful romantic गाना आपके नाम. ललिता जीतन आप भी आ गई हैं काम से वापस and enjoying the songs. साथ ही याद कर रही हैं अपने दोस्तों को सिमी पूनम सारिका मिमी दिशा यूपी ऋषि एंड यूशना. सभी के लिए प्यार ये है ललिता जी की ओर से. एंड वी ऑल्सो हैव साहिल हमारा साथ दे रहे हैं आप. थैंक यू सो मच साहिल. गाना आपके नाम. विजया जी बहुत भरा बहुत सारा प्यार आपको भी. थैंक यू हमेशा साथ देने के लिए. वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके नाम. और आ रही है गिनी शालेकर और अवतार वाइब्स होंगे कुछ और प्यारे गाने आपके लिए. सो कहीं मत जाइए. स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ.

0: Thank you so much, Isad Deneki. On RM2 Radio Masti, check your time. It's already 4 p.m.
1: RM2 Radio Masti.
2: The time is brought to you by McDonald's.
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
1: Radio Masti.
4: North. South.
1: 103.5.
4: East. West.
1: 96.4.
4: Center.
1: 99.4.
5: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. Feel the Musty. Feel the Musty.
0: आइए सुनते हैं समाचार विदिमा के साथ। नमस्कार।
6: नमस्कार गिनीशा, सभी को नमस्कार। सेशेल्स की राजधानी माहे स्थित स्टेट हाउस में आज सुबह सेशेल्स के राष्ट्रपति पत्र के

खामिनी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के बीच साझा हितों और इलाकाई सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। इस वर्ष पोर्टवी में मॉरिशस सेशल्स संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक आयोजित होगी और सेशल्स मॉरिशस में एक उच्चायोग भी खोलेगा। वहीं कल रात सेशल्स ने अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ इस्तादलिनीते में भव्य समारोह के साथ मनाई, जिसमें राष्ट्रपति एमिनी ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को देश की प्रगति का अहम आधार बताया। कल की अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप्स की भूमिका तेजी से बढ़ने वाली है। मॉरिशस में नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप के इर्द गिर्द धीरे धीरे एक इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। बजट 2026-2027 में इसे समर्थन देने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिनमें स्टार्टअप एक्ट और ईडीबी में एक्सेलरेटर स्कीम आदि शामिल हैं। एमसीबी पश्चिम अफ्रीका में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहता है। मॉरिशस के इस बैंकिंग ग्रुप ने अबिजान आइवरी कोस्ट में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये पहल इस तेजी से बढ़ते देश के प्रति मॉरिशस की कंपनियों की बढ़ती रुचि को दर्शाती है, जिसे आज अफ्रीकी महाद्वीप के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक माना जाता है। और विदेश में अरुणाचल प्रदेश में पूसा में बादल फटने की घटना के एक सप्ताह बाद भी भूस्खलन और बाढ़ से हुई क्षति के कारण होज पुटीन राजमार्ग बंद हैं। इस मार्ग के बंद होने से 7 जिले कट गए हैं, जबकि बारिश, ईंधन की कमी और गहरी घाटियों के कारण मरम्मत का काम धीमा हो गया है। बादल फटने से 3 लोगों की मौत भी हो गई है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 4 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

वेलकम टू योर टाइम स्टूडियो के घर में 4:07 हो चुके हैं. विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून. नमस्कार जी और गणेशा का प्रणाम. वैसे ऑफिस की फाइलें हो चुकी हैं क्लोज, लैपटॉप हुआ है शट और अब टाइम है स्ट्रेस को म्यूट करने का. आप सुन रहे हैं रफ्तार वाइब्स और सिर्फ रेडियो मस्ती पर, जहां हर ट्रैफिक सिग्नल पे मिलेगा एंटरटेनमेंट का ग्रीन सिग्नल ओनली विद सम गुड म्यूजिक. चाहे आप स्टीयरिंग व्हील के पीछे हो, बस में बैठे हो, मेट्रो में हो या राइड शेयर में हो, और वॉल्यूम बस थोड़ा सा बढ़ा लीजिए अपने रेडियो का, क्योंकि गिनिश आ गई है साथ देने के लिए रात के 7 तक. तो चलिए जी, बजाएंगे खेले के आएंगे आप लोगों के लिए सुपर डुपर हिट गाने और आपके डेडिकेशंस भी, मस्त मस्ती और फुल ऑन पॉजिटिव वाइब्स. तो बस यूं ही साथ देते रहना ऑन रेडियो मस्ती. थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर. टू ऑल दोस जो ऑफिस से निकल चुके हैं घर पे जाने के लिए, इफ यू आर ऑलरेडी ड्राइविंग सर बाबा ड्राइव केयरफुली, आराम से गाड़ी चलाना, धीरे धीरे हौले हौले पहुंच जाओगे. वैसे साथ देने के लिए हम है ना RM2 रेडियो मस्ती. तो चलिए जी, लेट्स किक स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल शो. Here we go, this one goes out to you.

शैलजी थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन आवर टू रेडियो मस्ती के निशान द माइक साथ देने के लिए अगर अभी है रात के 7 बजे तक टू दोज जो ऑलरेडी हमारा साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो थैंक यू सो मच एंड टू दोज जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो ऑन किया है वेरी गुड आफ्टरनून टू यू माय डियर सो वेलकम टू रफ्तार वाइब्स ऑन रेडियो मस्ती ट्रैफिक हो या लॉन्ग ड्राइव हम हैं आपके परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर वैसे आप अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा और कर लीजिए और सारे स्ट्रेस को पीछे छोड़ दीजिए क्योंकि अब शुरू हो रहा है नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट स्पेशली फॉर यू आए हैं तो खाली हाथ नहीं आए हैं थोड़ी देर में वी गोना गिव यू अ लवली कैडो यानी आई हैव गॉट अ गिफ्ट फॉर यू जी हाँ वी गोना बिगिन अ गेम आपके और हमारे बीच में सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड ऑन ऑल टू रेडियो मस्ती फॉर सम गुड म्यूजिक

0: अवतार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2 बिल्कुल जी फिल्मी राइट्स तो हम भी करा रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती, जैसे कि आपको बताया वी आर हैविंग अ लवली गेम हैपनिंग राइट नाउ आपके और हमारे बीच में ऑन RM2 रेडियो मस्ती राइट नाउ। पूछा गया है एक बहुत ही आसान सा सवाल और सही जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया है। वी आस्क यू हु इज द मेन लीड एक्टर ऑफ द मूवी कॉकटेल 2 जो 19 जून को रिलीज हुई है इन द सिनेमाज वर्ल्ड वाइड। एक्ट्रेस के तौर पर वी हैव सीन कृति सैनन एंड रश्मिका मंदाना, लेकिन एक्टर कौन है? एंड द राइट आंसर इज शाहिद कपूर। बिल्कुल जी द राइट आंसर इज शाहिद कपूर और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन आज का लकी विनर है भविष्का हमीसा, रहती है अरियता वाकवा में। सो कांग्रेचुलेशंस माय डियर भविष्का, यू आर विनिंग अ वाउचर वर्थ 500 rupees ऑफर्ड टू यू बाय मिस्टिक वर्ल्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर दोस जिन्होंने अपना लक ट्राई किया है आज के दिन। सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, लेकिन आज का लकी विनर इट्स भविष्का हमीसा ऑफ अरियता वाकवा। Somebody is going to call you from the MBC to let you know how you are going to get your gift. So chaliye ji, let's get back to the show. Aur waise, hey, what's up my musty family? What's happening? ऑफिस से निकल चुके हैं ना जो लोग, बाइक से जा रहे हैं आराम से, हेलमेट तो आपने ठीक से पहन लिया होगा ना, सो सीट बेल्ट लगा ली है, बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि अब साउंड ट्रैक हम देंगे ऑन रेडियो मस्ती। सो बकल अप गाइस, ये एक ऐसा गाना है जो आई रियली होप बाई लिसनिंग टू दिस आप सीखेंगे कि खुद से प्यार कैसे करना है, क्योंकि सेल्फ लव इज सेल्फ केयर।

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2
2: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट
1: स्पोर्ट्स न्यूज
3: रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
4: तो चलिए जी, जितने भी स्पोर्ट्स लवर्स हैं उनके दिल को हम जरा राहत देंगे, चैन देंगे, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स गुरु आ गए हैं इन द स्टूडियो. सो अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अरविंद.
5: गुड आफ्टरनून आपको गिनिशा. गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स. सो अब मामला गर्म हो रहा है, होने लगा है. वर्ल्ड कप में जो जीतेगा आगे जाएगा, जो हारेगा वापस घर. जैसे कल साउथ अफ्रीका के साथ हुआ, इट वॉज क्रूअल. लेकिन अंतिम मिनट या यू कहे इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में एक गोल खाकर घर जाना, इट्स रियली पेनफुल. लेकिन कनाडा के लिए पिक्चर अभी आगे हैं. दे आर प्लेइंग, कल तो कनाडा में नहीं खेला इस वर्ल्ड कप में. पहले तीन मैच कनाडा में था, लेकिन कल यूएसए में था. अब देखना है कि आगे चलकर कितना आगे जाएंगे कनाडा वाले, क्योंकि फर्स्ट टाइम दे रीच दैट स्टेज. आज एक बहुत ही गरम मुकाबला होने वाला है. इट्स एलिसन बिक केया, लिवरपूल का गोलकीपर. वो आज जापान के खिलाड़ियों को कितना रोक पाएगा ये देखना है. जापान की टीम अगेंस्ट ब्राजील. जापान की टीम ने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला है अभी तक. आज सुबह चर्चा करते आ रहे हैं कि जापान की टीम ने नेदरलैंड्स को रोका 2-2. दैट वाज द स्कोर, एम आई राइट? हाँ. फिर चुनीजिया को पछाड़ा, ऐसे में और एक मैच ड्रो. सो दे आर डूइंग वेल. जबकि ब्राजील की टीम पहले मैच में मोरक्को के खिलाफ ऐसा लग रहा था कि टीम अभी सेटल नहीं है. मोरक्को कोई मामूली टीम नहीं है. लेकिन दूसरे मैच में, दो दे आर नॉट ए रेफरेंस आईटी और स्कॉटलैंड, ब्राजील में लगा कि दिस इज अ न्यू ब्राजील. एक नए खेलने का अंदाज वैसा नहीं जिसे रोमारियो या फिर रोनाल्डो के समय में होता था, एक लीथल गोल स्ट्राइकर. आजकल रोल नंबर 9 और रोल नंबर 10 माचुस कुन्हा निभा रहा है. इट्स लाइक 9.5. तो ऐसे में कुछ स्पेस मिल जाता है विनीसियस जूनियर को और गायान को भी. गायान को लाया गया है क्योंकि राफीना घायल हुआ, पर रायन इज डूइंग क्वाइट वेल. सो एलिसन बेक है गोलकीपर. डैनिलो मार्किनोस, गैब्रियल डुग्लास सांतोस, ये जो दो सेंट्रल डिफेंडर हैं मार्किनोस और गैब्रियल, क्लब लेवल में प्रूव कर चुके हैं कि दे आर द बेस्ट. और यहाँ पर भी सो सेटल डिफेंस है. बीच मिडफील्ड में ब्रूनो गुमारेस, कासेमिरो, लुकास पाकेटा. कासेमिरो जिसका सीजन एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ सॉलिड रहा, सो एक्सपीरियंस बहुत है इस टीम में. लुकास पाकेटा के साथ भी और फॉरवर्ड रायान, माचुस कुन्हा, विनीसियस जूनियर. जापान में देखा जाए तो दे डोंट हैव एनी रेफरेंस मार्की प्लेयर एज सच, लेकिन जिन खिलाड़ियों को जानते नहीं वही कमाल कर जाते हैं. वर्ल्ड कप की यही खासियत होती है. अनेक खिलाड़ी इस टीम में घायल हैं, पर they are doing quite well. So Brazil, Japan, ये आज it will be at 9 PM, right? So देख सकते हैं ये मैच round of 32. तो जो जीतेगा उसका मुकाबला either Norway या फिर Ivory Coast से होगा last 16 में. और आज के जो अन्य मैच हैं, Germany against Paraguay, that will be late night, मतलब 12:30 बजे. और कल सुबह 5 बजे नेदरलैंड्स मोरक्को, दैट्स अनदर क्रैकर. फिर आइवरी कोस्ट नॉर्वे, ये भी कल रात ये मैच खेला जाएगा 9 बजे. और परसों फ्रांस स्वीडन सुबह 1 बजे. सो आज और कल सुबह के जो दो मैच हैं, नेदरलैंड्स मोरक्को और फिर ब्राजील जापान, इससे जर्मनी पराग्वे वाला मैच थोड़ा फीका पड़ जाता है.

0: लेकिन जर्मनी को बच के रहना होगा. पराग्वे की टीम दे क्वालिफाइड अल्टीमेटली, अब ऐसे में दे कैन डू वेरी वेल आगे चलकर. इतना कुछ फुटबॉल के बारे में. इधर मोरक्को और नेदरलैंड्स वाला मैच, इट्स नॉट जस्ट ए मैच, क्योंकि मोरक्को की 26 खिलाड़ियों के स्क्वाड में लगभग 16-18 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका जन्म मोरक्को में नहीं हुआ है. कुछ इनमें से काफ़ी खिलाड़ी उनका जन्म नेदरलैंड्स में हुआ है. सो दे हैव दैट यू नो दैट यूरोपियन जीन एज फार एज फुटबॉल इज कंसर्न, और मोरक्को की टीम में अब खेलना पसंद करते हैं. इसलिए मोरक्को की टीम इट्स ए रेफरेंस, पिछले वर्ल्ड कप में दे रीच दी सेमीफाइनल, आपको याद होगा. तो देखा जाएगा अभी आज चलकर क्या होगा. इधर लिवरपूल का जो डिफेंडर है उसको बिग ब्रदर बोला जा रहा है, बिग ब्रदर. सो बिग ब्रदर वैन डाइक की फॉर डच वर्ल्ड कप ड्रीम्स, एक सॉलिड डिफेंस है, और इस सॉलिड डिफेंस में क्या होगा, छेद है या नहीं, आने वाले घंटों में पता चल जाएगा. ट्रांसफर न्यूज में आपको बता रहे थे जियो मांडे को पारिस सैन जर्मेन पसंद है, तो लिवरपूल जिसने 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का प्रस्ताव भेजा था सोच रहा था कि दे विल बी सेंडिंग 125, लेकिन जियो मांडे उसका दिल पारिस सैन जर्मेन में है, इसलिए अब लिवरपूल को शायद बाकोला के पीछे जाना होगा. सो बाकोला जो पारिस सैन जर्मेन में है इधर आएगा और जियो मांडे उधर जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आने वाले दिनों में पता चलेगा. पर अभी सावधान हो रहे हैं साइनिंग करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में कुछ खिलाड़ी घायल भी हो रहे हैं. दैट्स व्हाई दे आर क्वाइट कॉशियस एज फॉर साइनिंग प्लेयर्स आर कंसर्न. क्रिकेट की बात कर लें, यस्टरडे वाज अ बैड डे बैड नाइट इंडियन क्रिकेट के लिए. एक तो T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम, भारतीय महिला टीम द डिफेंडिंग चैंपियन हार गए. अब जो वहाँ पर T20 सीरीज था आयरलैंड में, आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की हार हुई. सो अब संभलना होगा आने वाले T20 सीरीज जो इंग्लैंड में लगने वाला है. बट द बिग क्वेश्चन रिमेन्स, वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका दिया जाएगा या नहीं. कल ओपनर्स, दो ओपनर्स 0 रन पर आउट हुए. बंदे को चांस देना जरूरी है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उस पिच में कैसा खेल पाएगा वैभव, इसीलिए शायद फूंक फूंक पर उसे वहां पर भेजना चाहेंगे. टेनिस में भी इट्स हैपनिंग फॉर द विंबलडन ओपन क्वालिफायर्स शुरू हो चुके हैं. विंबलडन सीनर अपना टाइटल डिफेंस शुरू करेगा. कुछ शेड्यूल दे देते हैं, तो सीनर का मुकाबला केचमानोविच से होगा. ये राउंड ऑफ 128 है. सबालेंका विल बी स्टार्टिंग अगेन कोस्तोविच. जोकोविच वू के खिलाफ खेलेगा. ओस्तापेंको, दात, मेदवेदेव, सिलिच, अंद्रीवा लिनेट. आज पेगुला की जीत हुई. पेगुला ने विदमानोवा को हराया. अभी जेंग और नोगी के बीच मैच चल रहा है. फिर उल्हाव उग अलियासी में शिवचेंको. जुडा अपना मैच जीत गया गिल के खिलाफ. रूड और हुरकास के बीच मैच अभी चल रहा है. सो वी आर राउंड ऑफ 128. बहुत दूर जाना है इन सभी के साथ. सो डोंट फॉरगेट, आज 9 बजे इट्स गोइंग टू बी ब्राजील वर्सेस जापान. कैन यू इमेजिन
1: द मैच दैट यू वर वेटिंग फॉर?
0: बिग मैच है, क्योंकि जापान से बच के रहना होगा. बिलीव मी, इट्स हाई स्कोरिंग मैच दोनों टीमें. 2025 नवंबर या दिसंबर में मिले थे, जापान डिफीटेड ब्राजील 3-2. लेकिन उस ब्राजील और इस ब्राजील के बीच
1: बहुत
0: डिफरेंस है, क्योंकि जैसे जैसे वर्ल्ड कप आगे जाता है, इस बार कार्लो आंसेलोटी की टीम मोमेंटम पकड़ता जाता है. सो जापान को कहेंगे बच के रहना. आज ब्राजील वाले थोड़ा मचू होते जा रहे हैं, भले ही उनमें बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं. लेट्स सी क्या होगा, आज रात देखेंगे.
1: थैंक यू सो मच.
0: वेलकम.
2: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
3: Mega promo code Quality Deco. Tiles 30x30. Mega deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite quartz. Prix cassé, low lavoir. La lumière moderne, prix choc. L'ordoise, avant prix qui pouvait ou même gagne pas quoi. Décoration pour la case, en dents, en déo.

0: RM2 रेडियो मस्ती RM2
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: बिल्कुल जी लेकर आए हैं अभी के लिए इट्स टाइम फॉर योर रफ्तार ट्रैफिक अपडेट। ऐसे अगर आप ऑफिस से निकल रहे हैं तो मंडे इवनिंग रश अपने पीक पर पहुंच रहा है दोस्त, जस्ट बी वेरी कॉशियस। पोर्ट्रीज से साउथ की तरफ जाने वाले ड्राइवर्स, ट्रैफिक काफ़ी स्लो होने लगा है और इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा पेशेंस रखें। और अगर आप गिजवी से फिनिक्स और आगे क्यूपिप की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ भी ट्रैफिक हैवी और स्लो मूविंग है और रोजिल और कैट्रोबोन के आसपास सभी व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा हैं और तो डिलेज एक्सपेक्ट कीजिए। और नॉर्थ बाउंड रूट्स पर भी ट्रैफिक वॉल्यूम स्टेडिली बढ़ रहा है एंड इवन जो हमारे वैदा वाली रोड है वहाँ पर भी। गुड न्यूज़ तो बस यही है कि फिलहाल किसी मेजर एक्सीडेंट की रिपोर्ट नहीं आई है, ये सिर्फ मंडे इवनिंग पीक आवर कंजेशन है। सो हमारी तरफ से एक छोटी सी रिमाइंडर, लेन डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, अननेसेसरी ओवरटेकिंग से बचिए और इंडिकेटर्स का यूज़ जो है ज़रूर कीजिए। और अगर ड्राइव कर रहे हैं तो फ़ोन को साइड पर रख दीजिए एंड ड्राइव केयरफुली एंड रिमेंबर घर कुछ मिनट लेट पहुँचना बिल्कुल ठीक है लेकिन सेफ पहुँचना सबसे ज़रूरी है। ये था आपका रफ्तार ट्रैफिक अपडेट। अब ट्रैफिक चाहे स्लो हो लेकिन एंटरटेनमेंट रहेगा फुल ऑन स्पीड सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती पर।
3: वो नहीं आने वाली
0: RM2 रेडियो मस्ती।
3: बेवफा चलावत की आवत।

0: Well, guys, check your time. Studio ki ghari mein 5:10 ho chuki hain. Once again, a very good afternoon to all of you. Namaskar ji. Arganisha ka pranam. Welcome in the second hour of your Raftar Vibes. Aise you're officially checking to Raftar Vibes on Radio Mastiana, from traffic jams to smooth highways, from office stress to evening freshness. Hum lekar aaye hain aap logon ke liye har ek type ke gaane. Ji haan, hit after hit, smile after smile. Only the best music, only the best vibes aap logon ke liye. So fasten up your seatbelts. हम लेकर आए हैं द बेस्ट म्यूजिक बेस्ट वाइब्स स्पेशली फॉर यू ऑन रेडियो मस्ती 5491294 पर सेंड मी योर डेडिकेशन साउंड जी हाँ इफ यू नो समवन सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुडे ऑन 29 ऑफ जून 2026 यू वुड लव टू मेक देम फील अ बिट थोड़ा सा ज्यादा स्पेशल हमारे साथ ऑन रेडियो मस्ती तो जल्दी से आप अपने डेडिकेशन समय भेजिए ऑन 5499 12 94
1: RM2.

अभी घाई गई से ऑल ड्राइवर्स जो साथ दे रहे हैं, टू ऑल कंडक्टर्स एंड इवन ऑल पैसेंजर्स जो बैठे हुए हैं बस में, मेट्रो में, कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो सो मच। ऐसे देखा जाए अभी 5:15 तो बज चुके हैं, धीरे धीरे सनसेट का टाइम भी शुरू हो जाएगा, ऑफिस क्लोज हो चुके हैं, रोज अब धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि

0: अगले एक घंटे के तक आपका साथ रहेगा म्यूजिक का बेस्ट कंबिनेशन रफ्तार वाइब्स ऑन रेडियो मस्ती जहां पे हर एक गाने मेक्स योर ड्राइव लिटिल शॉर्टर एवरी स्माइल गेट्स अ लिटिल बिगर और एवरी इवनिंग फील्स अ लिटिल ब्राइटर हमारे साथ जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि आराम से बैठ जाइए वॉल्यूम अप और चलिए घर की तरफ विद द बेस्ट म्यूजिक इन टाउन ऑन रेडियो मस्ती तो फिलहाल के लिए चलिए देखते हैं किसने किसको याद किया है एंड ये अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे राधा जी के लिए जो कनाडा से साथ दे रही हैं लवली प्लेलिस्ट के लिए ऑसम शो एज यूजुअल ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर योर फैमिली जो कनाडा मॉरिशस में है हमारे लिए और एंटी लिसनर्स के लिए हर हर महादेव टू यू माय डियर एंड ऑल दोस जो साथ दे रहे हैं तो चलिए जी ये खुशियां किसको अच्छी नहीं लगती हैं हम तो लेकर आए हैं ढेर सारा प्यार ढेर सारी खुशियां बांटने के लिए ऑन रेडियो मस्ती आप बटोर लीजिए
1: You're listening to Radio Masti.

0: should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.
1: Well, guys, I really hope that you guys are loving these beautiful and lovely गानों का selections जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. Monday 29 of June 2026 to all those who are celebrating their birthdays. Hello, I just want to wish you a magical birthday. On R2 Radio, I see lots of love and blessings to you. ऐसे ठंडी शाम है, slow traffic और long drive. Wow, what a perfect combination. सिर्फ अच्छी music के साथ ही ये और भी बढ़िया बन सकते हैं. वैसे अगर आप घर की तरफ निकल चुके हैं तो patience रखिए, warm रखिए और unnecessary rushing से बचिए और घर पहुँचते एक गर्मा गर्म चाय या कॉफी जो भी आपको अच्छा लगे हाँ बस जरूर पी लेना. ज़्यादा स्पेशल लगेगी क्योंकि जब इंसान पूरा दिन काम करते हैं थक के घर वापस चलते हैं और यू जस्ट सिट बैक फॉर 15 to 30 minutes. आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, ये ना हो कि घर पहुँचते ही यू जस्ट हैव टू कीप योर बैग एंड स्टार्ट यू नो रशिंग टू द किचन एंड कुकिंग में लग जाएंगे. नहीं, थोड़ा सा बैठ जाइए, आराम से अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए. यू हैव टू ब्रीव एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल. गर्मा गर्म चाय पियोगे तो मे बी यू गोना फील मच बेटर. तभी तो हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे खूबसूरत लवली गाने. तो चलिए जी, आज की विंटर इवनिंग काफ़ी चिली है एंड अगला गाना आई जस्ट वांट यू टू एंजॉय इट एंड देखते हैं हो सकता है आई कैन ब्रिंग सम वार्म फॉर यू.
2: RM2 रेडियो मस्ती.

टाइम भी टच चला जा रहा है, 5:37 हो चुके हैं। कहाँ तक पहुँचे मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स? यस, सब कुछ सही चल रहा है ना? चलना भी चाहिए, क्योंकि जब म्यूजिक में है लाइफ में है, म्यूजिक संगीत होता है आपके ज़िंदगी में, तो एवरीथिंग फील्स कूल। चाहे कितना भी क्यों हम थके हुए हो, टेंशन है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ अच्छा भी कुछ बुरा भी, और कुछ जैसे क्यों में है कि पता नहीं क्या होने वाला है ज़िंदगी में, जो आपने कुछ डिसीजंस लिए हैं, इन सब चीज़ों को आप साइड में रखिए। बस फिलहाल के लिए अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए एंड जस्ट एंजॉय दिस ब्यूटीफुल एंड लवली गाने जो स्पेशली आप लोगों के लिए हमने कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के लिए चलिए देखते हैं किसने किसको याद किया है। एंड किसी ने लिखा है कि वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हमारे गानों के सिलेक्शन को, शी इज़ कुकिंग इन द किचन, मेन्यू में आज लौंची हैं, टूफे हरिको हैं, रुगाई या कौन मुटों, दैट्स गुड, बोन कोराज टू यू एंड कोराज टू आवर टीम एज वेल, आपकी तरफ से थैंक यू सो मच। अगला गाना आपके आज जय के लिए, एंड माम जो हैं फोंजुसाक के रहने वाले हैं, दैट्स कमिंग फ्रॉम काजल जी, टेनर ऑफ लवेंचुआ, कुमार देवी चुन जी, आपका प्रोग्राम सुनते सुनते हम जॉगिंग कर रहे हैं, फुल ऑन वॉल्यूम लगा के रेडियो मस्ती को सुन रहे हैं। नेक्स्ट वन आपके पापा श्याम देवी चुन के लिए, जो पेहबिया के रहने वाले हैं, सो गॉड ब्लेस योर पापा एवरी डे, और सारे पापाज को भी, सिर्फ आपके पापा नहीं, सभी दुनिया के पापाज को ब्लेस कर रहे हैं, थैंक यू सो मच ब्रो। और बाकी जो हमारे लिसनर्स अगर किचन में घुस चुके हैं, सो लेडीज एंड इवन जेंट्स जो भी ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि खाने में क्या बनाना है, डू लेट मी नो व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट आर यू कुकिंग इन योर किचन एज मेन्यू फॉर टुनाइट।

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2 फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
2: Well guys, check your time. अभी तो 5:45 होने को है एंड यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन. ऑफ कोर्स यू आर लिसनिंग टू गणेश राइट नाउ. और फैशन टिप्स में आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आज का स्टाइल मंत्रा. एक्चुअली यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ कलर्स. जब विंटर्स आ जाते हैं तो वार्डरोब में बर्गंडी, एमराल्ड ग्रीन, नेवी ब्लू या मस्टर्ड येलो या ऐसे कलर आप यूज़ कर सकते हैं. ये शेड्स जो है ना सिर्फ क्लासी लगते हैं बल्कि ग्लूमी वेदर में भी आपको स्टैंड आउट करते हैं. स्टाइल सिंपल रखे और कॉन्फिडेंस जो है मैक्सिमम रखे. वैसे लेडीज, विंटर फैशन का मतलब है सिर्फ वार्म रहना नहीं लेकिन स्टाइल भी रहना है. एंड आज ट्राई कीजिए अकोजी टर्टल नेक स्वेटर विद हाई वेस्ट जीन एंड जो है एंकल बूट्स भी चलेगा. एक मैचिंग हैंडबैग और लाइट मेकअप के साथ यू विल बी रेडी फॉर वर्क, शॉपिंग या कॉफी डेट. कहीं पर भी जाना है ये विंटर में लेस इज मोर always on this lovely weather. Actually dekha jaye to humne aapko de diya hai kal aise waqt agar aap sunenge to we'll be having something new for you and we can make you look better day by day.
1: Fashion tips was powered by Halkori Fashion, house of ready made garments.

Well guys, ये रहा आप लोगों के लिए कुछ ऐसे गिने चुने नगमे that I really feel that you are really loving it, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं और ऑफ एवरी कोर ऑफ एयर भी इतने प्यारे प्यारे फ़ोन कॉल्स आप लोग करते हैं that you enjoying, अच्छा लगता है जानने के लिए. तो ऑल दोज़ जो अभी ड्राइव कर रहे हैं, हम हमेशा आपको याद दिलाते रहते हैं कि ड्राइव केयरफुली, मेंटेन डिस्टेंस वाइल ड्राइविंग. आई डोंट नो अपने कब लास्ट टाइम चेक किया था पानी गाड़ी में, ज़रूर चेक करना. एंड इवन डो नॉट फॉरगेट टू चेक इंश्योरेंस कब खत्म हो रही है. एंड इवन आपकी जो डिक्लेरेशन है, कभी कभी क्या होता है लाइफ इतने हेक्टिक चल रहे, इतने टेंशन होती है काम काज ये सारी चीज़ें कि ये मौका नहीं मिलता चेक करने का. एंड आई डोंट वांट यू टू गेट अ फाइन, इसलिए हम हमेशा आपको याद दिलाते हैं टेंशन वेंशन को मार दो गोली, ना हम है ना याद दिलाने के लिए एवरीथिंग. सो फिलहाल के लिए आई हैव गॉट योर डेडिकेशन.

Just on 549912945 पर हे गिनी प्रोग्राम इज वेरी नाइस आई एम लिसनिंग और वेज बिरयानी हम बना रहे हैं ये है रागिनी जी थैंक यू सो मच एंड आई लव योर डीपी ऑन व्हाट्सएप इट्स अ वेरी beautiful picture. Hey Lalita Jitin, happy birthday here to Miss Rima. Unki taraf se best wishes to from all colleague teachers, Mimi, Rumi, Ravi, Rushi, Poonam, Sarika, Yupi, and we have Yushna, and we have Dina, Ashley, Sila, Lalita Jitin of jo Port Louis mein kaam karte hain school mein, wahin pe unki colleague unka janamdin hai. So I just want to dedicate the next one for Pushkar. Bon courage to him and all his colleagues at Oops Room, Piton Police Station. Ye kya hai Oops Room? And to all my lovely ladies, good gentlemen still exist. Choose wisely, love is beautiful, and when you find the right one, dhak dhak karne lagta hai aapka dil. From Desha to the Ki, Roda, and the Gaudia family, and they're from Cottage, Riviera du Rempart. Thank you so much, my beautiful lady. And the next one goes out, Hamari taraf se aapke naam. To chale ji, ye agla gana Hamari taraf se un tamam sunne walon ke naam, jo हमारा साथ दे रहे हैं और जस्ट रोमान यू अभी थोड़ी देर बाद आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार 6 बजे एंड देन उसके बाद द गुड म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन रेडियो

0: स्टार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: Thank you so much saath dene ke liye on RNT Radio Masti. Check your time, it's 6 p.m.
1: RNT Radio Masti.
2: The time is brought to you by McDonald's.
3: McDonald's? Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste, share happiness.
1: Radio Masti.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music.
6: 29 जून 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. सबसे पहले आज की सुर्खियां. माही के स्टेट हाउस में सीशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने साझा हितों और इलाकाई सहयोग पर चर्चा की तथा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई. इस बीच सीशेल्स ने स्टार्लिनिटी में भव्य समारोह के साथ अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाई. आजसू अधिकारियों ने पहली बार प्रेस को संबोधित करते हुए 2026-2028 के रणनीतिक योजना के तहत 2026 के पहले 6 महीनों के जब्ती आंकड़े, तस्करी के नए रुझान और सार्वजनिक धारणा से जुड़े परिणाम प्रस्तुत किए. बजट के तहत स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन स्कीम का उद्देश्य नागरिकों को ऊर्जा संक्रमण में शामिल करना है, जिसके अंतर्गत पात्र परिवारों को स्थापना लागत का 25% सब्सिडी मिलेगी. इस योजना से लगभग 3,600 परिवार लाभान्वित होंगे और पात्रता मानदंड जल्द तय किए जाएंगे. इस गुरुवार संसद के बाहर श्रमिक संघों के एक मंच ने तख्तियां और नारेबाजी के साथ पेंशन सुधार के खिलाफ प्रदर्शन किया. उनका कहना है कि नई प्रणाली श्रमिकों पर अतिरिक्त बोझ डालती है और एक मौलिक सामाजिक अधिकार को खतरे में डालती है. पश्चिम अफ्रीका में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए मॉरिशस के बैंकिंग ग्रुप MCB ने आइवरी कोस्ट के अबिजान में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ये कदम तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था वाले इस देश में मॉरिशस की कंपनियों की बढ़ती रुचि को दर्शाता है. और विदेश में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख के अनुसार यूरोप में आई अभूतपूर्व शुरुआती ग्रीष्मकालीन हीट वेव के कारण 21 जून से अब तक 1300 से अधिक असामयिक मौतें दर्ज की गई हैं. जर्मनी, पोलैंड और चेक गणराज्य समेत कई देशों में तापमान के पुराने रिकॉर्ड भी टूट गए हैं. पेश अब समाचार विस्तार से. माई स्थित स्टेट हाउस में आज सुबह सीशेल्स और मॉरिशस के साझा हितों पर चर्चा हुई. पैट्रिक एमिनी ने डॉक्टर नवीन रामगुलाम का स्वागत किया. दोनों नेताओं ने विशेष रूप से अनिश्चित वैश्विक संदर्भ में अपने सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की. मॉरिशस सीशेल्स संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक इस वर्ष पोर्टलुई में आयोजित की जाएगी. मॉरिशस सीशेल्स में एक उच्चायोग खोलेगा. वाली काली अदिति अवतार.

विक्टोरिया स्थित स्टेट हाउस में आज सुबह प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को सैन्य सलामी दी गई। ये सम्मान सेशल्स के इतिहास के इस महत्वपूर्ण घड़ी में मॉरिशस की भागीदारी के लिए सेशल्स की तरफ से सराहना और कृतज्ञता दर्शाता है।

0: हित के मुद्दों पर चर्चा की। हम दोनों छोटे टापू देश सिज़ के सदस्य हैं और हम दोनों ही जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। इसके अलावा सेशल्स भी हमारी तरह ईंधन सप्लाई की समस्या झेल रहा है। बढ़ते दामों के साथ हम देख रहे हैं कि एक दूसरे की मदद कैसे की जा सके। इसके बाद दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की, जैसे जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे छोटे विकासशील टापू देशों की स्थिति तथा मौजूदा कठिन और अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों के बीच सहयोग की संभावनाएं आदि। मॉरिशस जल्द ही जॉइंट कमीशन की 14वीं बैठक की मेजबानी करेगा। जल्द ही जॉइंट कमीशन की 14वीं बैठक मॉरिशस में लगेगी। इसके लिए हम एक तारीख तय करेंगे। साथ ही मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ने मॉरिशस में सेशल्स के दूतावास की स्थापना करने का फैसला लिया है और यहाँ भी हमारा दूतावास खुलेगा। इस बैठक के अंतर्गत पिछले मार्च महीने में मॉरिशस और सेशल्स के बीच तय हुए 7 प्रोटोकॉल समझौतों पर और बातचीत के स्तर की संधियों पर भी गौर किया गया। ऐसा सहयोग जो दोनों देशों के लिए लाभप्रद हो।
1: और कल रात सेशल्स के लोगों ने अपनी आज़ादी के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए स्टार्लिनी टे में शिरकत की और उन्होंने 3 घंटे से अधिक समय तक चले कार्यक्रम को देखने के लिए भारी संख्या में उपस्थित थे, जिसमें उनके राष्ट्र के लचीलेपन, एकजुटता और एकता को उजागर किया गया। मंच पर पैट्रिक एमिनी के साथ उनके मेहमान श्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर नवीन रामगुलाम सहित अन्य लोग मौजूद थे। सेशल्स के राष्ट्रपति ने उस इलाकाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सराहना की जिसने 29 जून 1976 को स्वतंत्रता मिलने के बाद से उनके देश को प्रगति करने में सक्षम बनाया है। और इस बीच प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कुछ शब्द बयां किए। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
0: जब मैं भारत की औपचारिक यात्रा पर गया था तब हम कुछ सहायता योजनाओं पर सहमत हुए थे। अब भारत ने इस लाइन ऑफ क्रेडिट को रेटिफाई किया है। इससे हमें विकास कार्यों के लिए करीब 20.5 बिलियन रुपए की रकम प्राप्त होगी। ये एक लाइन ऑफ क्रेडिट है, इसके लिए इस पर हमें एक हल्का इंटरेस्ट चुकाना होगा, लेकिन इससे हमें मूल ढांचा कार्यों में सुविधा मिलेगी। इसके लिए मैंने मोदी जी का आभार प्रकट किया और साथ ही हमने खासकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की। ईंधन सप्लाई को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर होगा। हम सेशल्स के काफी करीब हैं। हमारी संस्कृतियाँ, क्रियोल भाषा आदि समान हैं तथा सर शिव सागर रामगुलाम और सर जेम्स मानचाम के जमाने से दोनों देशों के बीच अच्छे और घनिष्ठ संबंध हैं। जब मुझे आमंत्रण मिला तो मैंने यह आश्वस्त किया कि मैं यहाँ जरूर आऊँ, जिससे सेशल्स और मॉरिशस के संबंध और मजबूत हो।
1: अन्य खबरों में जब्ती का लेखा जोखा, तस्करी के नए रुझान और सार्वजनिक धारणा। ये पहली बार है जब आजसू के अधिकारियों ने प्रेस को संबोधित किया है और अपने रणनीतिक योजना 2026-2028 के संदर्भ में 2026 के पहले 6 महीनों के अपने परिणाम प्रस्तुत किए हैं। ओलों देवी सिंह को सुनते हैं।
2: Une saisie presque 6 milliards roupies de cocaïne.
1: पिछले सालों की तुलना में गत साल को छोड़कर, क्योंकि पिछले साल ये 9 बिलियन रुपए था, अल्फा ब्रेवरी ने 6 बिलियन रुपए की लागत वाली कोकीन जब्त की थी। अतः पिछले साल के लिए 3 बिलियन रुपए का अनुमान लगा सकते हैं। आजसू ने 1,232 मामले की रिपोर्ट दर्ज की है और उसने 1,156 लोगों को गिरफ्तार किया है। 1,156 लोगों में उपभोक्ता, डीलर्स और तस्कर शामिल है। पुलिस के स्तर पर अगर ये शब्द सुर्खियाँ बटोर रहा है तो ये बुरी भावना से ही किया गया है। बॉ काउंसिल के स्तर पर ये प्रतिबद्धता ली जा रही है कि हम ये शब्द हटाएंगे। फिर आजसू के स्तर पर एक समिति गठित की जाएगी। ये किसी पेशे पर वार करना नहीं था, क्योंकि पुलिस फोर्स विशेषकर आजसू के सदस्यों को भली भांति मालूम है कि संविधान में धारा 10(2) के तहत ये प्रावधान है कि आपको अपने पसंद का एक वकील चुनने की अनुमति है।
2: Au courant des dispositions de la Constitution sous la section 10(2) qui dit où on a le droit constitutionnel retenu.

0: Venez service un avocat de votre choix.
1: ये बजट के प्रमुख उपायों में से एक है जिसका उद्देश्य मॉरिशस के नागरिकों को ऊर्जा संक्रमण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन स्कीम के तहत पात्र परिवार अधिग्रहण लागत का 25% सब्सिडी के रूप में प्राप्त करेंगे, जो प्रति इंस्टॉलेशन ₹75,000 तक सीमित होगा। पात्रता मानदंड इस सप्ताह के अंत तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। लगभग 3,600 परिवार इस सहायता योजना से लाभान्वित होंगे। एमसीबी पश्चिम अफ्रीका में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहता है। मॉरिशस के इस बैंकिंग ग्रुप ने अबिजान आइवरी कोस्ट में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये पहल इस तेजी से बढ़ते देश के प्रति मॉरिशस की कंपनियों की बढ़ती रुचि को दर्शाती है, जिसे आज अफ्रीकी महाद्वीप के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक माना जाता है। अब्दुल बुला की अदिति अवतार।
2: मॉरिशस कमर्शियल बैंक ने आधिकारिक तौर पर कोजीवो में एक कार्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये देश सब सहारन अफ्रीका के सबसे तेजी से बढ़ते आर्थिक केंद्रों में से एक के रूप में उभर रहा है। ये घोषणा मॉरिशस के सबसे बड़े बैंकिंग ग्रुप ने 18 जून को अबिजान में वहां के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विदेश मामलों की मंत्री नियाले काबा के साथ एक मुलाकात के बाद की। एमसीबी के लीगल हेड रोयल लॉम्बे कहते हैं, हमारा यहाँ भव्य स्वागत हुआ। हमने बहुत खुशी के साथ मंत्री को सूचना दी कि हम यहाँ बसने का आवेदन दे रहे हैं। अबिजान में मॉरिशस के ऑनरेरी कंसुल फ्रेडरिक लाम कहते हैं, ये कोजीवो की आर्थिक कारगरता विकसित करने के लिए मॉरिशन संस्थाओं पर गहरा विश्वास दर्शाता है। करीब 7% की आर्थिक वृद्धि दर के साथ कोजीवो तेजी से विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। इसके अलावा 30 मिलियन से ज्यादा की आबादी वाले इस देश में मॉरिशस की दिलचस्पी सिर्फ वित्तीय सेवाओं तक सीमित नहीं, बल्कि मॉरिशस की कई कंपनियां पहले से ही वहां अलग अलग क्षेत्रों में मौकों की तलाश कर रही हैं। मॉरिशस के लिए कोजीवो के ऑनरेरी कंसुल उदोराव अपाजी कहते हैं, टेरा ग्रुप ने कोजीवो में गन्ना पैदावार में बड़ा निवेश किया है। साथ ही आईबीएल ग्रुप मछली पैदावार और मवेशी पालन के साथ जुड़ा हुआ है। कोजीवो में बड़े पैमाने पर संसाधन मौजूद हैं, जिससे मॉरिशस को लाभ उठाना चाहिए। इस देश के पास पेट्रोल, गैस, कृषि सब हैं तथा ये देश दुनिया का सबसे बड़ा कोकोआ उत्पादक है। दूसरी तरफ कोजीवो भी मॉरिशन विशेषज्ञता से फायदा उठा सकता है, क्योंकि मॉरिशस का भारत और चीन के साथ निर्यात की संधियां कायम हैं। इस तरह मॉरिशस कोजीवो से कोकोआ आयात करके चॉकलेट पैदावार कर सकता है। इसके अलावा कोजीवो एक बड़ा कॉटन उत्पादक भी है। पिछले मई महीने में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने सहयोग और निवेश के नए मौकों की पहचान करने के लिए कोजीवो में एक बिजनेस मिशन का नेतृत्व किया था। इस यात्रा के दौरान शुरू हुई बातचीत अब दोनों देशों के बिजनेस ऑपरेटरों के बीच जारी है, जिसे मॉरिशस और अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक के बीच नई रणनीतिक साझेदारियों के नए आयाम खुल रहे हैं।
1: संसद के सामने हाथों में तख्तियां, नारे लगाते हुए और एक साथ उठती आवाजें इस गुरुवार श्रमिक संघों के प्लेटफॉर्म सड़कों पर उतरा, यानी आज, जिसका मुख्य उद्देश्य पेंशन सुधार का विरोध करना था। विरोध का मुख्य कारण ये था कि इस प्रणाली को श्रमिकों के लिए बहुत बोझिल माना जा रहा है और इसमें किए गए बदलाव उनके अनुसार एक मौलिक सामाजिक अधिकार को खतरे में डालते हैं। और अब फुटबॉल की बात करें तो इस विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा को एक साहसी दक्षिण अफ्रीकी टीम को हराने के लिए आखिरी पलों तक इंतजार करना पड़ा। एक गोल बस एक ही, लेकिन ऐतिहासिक, जिसने कनाडा को अंतिम 16 में पहुंचा दिया। अजमल मोइटब, अरविंद बिसेसर।
3: ग्रुप स्टेज का राउंड लगभग 2 हफ्ते 3 दिन और साथ में लगभग 72 मैच खेले गए। अब से नॉकआउट राउंड शुरू हो गया है। सभी 32 टीमें क्वालिफाई हो गई हैं और राउंड ऑफ 32 का मुकाबला तय हो गया है। इस वर्ल्ड कप का पहला नॉकआउट मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच हुआ। मैच शुरू में सुस्त चाल से चल रहा था। दोनों टीमों को अच्छे मौके मिले पर गोल नहीं बन पाया। बढ़िया रक्षात्मक खेल को लेकर दक्षिण अफ्रीका टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि कनाडा गेंद पर

0: अपना कब्जा बनाए रख पाया, लेकिन आखिरी समय में जाके दक्षिण अफ्रीका टूट गया। इंजरी टाइम का दूसरा मिनट चल रहा था और कनाडा का खिलाड़ी स्टीफन उस्ताकुयो के शॉट पर ये गोल बनता है। कनाडा 1-0 से मैच जीत लेता है और राउंड ऑफ 16 विच एम द फिनाल में पहुंच गई ये टीम। ये एक ऐतिहासिक क्वालिफिकेशन है। दक्षिण अफ्रीका ने अच्छा खेला लेकिन आक्रामक खेल की कमी थी, इस वजह से बाहर हो गई।
1: और राउंड ऑफ 32 के मुकाबले लगातार जारी हैं, जिसमें आज रात और कल सुबह के लिए तीन बड़े मैच निर्धारित हैं। ब्राजील का मुकाबला जापान से, जर्मनी का सामना पराग्वे से और अंत में नेदरलैंड्स की भिड़ंत मोरक्को से होगी।
0: राउंड ऑफ 32 का दूसरा मैच आज रात 9 बजे ब्राजील और जापान के बीच खेला जाएगा। ब्राजील की टीम हमेशा अपने आक्रामक शैली, खेल में रचनात्मकता और किसी भी समय गति बढ़ाने की क्षमता से बहुत प्रसिद्ध है और उसका सामना है जापान से, जो मजबूत सामूहिक संगठन एवं अनुशासन और तेजी से ऊंचा दबाव बनाने की क्षमता रखने वाली टीम है। जर्मनी का मुकाबला रात के 12:30 बजे पराग्वे से होगा। द नेशनल मानचाफ्ट कब्जा और तीव्रता पर आधारित खेल के साथ विश्व पटल पर अपना ऐतिहासिक दबदबा वापस पाने की कोशिश करेगी। उसके सामने है पराग्वे की टीम, एक प्रबल प्रतिद्वंद्वी जो दक्षिण अमरीकी जोन से आई हुई है और इस टीम को हराना आसान नहीं होगा क्योंकि ये टीम खाली जगह के बंद और सेट पीस पर पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। अंत में सुबह 5 बजे एक बहुत ही तगड़ा मुकाबला है नेदरलैंड्स और मोरक्को के बीच। डच टीम में प्रतिभाशाली पीर ही है और संरचित खेल होता है। उस तरफ मोरक्को की टीम जो पिछले वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंची थी, ब्राजील को रोका पहले मैच में, उसके लिए इस टीम से बच के रहना होगा।
1: और शुरुआत में हम आपको बता रहे थे कि कल रात सीशेल्स के लोगों ने अपनी आज़ादी के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए स्टार्लिनिटी में शिरकत की और उन्होंने 3 घंटे से अधिक समय तक चले कार्यक्रम को देखने के लिए भारी संख्या में उपस्थित थे, जिसमें उनके राष्ट्र के लचीलेपन, एकजुटता और एकता को उजागर किया गया। रजनी बिकर।
2: 29 जून 1974 स्टार्लिनिटी में भारी भीड़, माही के रहने वाले सीशेल्स वासी और साथ में टापुओं के भी निवासी मौजूद। गणराज्य के राष्ट्रपति और उनके मेहमानों के सामने एकत्र हुए झंडे को फहराते हुए देखने के लिए। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के लिए राष्ट्रीय परेड की शुरुआत सीशेल्स और विदेश से आए कुछ लोगों के पैराशूट से उतरने के साथ हुई। स्थल पर परेड की झलक, द्वीप समूह की ताकत और साथ में मित्र देशों की इकाइयां भी, जैसे चीन, भारत, मॉरिशस और रूस। एक भव्य परेड का आयोजन, भीड़ और यहां तक कि महानुभावों ने भी अभिवादन किया। राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी ने मजबूती, एकता, भाईचारे और सहयोग की सराहना की, जिनकी बदौलत उसकी जनता एक अलग पहचान बना पाई। एक ऐसा देश बना सेशेल्स जो एक बेहतर भविष्य के लिए अभी भी कार्यरत है।
3: 50 years ago, Seychelles took its rightful place among the community of nations as a sovereign and independent republic. Since then, we have remained steadfast in our commitment to friendship, mutual respect, peaceful coexistence, and constructive international cooperation. The progress we celebrate today has been made possible through the resilience and determination of the Seychelles people, strengthened by the friendship, solidarity, and cooperation of our international partners. For this, we express our sincere gratitude.
2: देश के नौजवानों की ओर से एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत, जिसमें सेशेल्स राष्ट्र के निर्माण की झलक मिली।
1: और ये बजट के प्रमुख कदमों में से एक है जिसका उद्देश्य मॉरिशस के नागरिकों को ऊर्जा संक्रमण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस मॉरिशस के डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन स्कीम के तहत पात्र

0: परिवार अधिग्रहण लागत का 25% सब्सिडी के रूप में प्राप्त करेंगे, जो प्रति इंस्टॉलेशन 75,000 रुपये तक सीमित होगा। माधवी जगन्नाथ, अदिति अवतार।
1: घरों की छतों पर सोलर पैनल बिठाने का प्रोग्राम इस साल एक नया आयाम ले रहा है। स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड जेनरेशन स्कीम के तहत योग्य परिवारों को पैनल खरीदने की लागत का 25% भाग सब्सिडी के तौर पर मिलेगा। ये रकम हर इंस्टॉलेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा 75,000 रुपये तक हो सकती है।
2: Le gouvernement envisage avec comme si vous donnez un boost à ce projet là pour donner 75,000 rupees. Right. À chaque famille qui est intéressée, mettre un système solaire, les autres la maison. Nous, au niveau du CEB, nous prenons le nécessaire pour l'installation de le système, techniquement, l'application jusqu'à le commissioning. Mais pour le grant, c'est la DBM qui occupe la partie grant. Alors, il y a une roadmap qui nous met en place, qui nous peut finaliser, qui nous pourvient avec une étape à suivre, qui nous permet le nouveau website. Et nous pouvons expliquer le client quand il vient d'un customer service à la qu'il y a une étape qui besoin faire pour être capable de bénéficier de sa grande.
1: प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए सीबी रिन्यूएबल ऊर्जा के लिए एक समर्पित विभाग कायम करेगा।
2: Ici dans nous à peu près un à deux semaines maximum nous besoin de finaliser tout inclus et dans ce qu'on appelle le eligible customer. Alors le eligible customer, vous pensez qu'il peut être une grille de revenus qui peut être déterminée, que le ministère des Finances et le ministère de l'Énergie peut travailler.
1: इस सहायता योजना के लिए बजट में लगभग 270 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे इस साल करीब 3,600 परिवारों को फायदा होगा।
0: विदेश की खबरों में, वेनेजुएला में पिछले सप्ताह आए विनाशकारी भूकंप के बाद से अब तक कम से कम 1,450 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि विदेशी सहायता और राहत कर्मियों की बढ़ती संख्या आपातकालीन कार्यबल को मजबूत करेगी और मानवीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने के अनुसार यूरोप में अभूतपूर्व शुरुआती ग्रीष्मकालीन हीट वेव सैकड़ों लोगों की असामयिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार हो सकती है। सुमेरा अकबर अली।
3: चेक रिपब्लिक ने इतवार को जून का सबसे गर्म दिन दर्ज किया। राष्ट्रीय मौसम सेवा विभाग ने कहा कि 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पोलैंड में भी तापमान सबसे उच्च रहा। रोम में सड़कों पर स्मॉग टैक्स समाधान ढूंढे गए ताकि लोगों को धूप और इस तेज गर्मी से राहत मिले। वहां लगातार दूसरे दिन के लिए 41.1 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। यूरोप भर में एक ऐसा भी देश नहीं है जो मौसम गर्मा के असरात से दरकिनार है। बुजुर्गों को जितना तक हो सके घर पर ही रहने को कहा जा रहा है। यूके में 2 दिनों के लिए मजबूरन स्कूली छुट्टियां भी दी गई। कुछ मुल्कों में खास स्मार्ट घड़ियों से अधिकारी निगरानी रख रहे हैं।
0: और अंत में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल रजनी बीकर के साथ।
4: दक्षिण पूर्व की ओर से जो बादल बढ़ रहे हैं वे हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे और वर्षा होती रहेगी। मुख्य रूप से देश के पूर्वी इलाके, दक्षिणी इलाके और सेंट्रल प्लाटू पर कभी कभी सामान्य से तेज बारिश होगी। कुछ इलाकों में कोहरे छाए रहेंगे और विजिबिलिटी भी काफी कम हो जाएगी। दिन के दौरान बाद में मौसम में सुधार आने लगेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा दक्षिणी एवं पश्चिमी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 20-23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19-22 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 25 एवं 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 5:41 पर सूर्यास्त, जबकि सुबह 6:46 पर सूर्योदय।

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम लुडोविक को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय शाम के 6:23 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: विजय शोक समाचार सुनिए। रायरोड सुयाक में 69 साल के 69 years old के जनाब मोहम्मद हुसैनी, जो उस्ताद गोरा नाम से भी, गोरा भाई नाम से भी जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज रात 8 बजे उनके घर रायरोड सुयाक से उठाकर सुयाक का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 8 PM। ब्रांच रोड लालमाटी में 69 साल की 69 years old की कुमारी पद्मावती बसावा, जो लीला नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर ब्रांच रोड लालमाटी से उठाकर लालमाटी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। रायरोड आलबियों में 92 साल की 92 years old की श्रीमती अहिल्या काली, जो शादो नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह 10:30 उनके बेटे सुचित दुखिया के घर रायरोड आलबियों से उठाकर मेजिन बॉम्बू की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30। रायरोड पुजदुफलाक में 71 साल के 71 years old के श्री धनराज बोयरो, जो कुमार नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुखमीन भोईरो के घर रायरोड पुजदुफलाक से उठाकर वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। डिस्पेंसरी रोड थ्रियोली में 88 साल के 88 years old के श्री राणा प्रताप ठाकुरी, जो राणा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो पहले बैंक ऑफ मॉरिशस के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2:45 उनके घर डिस्पेंसरी रोड थ्रियोले से उठाकर त्यामिनिस थ्रियोले की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:45 PM। ट्रेबों नंबर 2 वाकवा में 100 साल की 100 years old की श्रीमती शांति सवाराम, जो दादी लोंगान नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे प्रेमपथ चमन के घर थ्रेबो नंबर 2 वाकवा से उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। स्कूल लेन लागोजा में 91 साल के 91 years old के श्री सेलिया सनासी जग्या, जो रामू नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह 8:30 उनके घर स्कूल लेन लागोजा से उठाकर माहिजानी रोजबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 8:30। सिबरत लेन फ्लोरियाल में 73 साल की 73 years old की श्रीमती मारी देजरे द्वारिका, जो पुम नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके पति श्री ईश्वरलाल द्वारिका के घर सिबरत लेन फ्लोरियाल से उठाकर अलीब्रियों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। प्रीमियर शुमें मारीजानी रोजबेल में 90 साल की 90 years old की श्रीमती धर्मावती रामदीन, पैदाइशी नाम राऊ और जो मामा अनिल नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 12:30 उनके बेटे सुनील रामदीन के घर प्रीमियर शुमें मारीजानी रोजबेल से उठाकर मारीजानी रोजबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 नून। रायरोड मोन्सिडा में 80 साल की 80 years old की श्रीमती शांति बायलक्सिमो, पैदाइशी नाम तानू और जो शांति नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह 9:30 उनके बेटे आत्माराम लक्सिमो के घर रायरोड मोन्सिडा से उठाकर मेजिन कॉन्डोमास की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: RM2 Radio Musti.

शकी टाइम स्टूडियो के घर में 6:32 हो चुके हैं. वेलकम ऑन बोर्ड इन द थर्ड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो यानी कि योर आफ्टर वाइब्स विद मी निशान ऑन टू रेडियो मस्ती. गुड इवनिंग माय डियर लवली लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं इन दिस ब्यूटीफुल शो.

तो चलिए जी दोस्तों, फिलहाल के लिए 6:55 हो चुके हैं। इट्स टाइम फॉर गणेशा तो से गुड बाय टू यू। अपना ख्याल रखना, और थोड़ी देर में आने वाली है हमारी प्यारी से दिव्या आपका साथ देने के लिए इन योर इवनिंग लाउंज। हम कल फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे 4 बजे से लेकर 7 बजे तक इन योर रफ्तार वाइब्स। टेक केयर एंड हैव अ लवली टाइम।

0: प्यार में मुझे लगता है कि हर शख्स को यही पसंद होता है, प्यार में थोड़ा बहुत तारीफ तो चलता ही चलता है। और अगर आपको लगता है कि इट्स बिन अ वाइल्ड जब से आपने अपने पसंदीदा पर्सन की तारीफ नहीं की है, तो बिल्कुल हम हैं ना आपको थोड़ा बहुत इंस्पायर करने के लिए, एंड हमारे गीत आपको मजबूर कर देंगे टू सेंड अ मैसेज टू द वन यू लव, और बस आप मजबूर हो जाएंगे हमें भी याद करने के लिए ऑन 5499 1294। प्यार की ताकत बस अजीब होती है साहब, क्योंकि जब प्यार आपको खींच लेकर आता है ना, तो बस जो प्यार की ताकत है वो हमेशा हमेशा से आपको यही एहसास दिलाता है कि प्यार इतनी ताकतवर है कि बस आप जितना इससे दूर भागने की कोशिश करो, बार बार प्यार आपको बस मिल ही जाता है और प्यार आप तक पहुंच ही जाता है। वेल 7:07 हो चुके हैं, इट्स अ वंडरफुल मंडे इवनिंग जहां पर दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक। थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए, एंड एज यूजुअल आपके मैसेजेस का इंतजार करेंगे ऑन द मैजिकल नंबर 5499 1294, एंड साथ में आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, लाइन खुली हुई है और आप हमें ज़रूर याद कर सकते हैं, आपसे कुछ बातें भी हो जाएंगी ऑन एयर और आपका मनपसंद गाना भी हम चला लेंगे। एंड वेटिंग फॉर योर फोन कॉल्स ऑन 4028235 402 80 35।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: क्या बात है, किसका चांद किसको नजर आया है, ये तो बस प्यार करने वाले ही इससे रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप वादे करने में लग जाते हैं, चांद तारे दिलाने में वादे बस करते रहते हैं। और साथ में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हाय, जिससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ वो तो किसी चांद से कम नहीं है। चलिए, ये कंपैरिजन सब लोगों को अच्छा लगता है अंटिल यू रियली मीन इट। एंड चलिए, कुछ लोग कहते हैं कि अ प्रॉमिस इज मेंट टू बी केप्ट, कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉमिस इज मेंट टू बी ब्रोकन, लेकिन हम तो कहते हैं कि जब आप वादा करते हैं तो इसको आपको निभाना भी आना चाहिए, टू रेस्ट ऑफ फेथ इन लव। चलिए, यहाँ पर प्यार पर भरोसा बिल्कुल बिल्कुल कायम होना चाहिए। And the keywords to a successful love is always love, trust, mutual understanding and respect. 7:20 ho chuke hain Divya ka saath abhi se lekar till 9 PM in your evening lounge. Chaliye kuch aapke messages ki aur hum badhenge. Hi, nice selection, thank you so much. Any song for my love, Sahil from Janvi. Good evening Divya, Rishi Bidesi would like to dedicate the next gana for all RM2 listeners and for all the brides and the grooms who made their tilak haldi vidhi. And chaliye yahan par aap kehte hain would like to listen to gehra hua ya fir dilbarua's background music. And aap un tamam logon ko wish kar rahe hain happy wedding, happy marriage life, happy wedding life to all those जिनकी ये बहुत ही जल्द शादी होने वाली हैं। और चलिए, यहाँ पर अपनी मूडी गर्लफ्रेंड को भी आप बहुत ही प्यार से याद कर रही है। तो चलिए, जितने भी सारे लोग इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ, डोंट फॉरगेट आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं ऑन 4028235 कट सौ दो कात्मा थान साइक पर, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं।
1: Evening lounge,
2: evening lounge,
3: RM2
1: Radio Masti.

0: जिस घड़ी तुझको मेरे रब ने बनाया होगा। और शुरुआत में हम कह रहे थे ना कि प्यार में तारीफ करना तो लाजमी है ही, और तारीफ ऐसे कीजिए कि बस हर एक अल्फाज दिल से निकले और जो भी आप कहें बस छाप बनकर दूसरों के दिल में बस ऐसे ही वो लोग हमेशा आपको याद रखें। वैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हमेशा एक दिन तो हम नहीं रहेंगे, बट पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर अस द वे वी मेड देम फील। इट्स ऑलरेडी 7:32 एंड आई जस्ट होप कि यहाँ पर हम आपको बस लव्ड फील करा रहे हैं। ये भी प्यार में बहुत इम्पोर्टेंट है, टू फील लव्ड, वांटेड, हर्ड एंड ऑलवेज ऑलवेज स्पेशल। तो चलिए हमारे कुछ खास गीत हैं जो आपको और भी स्पेशल फील कराएंगे, एंड साथ में आपके मैसेजेस का इंतजार ऑन 5499-1294। किसी का मैसेज आया है और आप कहती है, नमस्ते सिस्टर, मैसेज टू माय बेबी अरशद, माय हैप्पीनेस इज विद यू, आई मिस यू सो मच फॉर एवर एंड ऑलवेज फ्रॉम बेबी रेबिका। चलिए आपके इस मैसेज के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो शायद इस वक्त नाइट शिफ्ट भी कर रहे होंगे। तो चलिए आपके मैजिकल मैसेजेस का इंतजार ऑन 5499-1294, या फिर आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं ऑन 4282354 पर। आपके फ़ोन कॉल्स का हम इंतज़ार कर रहे हैं।
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2,
1: Radio Masti।

0: क्या बात है, तिनका तिनका जरा जरा ऐसे ही आपको प्यार होता रहेगा, इतनी गारंटी तो हम जरूर आपको यहाँ पर देते हैं। इट्स ऑलरेडी 7:37। चलिए लाइन पर कोई है और हमारी प्यारी सी उर्वशी जी कनेक्टेड है रेडियो मस्ती के साथ। नमस्कार आपको उर्वशी जी।
1: नमस्कार,
0: कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ।
0: बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। उर्वशी जी बताइए आपके यहाँ मौसम कैसा है और एक्चुअली आप रहते कहाँ हैं?
1: सेबास्टोपोल।
0: ओ माय गॉड, वहाँ पर तो काफी ठंड हो रहा होगा। यस, एक्चुअली मैं काम पे आ रही थी ना, तो नॉर्थ से लेकर मोका तक इट वाज रेनिंग हैवीली और काफ़ी ट्रैफिक भी था आज और रुक रुक कर गाड़ियाँ चल रही थी। एंड आई जस्ट होप कि आप अच्छी हैं उर्वशी जी, एंड ऐसे ही आप बस सेहत बनाती रहे एंड तंदुरुस्त रहे और खाना अच्छे से खाइएगा, ठीक है? तो उर्वशी जी बताइए आज आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: दिल तो पागल है।
0: माय गॉड, ये कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ला रही हैं आप ऐसे खूबसूरत गाने? नहीं, मुझे जानना है आपको कोई इंस्पिरेशन दे रहा है या फिर मुझे लगता है आपका चॉइस ही एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। थैंक यू सो मच उर्वशी जी, हमेशा आप जब आती है ना तो आपके जो गाने हैं वो हमारे शो में चार चांद लगा देते हैं।

0: थैंक यू सो मच उर्वशी जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा. टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय बाय. तो ये थी हमारी प्यारी सी उर्वशी जी, ऑल द वे फ्रॉम सेवास्तोपोल, और उन्होंने गाना मांगा है दिल तो पागल है, मूवी से लिया गया, ढोलना लता जी एंड उदित नारायण की आवाजों में.
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज, RM2 रेडियो मस्ती.

0: आपका भी चेहरा किसी से हट नहीं रहा है और वो चेहरा बार बार आपकी आंखों के सामने आ रहा है और आपका दिल और आपके दिमाग में एक जंग सा छिड़ गया है और आप कंफ्यूज हैं, शायद आपको प्यार हो गया है, उसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन फिर मन में डर लगा रहता है और आप रिजेक्शन से डर रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट हम आपके साथ हैं और वी कैन ट्राई टू मेक योर वर्क ईजियर, ताकि हम आपके मैसेजेस को बहुत ही प्यार से आपके अपनों तक पहुंचाएं एंड जिनसे भी आप इजहार इकरार करना चाहते हैं डू नॉट हेजिटेट, बस उनके लिए एक प्यारा सा पैगाम लिख दीजिए और उन तक आपका ये पैगाम हम पहुँचा देंगे ऑन 5499-1294। 7:55 कुछ ही देर में हम कदम रखने वाले हैं इन द सेकंड आवर ऑफ योर इवनिंग लाउंज जहां पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: भाई देखिए, दिल चाह चाहे बेगाना हो या दीवाना हो, दिल आखिर दिल होता है और दिल से क्या गिले शिकवे करना। दिल तो अपना ही होता है, इसलिए इस दिल में बसे हुए जितने भी सारे लोगों को आप इस वक्त याद कर रहे हैं ना, वो आपके अपने ही है। वैसे कहते हैं कि उठने के बाद और सोने से पहले जो भी चेहरा आपके सामने आए, आप उनसे बेपनाह बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। शायद हमारे गीतों को सुनने के बाद भी आपके दिमाग में बस यही ख्याल चल रहा है कि प्यार कुछ ऐसा ही होना चाहिए। प्यार शायद कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसमें जो दबे हुए एहसास हैं वो बस जुबान तक आ ही जाए। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप कैसे बयां करेंगे, अल्फाजों को जुबान तक कैसे लेकर आएंगे, तो बहुत ही आसान है। ऑल यू हैव टू डू इज सेंड योर मैजिकल मैसेजेस ऑन द मैजिकल नंबर दैट इज 5499-1294। 7 से 9 के बीच में तो हम आते ही हैं आप लोगों से मुलाकात करने के लिए, और ये मुलाकात हमेशा की तरह ख़ास इसीलिए है क्योंकि इसमें प्यार भरे गाने होते हैं और प्यार से ही आप लोगों से मुलाकात करने आते हैं और प्यार से आपके मैसेजेस आते हैं और प्यार से आप हमें फ़ोन भी करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से आपको हम याद दिला देते हैं कि अभी लाइन खुली हुई है, आप हमसे 9 बजे तक ज़रूर बात कर सकते हैं ऑन 4028235 पर। आप ज़रूर हमें याद कर सकते हैं, आपके फ़ोन कॉल्स का हम इंतज़ार कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट, इट्स योर इवनिंग लाउंज जहां पर दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।
3: मेरे ख्वाबों में तुम

0: क्या बात है, सच अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाना एंड इट्स टेकन फ्रॉम द मूवी द डॉन। 8:25 हो चुके हैं। एक बार फिर से दिव्या का साथ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती जहां पर चल रहा है आपका ही अपना इवनिंग लाउंज। चलिए यहां पर आपके मैसेजेस की ओर हम ज़रूर बढ़ेंगे एंड टू ऑल दोज जो हमें इस वक्त नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए याद कर रहे हैं आपको हम बता देते हैं कि आपके मैसेजेस को आने में शायद कुछ तकलीफ़ हो रही है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपके मैसेजेस को हम यहाँ पर रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। बट फॉर शो वी आर वेटिंग फॉर यू व्हाट्सएप के ज़रिए, नंबर तो वही है 5499-1294 पर ज़रूर आप हमें याद कर सकते हैं। और चलिए यहाँ पर कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ इस कारवां को हम आगे बढ़ाते रहेंगे एंड जितने भी सारे लोग इस वक्त शायद काम पर होंगे आप ज़रूर गानों का लुत्फ़ उठाते उठाते काम ज़रूर एंजॉय करिएगा। वैसे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है टू लव व्हाट यू आर डूइंग एंड डू व्हाट यू लव, इससे ही आपका पैशन बढ़ता है एंड आई जस्ट होप कि ज़िंदगी में आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें एंड यू ऑलवेज फाइंड पैशन इन एवरीथिंग यू डू, यू ऑलवेज फाइंड लव। वैसे प्यार को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इरादे नेक हैं और सोच अच्छे होते हैं तो खुद ब खुद प्यार आपको ढूंढ ही लेता है। चलिए यहाँ पर अगला गाना गुज़ आउट स्पेशली हमारी प्यारी सी टीना जी, कहती हैं कि आपके शो को हम एंजॉय कर रही है कंबल के नीचे का क्या बात है। आप कहती हैं कि बहुत ही ठंड है एंड इट्स रेनिंग आउटसाइड, नाइस सॉन्ग फॉर योर स्वीट फैमिली एंड योर लव्ड वंस, टेक केयर एज वेल और आपको भी स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू टू। एंड चलिए टीना जी, खूबसूरत फूलों का जो तस्वीर आपने भेजा है ना वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बिकॉज आई नो इट्स नॉट आर्टिफिशियल, ये आपने नेचुरल फोटो भेजा है नेचुरल फ्लावर्स के, सो थैंक यू सो मच टीना जी हमारा साथ देने के लिए। और इस करारी ठंड में आप ज़रूर ज़रूर अपना प्रिकॉशन लेते रहें एंड सीजनल फ्लू तो सबको होता ही है लेकिन आप टाइम टू टाइम पानी को बॉयल करें और उबले पानी को ही पिएगा। तो चलिए यहाँ पर दिव्या का साथ है रात्रि के 9 बजे तक, 30 मिनट हैं हमारे और आपके दरमियान, जितना हो सके हम खूबसूरत गीत को समेटने की कोशिश करेंगे एंड जितना हो सके विल ट्राई टू मेक यू फॉल इन लव वंस अगेन।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: बिल्कुल, किसी का मोहब्बत अगर साथ हो तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आप जीत ही लेंगे. इसीलिए इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू नो कि दुनिया में प्यार भी हैं और प्यार में चाहने वाले भी हैं, और चाहने वालों में से एक ऐसा शख्स होता है जो आपकी ज़िंदगी का एक जीने की वजह बन जाती है. वेल, चलिए, थैंक यू सो मच कि आप हमें और प्यार में डूबने के लिए एक वजह दे रहे हैं, एंड दैट इज़ योर ब्यूटिफुल एंड लवली मैसेजेस. नाइस सिलेक्शन संध्या फ्रॉम ब्रिजे वेजिया. नेक्स्ट गाना जाएगा स्पेशली फॉर यू. पहले कयामत क्या कम थी और कयामत कर बैठे, दैट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. अगर पॉसिबल हुआ तो हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे. सो थैंक यू सो मच जितने भी सारे लोग इस वक्त हमें याद कर रही हैं मैसेजेस के जरिए. नॉट टू फॉरगेट, आप व्हाट्सएप पर जरूर हमें याद करें ऑन 5499-1294.
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती.

सच अ ब्यूटीफुल रोमांटिक कूल और सूदिंग म्यूजिक और ऐसे गाने हम चला रही हैं जो तीर बनकर दिल में चुभे जा रहे हैं. प्यार का ये तीर इतना शार्प होता है कि दिल को चीर कर आर पार कर देता है, इसको ही प्यार कहते हैं. तो चलिए यहाँ पर अगर आप भी इन एहसासों को उड़ान देना चाहते हैं तो प्यार को थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए और बस आप हमें मैसेजेस भेजिए और आपके इन पैगामों को आपके अपनों तक बहुत ही प्यार से पहुंचाएंगे. एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ सेंड योर स्पेशल मैसेजेस टू दैट स्पेशल समवन ऑन 5499-1294. चलिए यहाँ पर एक और मैसेज आया है. गुड इवनिंग आपको भी. और आप कहती हैं, काइंडली डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग टू मीरियम गोपी चंद हु इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे. बेस्ट विशेज फ्रॉम हस्बैंड प्रीतम. गोपी चंद और उनकी बेटियाँ हैं मनीषी, काजोल एंड ऐशा की तरफ से उनको बहुत बहुत सारा प्यार. और जितने भी सारे लोग अपना स्पेशल जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत सारा प्यार. हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. RM2 Radio Masti.

0: Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: चलिए फिलहाल के लिए इट्स अ टाइम फॉर दिव्या टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, लेकिन हम जा रहे हैं एक बार फिर से वापस आने के लिए बहुत ही जल्द. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय.

हेलो माय डियर लिसनर्स, विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। नीतू आपके साथ, सुप्यार भरा नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। यस, इट्स योर लेट नाइट ग्रूव। सो साथ निभाते हुए लेट मी वेलकम यू ऑल इस खूबसूरत सफर, इस रोमांटिक सफर में। हाँ जी, रोमांटिक तो हम सब हैं, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये जो रोमांस है वो उभर कर आ ही जाता है। लेकिन जब बॉलीवुड सॉन्ग्स की बात होती है तो इतने सारे रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं जिनका असर कभी ना कभी दिख ही जाता है। सो आज इस खूबसूरत लेट नाइट ग्रूव्स में आपके इन पलों को खूबसूरत रोमांटिक बनाते हुए शुरुआत करते हैं।

रोमांटिक सॉन्ग्स हमेशा से ही दिल की भाषा रहे हैं। जब शब्दों से जज्बात बयां करना मुश्किल हो जाता है, तब गीत और संगीत प्यार की कहानी कह देते हैं। बॉलीवुड के रोमांटिक गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं। ये गाने कभी पहली नजर के प्यार को याद दिलाते हैं, तो कभी बिछड़ने के दर्द को भी मधुर बना देते हैं।

जमाने के रोमांटिक सॉन्ग्स की बात तो कुछ और ही थी, है ना? लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी या फिर किशोर कुमार जैसे महान गायकों की आवाजों में प्यार एक इबादत बन जाता था।

सारे गाने ओ माय गॉड लिस्ट तो इतनी लंबी है आज भी दिल को उतनी ही गहराई से छू जाते हैं। इन गीतों में सादगी तो थी, शर्मीली मुस्कान तो थी और एक ठहराव भी था जो आज के तेज दौर में भी सुकून दे जाते हैं।

बात चल पड़ी है रोमांटिक सॉन्ग्स की, तो 1950s से 1960s का दौर नजाकत और शायरी का दौर था। इस दौर में प्यार इज्जत शर्म और तहजीब के साथ पेश होता था। गीतों में कम शब्द गहरे जज्बात और लाजवाब शायरी होती थी। एंड सिंगर्स लाइक मुकेश और साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र, मदन मोहन, इन सब गीतकारों और संगीतकारों ने प्यार को इबादत बना दिए।

अगर 70s की बात करें देन रोमांस में ठहराव और गहराई थी। इस दौर के रोमांटिक सॉन्ग्स ज्यादा मचो और इमोशनल हो गए। प्यार के साथ जुदाई, इंतजार और दर्द भी शामिल हुए। आर डी बर्मन के संगीत और किशोर कुमार की आवाज ने रोमांस को नया रंग दिया। रूप तेरा मस्ताना या फिर तेरे बिना जिंदगी जैसे गाने प्यार के गहरे पहलू दिखाते हैं। तो उधर मेलोडी का संकट पर जज्बात का जिंदा। आई एम टॉकिंग अबाउट द 80s। ये दौर थोड़ा अनिवन रहा पर फिर भी कुछ यादगार रोमांटिक गाने आए। म्यूजिक में एक्सपेरिमेंट हुआ, सिंथ का इस्तेमाल बढ़ा, रोमांस थोड़ा फिल्मी और ड्रामेटिक हो गया पर भावना बनी रही। हमें तुमसे प्यार कितना ये तो आप जानते ही हैं। ऐसे गाने इस दौर की पहचान बने।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

समय के साथ रोमांटिक सॉन्ग्स का अंदाज बदला, पर उनकी रूह वही रही। कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, इनके युग में प्यार थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो गया। तुझे देखा तो ये जाना सनम, पहला नशा, बाहों के दरमिया जैसे गाने मोहब्बत की नशीली दुनिया में ले जाते हैं। ये गाने सिर्फ फिल्मों का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि हर प्रेमी जोड़ी की यादों का हिस्सा बन गए। 90s रोमांस का गोल्डन कमबैक। 90s में रोमांटिक सॉन्ग्स ने फिर से दिल जीत लिया। मेलोडी, लिरिक्स और आवाज का परफेक्ट संगम हुआ। नदीम शवन हो, अनु मलिक या फिर जतिन ललित, इनका मैजिक चला ही चला। और प्यार मासूम, सपनों जैसा और दिल से जुड़ा हुआ।

आज के दौर के रोमांटिक सॉन्ग्स में मॉडर्न टच है, पर भावना वो ही है। वी हैव अरिजीत सिंह। वैसे अरिजीत सिंह ने तो अनाउंस कर ही दिया है कि वो रिटायर हो रहे हैं फ्रॉम प्लेबैक सिंगिंग। श्रेया घोषाल, स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, ऐसे कलाकारों ने प्यार को नई आवाज दी। तुम ही हो राबता अगर तुम साथ हो, तुमसे ही जैसे गाने दर्द, इंतजार और मोहब्बत को एक साथ पिरो देते हैं। इन गीतों में जज्बात की गहराई है जो सीधे दिल तक पहुँचती है।

में बॉलीवुड म्यूजिक इंटरनेशनल साउंड से प्रभावित हुआ। वी हैव ए रहमान, उन्होंने रोमांस को सुकून और रूहानियत दी। तुमसे ही, तेरे बिना, कल हो न हो जैसे गाने अब उन प्यार की कहानी सुनाते हैं, थोड़ा रियल थोड़ा पोएटिक। देन वी हैव 2010 से अब तक इमोशन ड्रिवन और सोलफुल लव। आज के रोमांटिक सॉन्ग्स ज्यादा पर्सनल और इंट्रोस्पेक्टिव हो गए हैं। कुछ मैशअप्स, कुछ रेमिक्सेस, कुछ अलग तरीके से ही गाने बनाए जा रहे हैं। प्यार के साथ साथ वल्नरेबिलिटी, हार्ट ब्रेक और लॉन्गिंग ज्यादा दिखती हैं। आज के जो गायक हैं, उन्होंने रोमांस को दिल की गहराइयों से जोड़ दिया। रिलेशनशिप के सच्चे, कभी कभी टूटने वाले पहलू भी दिखते हैं।

मिस्टर रोमांटिक सॉन्ग्स की खूबसूरती तो यही है कि हर पीढ़ी को जोड़ देते हैं। ये गाने वक्त, उम्र और दूरियों की सीमा को पार कर जाते हैं। जब कोई पुराना रोमांटिक गाना बजता है तो बीते हुए लम्हे आंखों के सामने आ जाते हैं, और जब कोई नया रोमांटिक गाना सुनते हैं तो लगता है कि जैसे प्यार फिर से जवान हो गया हो।

0: शायद आपके दिल की धड़कने, शायद किसी के अनकहे अल्फाज, तो समझ लीजिएगा कि वो ही आपका हमसफर है।
1: Late Night Grooves.
2: RM2 Radio Musti.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: your musty. Feel the musty.
1: Radio Musty.

0: जिंदगी है एक सफर सुहाना, नहीं वो तो किशोर कुमार ने गाया था, लेकिन जब साथ हो कोई अपना तो ये सफर भी सिर्फ सुहाना नहीं यादगार बन जाता है। इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स नीतू के साथ रात्रि के 12 बजे तक। थैंक यू सो मच हमारे म्यूजिकल हम सफर बनने के लिए। एंड बोको आज टू ऑल दोस एट वर्क, और अगर आप रास्ते पर होंगे, यू माइट बी ड्राइविंग बैक होम, देन प्लीज ड्राइव केयरफुली, एंजॉय कीजिएगा इन नगमों को।
1: लेट नाइट ग्रूव्स,
2: RM2, रेडियो मस्ती।

0: जिंदगी है एक सफर सुहाना, नहीं वो तो किशोर कुमार ने गाया था, लेकिन जब साथ हो कोई अपना तो ये सफर भी सिर्फ सुहाना नहीं यादगार बन जाता है। इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स नीतू के साथ रात्रि के 12 बजे तक। थैंक यू सो मच हमारे म्यूजिकल हम सफर बनने के लिए। एंड बो कोगाज टू ऑल दोस एट वर्क, और अगर आप रास्ते पर होंगे, यू माइट बी ड्राइविंग बैक होम, देन प्लीज ड्राइव केयरफुली, एंजॉय कीजिएगा इन नगमों को।
1: Late night grooves.
2: RM2 Radio Musti.

0: वैसे कहते हैं कि मोहब्बत का कोई वक्त नहीं होता, ये तो बस एक एहसास है जो कभी भी कहीं भी किसी के लिए हो जाता है। लव एट फर्स्ट साइट, कभी कभी ये तुक्का मार जाता है लव एट फर्स्ट साइट और जिंदगी भर का प्यार बन जाता है, लेकिन कभी कभी प्यार धोखा भी दे जाता है, तकलीफ भी दे जाता है और दिल भी टूट जाता है। तो आप अपने प्यार को संजो कर रखें, आपके पास हैं उनको समेट कर सम्मान के साथ उनका आदर सत्कार करते रहें।
1: Late Night Grooves
2: RM2 Radio Musti

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रोमांटिक सॉन्ग्स हमें सिखाते हैं कि प्यार सिर्फ पाना ही नहीं बल्कि महसूस करना भी होता है। ये गाने खामोशी को अल्फाज देते हैं और दिल के कोने में छुपे जज्बातों को आवाज बन जाते हैं। शायद इसीलिए चाहे जमाना बदल जाए पर बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स हमेशा अमर रहे हैं और हमेशा अमर रहेंगे, बिल्कुल सच्ची मोहब्बत की तरह। दैट्स व्हाई रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग्स का इवोल्यूशन एक सफर जैसा है। शर्म से शुरुआत, जज्बात से गुजर और सच्चाई पर आकार रुकता हुआ। सुर बदले, अंदाज बदला, पर प्यार की रूह हमेशा जिंदा रही। टेक केयर, बाय बाय, प्रणाम।
1: लेट नाइट ग्रूव्स
2: RM2 Radio Musti.

0: इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
1: बिल्कुल आती है, सुनो।
0: सुना।
1: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार पर
2: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।